छाड़ छाड़ सगली गई मूर्तां लपटाए। गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग, नानक आए सफलते जाको प्रै सुहाग। सलोक कोखे शास्त्र वेद सब आन कहतो कोए, आजुगादी हुन होवत नानके कै सोए। पौड़ी कग्गा कालो मनै एह बिन हर दूसर नाहे, नै होवा नै होवना जत का तो ही समाहे। कूलै तौ मन जवावै सरना, नाम तत् कल मै पुनै चरना। काल काल अनक पछतावै, बिन हर भगत कहां थित पावै। कोल महारस अमृते पिया, नानक हर गुर जां कौ दिया। सलोक घन काले सब दिवस सास, नह बढ़न कटन तिलसार। जीवन लोरे पर मोह, नानक तेउ गवार। पौड़ी गंगा ग्रासै काल तेह, जो सगत प्रभ कीन। अनक जोन जन्मै मरै, आत्म राम न चीन। ज्ञान ध्यान ताहूं को आए, कर कृपा जे आप देवाए। गणती गणी नहीं को छूटै, काची गागर सर पर फूटै। सो जीवत जह जीवत जपया, प्रगट पै नानक ने छपया। सलोक चित चित वो चरणार बिंद, ऊंद कवल बिग सांत। प्रगट पै आपै गोबिंद, नानक संत मतात। पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा, तन तन ओवा दिन संजोग सुभागा। चार कुंट दै दिस भ्रम आयो, पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिनसो सबदुआ, सा संगमन निर्मल हुआ। चिंत बिसारी एक दृष्टेता, नानक ज्ञान अंजन जेने तरा। सलोक छाती शीतल मन सुखी, संत गोबिंद गुण गाए। ऐसी कृपा करो प्रभ, नानक दास दसाए। पौड़ी शशा शोहरे दास तुम्हारे, दास दासन के पानी हारे। शशा शार हो तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता। शार स्यान बहु चतराई, संतन की मन टिक टिकाई। शार की पुत्री परम गत पाई, नानक जाको संत सहाई। सलोक जोर जुलम फूले कनो, काची दे बेकार। अह बुद्ध बंधन परे, नानक नाम छुटार। पौड़ी जज्जा जाने हो कछ हुआ, बांध्यो जो नल नी परमसुआ। जो जाने हो भगत ज्ञानी, आगे ठाकर तिल नहीं मानी। जो जाने मैं कथनी करता, व्यापारी बसदा ज्यों फिरता। सा संग जे हो मैं मारी, नानक ता को मिले मुरारी। सलोक चालांगे उठ नाम जप, निस्बा सिरिया राध। कारा तुझे ना व्यापई, नानक मिटै उपाद। पौड़ी चज्जा चूर्ण मिटै तुम्हारो, राम नाम स्यो कर व्यवहारो। चूरत चूरत साक्त मुआ, जा कर दै होत पाओ बिया। चरै कसमल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ। चरै काम क्रोध दृष्टाई, नानक जा को कृपा गुसाई। सलोक यत्न करो तुम अनक बिद, रह ना पावो मीत। जीवत रहो हर हर भजो, नानक नाम प्रीत। पवड़ी नया ज्ञानो दृढ़ सही, बिनस जाय ए हेत। गणती गणो ना गण सको, उड़सदारे केत। न्यो पेखो सो बिनसतो, कास्यो करिय संग। ज्ञानो या बिद सही चित, झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए, भ्रमते की चित भिन्न। अंधकूबते देख डो, जे होवो सो प्रसन्न। न्या कह सम्राते, कारण करने जोग। नानक ते उसत करो, न्याहू कियो संजोग। सलोक
ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਾਧ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਮਨੋ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਗੁਣਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪੌੜੀ

जा कौ साध कृपाल साधु संग तौ बसै जो अपन होहे दयाल। टोहे टाहे बहु पवन बिन्ना मैं सुख नाहे टले जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे बार बार जाऊं संत सदके नानक पाप बिना से कदके। सलोक ठाक ना होती तिन उदार जे होवो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते तन तन। पौड़ी ठठा मनुआ ठाहे नाही जो सगल त्यागे कै लपटाही ठहक ठहक माया संग मुवे उवा कै कुशल न कथू हुए। ठांड परी संत संग बसिया अमृत नाम तहां जी रसिया ठाकर अपने जो जन पाया नानक वाका मन शीतलाया। श्लोक डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। पौड़ी डड्डा डेरायो नहीं जय डेरा ते जान ओवा डेरा का संजमो गुर कै सबद पछान। ओवा डेरा या डेरा कौ सरम कर कल है जाका तसु नहीं संचाल है ओवा डेरा की सोमत जान है जाको दृष्ट पूर्ण भगवान है। डेरा निचल सच साध संग पाया नारक तेजन नह डोलाया। श्लोक ताहन लागे धर्म राय किन न कालो बंद नानक उबरे जप हरी साध संग संबंध। पौड़ी टड्डा टूंडत कै फिराओ टूंडन या मन माहे संग तुहार प्रभ बसै बन बन का फिराए। तेरी टाहो साध संग अहंग बुद्ध बिकराल सुख पावो सजे बसो दर्शन देखने हाल। तेरी जाम जम मरै गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रह हाहो आवे जाए। टहत टहत अब टह परे साजना सरनाए दुखे फाहे काटिया नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत अणा होना तूने छुटै निकट न जाइयो दूत। पौड़ी अनाणा रण तेसी जिया आत्म जीतै कोए होमै अनस्यो लर मरै सो सो बादू होए। मणि मिटाई जीवत मरै गुरपूरे उपदेश मनुआ जीतै हर मिलै तेसु रतन वेश। अणा को जाने अपनो एक टेक आधार रहन दिन सो सिमरत रह सो प्रपुरख अपार। रेण सगल या मन करै एऊ कर्म कमाए हुक्मै बूझै सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पौ तिसै प्रभु मिलावै मोहे नानक परम पौ काटियै चूकै जमकी जो हो। पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर गुणित गोविंद राए फल पावै मन बांचते तब तुहारी जाए। त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाओ गत पावे मत होए प्रगास मैली पावे ठाओ। ताहू संग न तह चलै ग्रेजो बनै राज संत संग सिमरत रहो एह तुहारे काज। ताता कछु न होई है जो ताप निवारै आप प्रतपालै नानक हमै आपै माई बाप। श्लोक थाके बहुविध कालते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच सागत मुवे नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनक बंच बल छल करो माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन कै कामना आवई अंते ओ सरवार। थित पावो गोबिंद भजाओ संतै की सिखले हो प्रीत करो सद एक स्यों या साचा स्नेहो। कारण करन करावनो सब दे कै हाथ जे जित लावो तित लगै नानक जंथ्या नाथ। श्लोक दस एक निहारिया सबके देवन हार सा सा सिमरत रहै नानक दरसिया दार। पौड़ी ददा दाता एक है सब कौ देवन हार देंदे तोट न आवई अगनत परे पंडार। दैन हार सद जीवन हारा मन मूर क्यों ताहे बिसारा दोष नहीं काहू कौ मीता माया मोह बंद प्रभ गीता।
ਦਰਦ ਨਿਵਾਰੈ ਜਾਂ ਕੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਾਪੇ ਇਸ ਲੋਕ, ਧਰ ਜੀਆ ਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਲਾਹੇ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ ਪੌੜੀ, ਧੱਦਾ ਤਾਵਤ ਤਉ ਮਿਟੈ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੋਏ ਬਾਸ, ਧੁਰਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਤਉ ਹੋਏ ਮਨੈ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਤਨ ਸਾਚਾ ਤੇਉ ਸਚ ਸਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਬਿਸਾਹਾ, ਧੀਰਜ ਜਸ ਸੋਭਾ ਤਿਹ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸ੍ਰਵਣ ਜੇ ਸੁਨਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੇ ਕਟ ਰਹੇ ਸਮਾਈ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ। ਸਲੋਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪਿਆ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰੰਗ ਗੁਰਪੂਰੈ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਨਰਕ ਨਾਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੌੜੀ, ਨੰਨਾ ਨਰਕ ਭਰੈ ਤੇ ਨਾਹੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਮੰਤਨ ਨਾਮ ਬਸਾਹੀ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਜਪਤੇ, ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਏ ਖਪਤੇ, ਨੰਨਾ ਕਾਰਨਾ ਹੋਤਾ ਤਾਂ ਕਹੋ, ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਜਾ ਕਹੋ, ਨਿਧ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰੇ, ਤੈਂ ਬਾਜੇ ਨਾਨਕ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਤ ਰਾਖੀ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਜ ਪ੍ਰਪੰਚ ਮੋਹ ਬੇਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਆਰਾਧੀਐ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਪੌੜੀ, ਪੱਪਾ ਪਰਮਿਤ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਅਗਮ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਹੋਤ ਪੁਨੀਤ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ, ਪਰ ਪਜ ਤ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਮਿਟ ਨਾਈ, ਜਾਂ ਕਉ ਰਾਖੋ ਆਪ ਗੁਸਾਈ, ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਛਤਰ ਸਿਰ ਸੋਉ, ਨਾਨਕ ਦੂਸਰੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਉ। ਸਲੋਕ ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ, ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤਨੀਤ ਪੌੜੀ, ਫੱਫਾ ਫਿਰਤ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਦੁਰਲੱਭ ਦੇਹੇ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਫਿਰਿਆ ਉਸਰ ਚਰੈ ਨਾ ਹਾਥਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੋ ਕਟਿਆ ਫਾਸਾ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਮਨ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕੈ ਏਕ ਜਪੋ ਜਪ ਸੋਈ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ, ਮਿਲ ਲਹਿ ਨਾਨਕ ਬੇਚਾਰੇ। ਸਲੋਕ ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲ, ਸੁਖ ਸੰਪੈ ਬਹੁ ਭੋਗ ਰਸ।

अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाभयान दूत जमदल, तै केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंदना परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तिख ना बुझावे, हर का नाम जपत अगावे। जेह मार्ग हो जाता केला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जब तै पार पराही। अनक बिगन जाय आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हौ मैला मल कबो न धोवे, हर का नाम कोट पाप होवे। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाईए साध कै संग। जेह मार्ग के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा। जेह पैंडे महायंद गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ ते

जहां त्रिखा मन तुझे आकर्ष है, तै नानक हर हर अमृत बरख है। भक्त जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। मन तन रंग रत

हर का नाम जनका रूप रंग, हर नाम जपत कौ परै न भंग। हर का नाम जन की वड़ियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालिक जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रकट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। योग अभ्यास।

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए मैं शोरे, जे को जन्म मरण ते डरे साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान, आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिया सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सिठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा।

बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जेह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकर कौ रख मन माहे जेह प्रसाद सुगंधत तन लावै तिस कौ सिमरत परम गत पावै जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्याग कत अवर लोबावै जेह प्रसाद सुख से सुई जै मन आठ पहर ताका जस गावी जै जेह प्रसाद तुझ सब को मानै मुखता को जस रसन बखानै जेह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म।

रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू चार बिहारी तिस प्रभ को साह साह चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह है जे प्रसाद सुनै करन नाद जे प्रसाद पेखै बिस्माद जे प्रसाद बोलै अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चलै जे प्रसाद संपूर्ण फलै जे प्रसाद परमगत पावै जे प्रसाद सुख सहज समावै ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागौ गुर प्रसाद नानक मन जागौ जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता कहो जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता स्यो राच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जब जपै जब सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मति उत्तम होए सर्व निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु ना किन्हु लया जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इनकै कछु ना हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुखी उजल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अवमान साध कै संग प्रगटै सुगयान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होतन बेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरनै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ महे सुमानी साध कै संग गोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग नकत हूं तावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते पिन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग के सो नहीं बैर साध कै संग ना बींगा पैर साध कै संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग ना ही हवताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध कै संग न कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बस्ता गोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साध कै संग बसै थानी उच्चै साधु कै संग मैल पहुँचै साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै साधु कै संग सो तन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कशकाल दर्शन भेट तो होत निहाल साध कै संग कलुख तहरै साध कै संग नरक प्रहरै
साध कै संग इहां उहां सुहेला, सा संग बिशरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, सा संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मनते बिसरै, सा संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्र मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा। सा संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा

दूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एक बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, जो बसदा को खोदे को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै एक कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे है,

ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सच जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। सलोक और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमख निमख ठाकर नमस्कार, नानक हो अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पार्त्रे रूप ना

कई कोट पर दर्ब कौ हेरै, कई कोट पर दुख ना करै, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट पर देश पर माहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर प्यो पाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत रसास्त, कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख किन्नर प्रसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरै सब हूं ते दूर, नानक आप अलिप्त रहया परपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बौजोनी फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मै चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगतिन लवलागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आतुम मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिल्यो प्रभ बनास, कई कोट मांग ऐसा संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन, कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कई जूत कीनो विस्तार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट की

प्रगास कई कोट तत् के बेते इसदा निहारा एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पय सद सद ही जीव कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सहि समावे अपने जन को सा सा सुमारे नानकोए परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए अष्टपदी करण करावन करने जोग ज्योतिष पावे सोई होग खिन मैं थापो थप नहारा अंत नहीं किश पारा वारा हुक्मे तार अतर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वडियाई नानक सब मै रहा समाई प्रभ पावै मानुख गत पावै प्रभ पावै ता पाथर त्रावै प्रभ पावै बिन सास ते राखै प्रभ पावै ता हर गुण पाखै प्रभ पावै ता पत तो धारै आप करै अपन विचारै दुहा सिरिया का आप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानख ते क्या होए आवै ज्योतिष पावै सोई करावै इसके हाथ होए ता सब किछ ले ज्योतिष पावै सोई करे अनजानत बिख्या मैं रचै जे जानते अपने आप बचै परमे पूला दै दस्तावै निमख माहे चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन मैं नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कशु ना आवै तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै जा को अपनी करै बख्शीस ताका लेखा ना गनै जगदीस जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बणत या बनाई नानक जीवै देख बड़ाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो ज्योतिष पावै सोई फुंथियो कबहू ऊंच नीच मैं बसै कबहू सोग हर खरखा कबहू सोग हर खरंग हसै कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक क्या मिलावन हार कबहू निरत करै बहुपात कबहू सोए रह दिन रात कबहू महाक्रोध बिकराल कबहू सर्ब की होत रवाल कबहू होए बह बड़ राजा कबहू पिखारी नीच का साजा कबहू आप कीरत मह आवै कबहू पला पला कहावै ज्यो प्रभ राखै तिवहि रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मौन तारी लावै ध्यान कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू से साधक मो ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन परमै परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावै ज्यो प्रभ पावै तिवै नचावै ज्योतिष पावै सोई होए नानक दूजा अवर ना कोए कबहू साध संगते हो पावै उस स्थान ते बहुर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मान तन नाम रते करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान सलोक सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी
जिसका अंतर राजा मान सो नरक पाती होवत समान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस कौ करवंत कहावै जन्म मरे बह जोन परमावै तन भूम का जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक यहां मुक्त आगे सुख पावै धनवंता होए कर गरबावै तरण समान का संग न जावै बहु लश्कर मानखी ऊपर करे आस पल भीतर ताका होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे ना बदै आप अहंकारी धर्म राय तुस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करै हो तारे श्रम पावै सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवै हर दरगह कौ कैसे गवै आपस कौ जो पला कहावै तसे पलाई निकट न आवै सर्व की रेण जां का मन होए कहो नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जानै मुझते कश होए तब इसको सुख नाही कोए जब है जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे सहस खटे लख को उठतावै तृप्त न आवै माया पाछे पावै अनक भोग बिखिया के करै नह तृप्तावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए वडभागी किसे प्राप्त होए करण करावने आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहां बिचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो किश कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सबहू के संग बूझै देखै करै बबेक आपै एक आपै अनेक मरै ना बिनसै आवै ना जाए नानक सदी रहा समाए आप उपदेसै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो अपन विस्थार सब कछ उसका ओह करणै हार उसते पिन कहो किछ होए।

जिस हो वैसो परसन्न। अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मैं राख, मानव की तू प्रीत त्याग, तिस्ते परे नाही किश कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गहिर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। साध तेरे की चरनी पाओ, नानक कह मन एहो अनराओ, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र ना जाने होर। आनंद रूप मंगल सदजा कै, सर्व थोक सुनिए करता कै। राज मैं राज, योग मैं जोगी, तप मैं तपीसर, ग्रस्त मैं भोगी। त्याए त्याए भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किनंत ना पाया। जा की लीला की मित नाहे, सगल देवहारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जंदे, जन दास नाम ते आवै से, ते गुण में जा को परमाए, जन्म मरै फिर आवै जाए। ऊच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करै करंग, नाना बिदकीनो विस्तार, प्रभु नासी एकंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहो पूर्ण सब ठाए, नाना बिद कर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवै नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगले आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख समाए समाणी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बजाय तिसे सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नान गुर ते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जा कर दे प्रवेश। सत निरत बूझै जे कोए, नाम जपत ता की गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत। जिसकी सृष्ट सो करना हार, अवरना बुझ करत विचार, करते की मित ना जाने किया, नानक ज्योत पावै सो वर्तिया। बिस्मन बिस्म पय बिस्माद, जिन बुझिया तिस

दयाल, भगत वचन सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आदि पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मनहीत, हम निर्गुणी यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अनक राज भोग वडे आई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, पली सुकरनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक पर

आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकारे हो कश ना दृटेता पाप उन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरक शोक कसह व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मोत कौ किस कौ गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कत डर आपन चलते आप कर नहार नानक ठाकर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तै जन मरण कौ कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब आप गत्या गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे अपने आप ही चर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तै शर शिदर लगत कौ कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे तै किसै भूख कवन त्रिपतावै करण करावन करने हार नानक करते का नहि सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपै परवीन तै वेद कतेब कहां कूचीन जब अपने आप उरतार है तो सगन अब सगन कहां विचार है जहे अपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी का जानो आप जय अशाल अशेदा भेद समाया ऊहा किसै व्याप्त माया आपस कौ आपै आदेश तेह गुण का नाही परवेश जय कै एक एक भगवंता तै कौन अचिंत किस

पूर्ण पूर रहे दयालो, सब उपर होवत कृपालो। अपने कर्तव जानै आप, अंतर जामी रहे ब्याप। प्रतपालै जियन बहु पांत, जो जो रचियो सोत सहत आत। जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमर गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितव नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजय सुन सुन अंध करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवै अमन जान हर तन खाड़ चलै जन सोए नानक जसै प्राप्त होए खेम सात रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख पने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोय सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जमते छुटै जाके मस्तक करम प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। थित्ती गौड़ी महला पंजवा सलोक एक ओवंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पांत होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो वंदना त्याए गुण गोविंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय ताकि आस कल्याण सुख जाते सब कश होए चार कुंट दह दिस प्रमयो तिस बिन अवर ना कोए।
वेद पुराण सिमरत सुने बहुविध करो विचार पत उदाहरण पै हरण सुख सागर निरंकार दाता भुगता देनहार तिस बिन रहन ना जाए दाता भुगता देनहार तिस बिन अवर ना जाए जो चाहे सोई मिले नानक हर गुण गाए गोविंद जस गाइए हर नीत मिल भजिए।

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत, राम रतन मन तन बसै तज काम क्रोह लो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेश, आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हिरै हर दरगै पतवंत, राम नाम धन संचवै सातशाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक तीन व्यापै जगत को तुरिया पावै कोए, नानक संत निर्मल पए जिन मन वसिया सोए। पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग ब्रह्म तौ घणौ सदा संगारै मीच। हरख सोग सहसा संसार हाँ हाँ करत विहाए, जिन किए तिसे न जाननी चितवै अन के उपाए। आद ब्याद उपाद रस कबू न टूटै ताप, पार ब्रह्म पूर्ण धनी न बूझै प्रताप। मोह परम बुढ़त कणो महानरक मैं वास, कर कृपा प्रभ राख लेहो नानक तेरी आस। सलोक चतर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजिया अवमान, चार पदार्थ हिट सिद्ध भज नानक हर नाम। पौड़ी चतुर्थ चारे वेद सुन सो दियो तत विचार, सर्व खेम कल्याण निद राम नाम जप सार। नरक निवारै दुख हरै टूटै अनक कलेस, मीच हुटै जमते छुटै हर कीर्तन परवेश। पाओ बिनसै अमृत रसै रंग रते निरंकार, दुख दर्द अपवित्रता नासै नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल, मन निर्मल मुख उजला होए नानक साधरवाल। सलोक पंच विकार मन में बसे राचे माया संग, साध संग होए निर्मला नानक प्रभ कै रंग। पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो पर पंच, कुसम बास बहु रंग कणो सब मिथ्या बलबंच। नह जापै न बूझिए न कछ करत विचार, स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जोन भ्रमण कीने कर्म अनेक, रचन हार न सिमरियो माना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त नारंच, नानक बिरले पाई जो ना रचै परपंच। सलोक खट शास्त्र उच्चो कह अंत ना पारा वार, भगत सोहै गुण गावते नानक प्रभ कै द्वार। पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ अनेक, उत्तम उच्च पार ब्रह्म गुण अंत ना जाने सेख। नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद, रसगी दे हर स्यो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान परम बिनसेओ पाई सरण दयाल, चरण कमल मंतन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिलै तोटा हिराए सा संग लिव लाए, खाट खजाना गुण निधारे नानक नाम ते आए। सलोक संत मंडल हर जस कथ बोलै सत सुभाए, नानक मन संतोखी है एक सिसो लिव लाए। पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार, संत संगत मैं पाई है अंत ना पारावार। आप तजो गोबिंद भजो शरण भरो हर राय, दुख हरै पव जल तरै मन चंदिया फल पाए। आठ पहर मन हर जपै सफल जन्म परवान, अंतर बाहर सदा संग करने हार पछाण।
सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे नानक तिस बले हारण हर हर नाम जपे। सलोक आठ पहर गुण गाइए तजिए अवर जंजाल जम कंकर जो है न सकई नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल प्रगास सदा आनंद निर्मल रीत निरुद्धर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान समय उच बसे ज्ञान हर हर भजन पूरे गुरसंग जप तरिय नानक नाम हर रंग। सलोक नारायण ने सिमरियो मोहयो स्वाद बिकार नानक नाम बिसारे है नरक सुरग अवतार। पौड़ी नौमी नवे शद्र अपवीत हर नाम न जपै करत विपरीत पारत्रे रमै बकै साध निंद करन सुनही हर जस बिंद हिरै पर दर्ब उदर कै ताई अगन न निवरै तृष्णा न बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे। सलोक दह जस खोजित मैं फिरयो जत देखौ तत सोए मन बस आवै नानका जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं

मन में चितव पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है। सलोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद, गुण गोबिंद न जानिए, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखै कठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब मैं पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी, पेटे साध कृपाल, नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम इशनान, हर की भगत करो तजमान, हर अमृत पान करो साध संग, मंत्र पतासै कीर्तन प्रभरंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पू आत्मा हर नाम रस पुख है, गुर पूरे ते एह निहचा उपाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। सलोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत ना काम, पतो धारण मन बसै, नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार, आवत जात नरके अवतार, हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो, हर सो का दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आशा देओ, दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत

के बजाए नानक दुही श्री खसम आपे वरत है नित कर कर देखै चलत सवाए महला चौथा एक मन एक वरत दा जित लगै सो थाए पाए कोई गल्ला करे कनेरिया जे घर वत होवै साई खाए बिन सतगुर सोझी ना पवै हंकार ना विचों जाए हंकारिया नो दुख भुख है हथ तड़ै कर कर मंगाए कूड़ ठगी गुजी ना रहै मुलम्मा पाज लै जाए जिस होवै पूर्व लिखिया ते सतगुर मिलै प्रभ आए जो लोहा पारस भेटिया मिल संगत स्वर्ण होए जाए जन नानक के प्रभ तू धनी ज्यो पावै तिवै चलाए पौड़ी जिन हर हिरदय सेव्या तिन हर आप मिलाए गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगुण सब जलाए अवगुण विकण पलरी जिस देह सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे अपने जिन अवगुण मेट गुण प्रगटी आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए सलोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो वंदन हर हर नाम ते आवै हर हर नाम रमत सो संजम हर नाम में ही तृप्तावै हर नाम तान हर नाम दीबाण हर नामो रख करावै जो चित लाए पूजे गुरमूर्त सो मन इच्छे फल पावै जो निंदा करे सतगुर पूरे की तस्करता मार देवावै फिर ओह वेला उस हथ ना आवै ओह अपना बीजा आपे खावै नरक कोर मोह का लै खड़िया ज्यो तस्कर पाए गलावै फिर सतगुर की सरनी पवै ता उबरै जा हर हर नाम ते आवै हर बाता आख सुनाए नानक हर करते ए वै भावै महला चौथा पूरे गुर का हुक्म न मन्नै ओह मनमुख अज्ञान मुठा बिखमाया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझै अणहोंदे झगड़े दईये उस दे गल पाया ओ गल फरोसी करे बहु तेरी उसदा बोलिया किसे ना पाया ओह कर कर हंडै जो रन दुहागण उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया गुरमुख होए सो अलिपतो वरतै उसदा पास छड गुर पास बह जाया जो गुर गोपे अपना सो भला नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया पहला आगम निगम नानक आग सुनाए पूरे गुर का बचन उपरे आया गुर सिखा वड्याई पावै गुर पूरे की मन मुखा ओ वेला हथ ना आया पौड़ी सच सच्चा सबदू वड्डा है सो लै जे सतगुर टिके सो सतगुर जे साहित्य आईंदा सच सच्चा सतगुर एके सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वस छिके जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे तिन अंदर कूड़ फिट फिट मोए फिके ओए बोले किसे ना भावनी मोह काले सतगुर ते चुके सलूक महला चौथा हर प्रभ का सब खेत है हर आप किरसाणी लाया गुरमुख बख्श जमाईयान मन मुखी मूल गवाया सब को बीजे अपने भले नो हर भावै सो खेत जमाया गुर सिखी हर अमृत बीजिया हर अमृत नाम फले अमृत पाया जम चूहा किरस नित कुरकदा हर करतै मार कढ़ाया किरसाणी जमी भाव कर हर बोहल बख्श जमाया तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन जिनी सतगुर पुरख ते आया जन नानक नाम आरा दिया आप तरिया सब जग तराया महला चौथा सारा दिन लालच अटिया मनमुख हो रे गला राती उगै दबिया नवे सोत सब ढिला मनमुखा दै सिर जोरा अमर है नित देवै भला जोरा दाख्या पुरख कमाम दे से अपवित अमेद खला काम व्यापक शुद्ध नर से जोरा पुछ चला सतगुर कै आख्या जो चलै सो सतपुरख पल पला जोरा पुरख सब आप उपायन हर खेल सब खिला सब तेरी बणत बनावनी नानक पल पला पौड़ी तू वेहो तू वे प्रवाहो अथाहो है अतुल क्यों तुलिय।

जन सतगुर मिली है। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणी है। सतगुर की रिस है होर कच पिच बोल दे, से कूड़ियार कूड़े चढ़ पड़ी है। ओ नांदर होर मुख होर है, बिख माया नो चख मर दे कड़ी है। श्लोक महला चौथा। सतगुर की सेवा निर्मली, निर्मल जन होए सो सेवा काले। जिन अंदर कपट विकार झूठ, ओए आपे सच्चे वख कड्डे जजमाले। सच्यार सिख बै सतगुर पास कालन, कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले। जिन्ना सतगुर का आखिया सुखावै नाही, तिन्ना मोह भलेरे फिरै दईए गाले। जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी, से किचर कवे राइयन मन मुख बेताले। सतगुर नो मिले सो अपना मन थाए रखै, ओह आप वरतै अपनी वथ नाले। जन नानक एक ना गुर मेल सुख देवै, एक आपे वख कड्डै ठगवाले। महला चौथा। जिन्ना अंदर नाम निधान हारो, तिनके काज दईये आंदे रास। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभ अंकर।

देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिने अपने जोर सब आण निवाए, अपने भगतां की रख करे हर स्वामी, निंदका दुष्टां के मोह काले कराए, सतगुर की वड़ियाई निचड़ै सवाई, हर कीर्त भगत नित आप कराए, अंध नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुरसिखा के मोह जले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहब आप है ससा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभु वणजारे थारे, सच सेवा सच वणंजल है गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे, श्लोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवै तिसदा कदे ना होवी भला, उस दे आखे है कोई ना लगै नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वज्जै कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई, मुकट न सके उसदा काला भया, कर्म धरती शरीर कलयुग विच जिहा को बीजे तिहा को खाए, गल्लां उपर तपावस न होई विस खादी तत्काल मर जाए, भाई वेखो न्याओ सच करते का जिहा कोई करे तिहा कोई पाए, जन नानक ओ सब सो जी पाई हर दर किया बातां आख सुनाए, महला चौथा, हुंदे प्रतख गुरु जो विछड़े तनको दर ढोई नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाई, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल पूसे खाही, जिन गुर गोप्या अपना से लेंदे टहा फिराही, तिन की भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कूकाही, ओना दा आख्या को ना सुनै नित हौले हौल मराही, सतगुर की वड्याई वेख ना सकनी ओना अगे पिछे था ओ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाय मिलै रहंदी खोंदी सब पत गवाही, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे ओस मिलै तिस कुश्ट उठाही, हर तिनका दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, तुर करता आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक ना मारा तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावै की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही, महला चौथा, जे होंदे गुरु बैठकिया ते जन की वड्याई वड्डी होई, तिसको जगत निव्या सब पैरी पया, जस वर्तिया लोई तिसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार करे, जिसके मस्तक हथ धरिया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़ै सवाई अपड़ को ना सकोई, जन नानक हर करता आप बैठकिया आपे पैज रखे प्रभ सोई, पौड़ी काया कोटिया भार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वस माले, नाम निदान हर बन जिये हीरे परवाले, विण काया जे होर थै तन खोज दे से मूड बिताले, से उजड़ परम पवाई है ज्यो चाड़ मिर्ग पाले, श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मैं होया, नरक कोर दुखू है ओथे पकड़ ओह टोया, कूक पुकार को ना सुने ओह औखा होए होए रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लहा मूल सब खोया, ओह तेली संदा बल्द कर नित भलके उठ प्रभ जोया, हर वेखै सुने नित सब किश तिदू किश गुजा ना होया, जैसा जैसा बीजै सो लुणै
जेहा पुरब किने बोया, जिस कृपा करे प्रभ अपनी, तिस सतगुर के चरण धोया। गुर सतगुर पिछे तर गया, जो लोहा काट संगोया, जन नानक नाम ते आए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वड भागियां सोहागणी, जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राए, अंतर जोत परगासिया, नानक नाम समाए। पौड़ी, एहो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गोहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेव कड़े खोत। सब आत्म राम पछाणिया, ता एक रविया एको ओत पोत, एक देखिया एक मन्या, एको सुनिया श्रवण सरोत। जन नानक नाम सलाहे तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस्तिन के हृदय है, जिन हर वसिया मन माहे, हर दरगह ते मुख उजले, तिन को सब देखन जाए। जिन निरपौ नाम ते आया, तिन कौ पौ कोई नाहे, हर उत्तम तिनी सरेविया, जिन कौ तुर लिखिया आहे, ते हर दरगह पहनाई है, जिन हर मुठा मन माहे। ओए आप तरे सब कुटुंब स्यों, दिन तिन पिछे सब जगत छड़ाहे, जन नानक कौ हर मेल जन तिन।

गुर पूरा हर प्रभ सेवया मन वजीवा दाई। श्लोक महला चौथा। जिन्ना अंदर उम्र थल से ही जान सूलिया, हर जाने से ही बिराओ हाओ तिन विटो साध कुम कोलिया। हर मेलो सज्जन पुरख मेरा सिर तिन विटो तल रोलिया। जो सिख गुर कार कमावे हाओ गुलम तिना का गोलिया। हर रंग चलू लै जोर ते तिन पिनी हर रंग चोलिया। कर कृपा नानक मेल गुर पै सिर वेचिया मोलिया। महला चौथा। औगणी भरिया शरीर है क्यों संतों निर्मल होए। गुरमुख गुण में हाजी है मलह मैं कंडे धोए। सच वणंजै रंग स्यों सच सौदा होए। तोटा मूल ना आवई लाहा हर पावे सोए। नानक तिन सच वणंजिया जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए। पौड़ी सलाही सच सलाहना स सच्चा पुरख निराले। सच सेवी सच मन वसै स सच्चा हर रखवाले। सच सच्चा जिनी आराध्या से जाय रले सच नाले। स सच्चा जिनी ना सेव्या से मन मुख मूड बेताले। ओहो आल पताल मोह बोल दे जो पीता मद मतवाले। श्लोक महला तीजा। गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे। भाणे चलै सतगुरु कै ऐसा सिंगार करे। सच्चा शब्द पतार है।

और ओल के झोला गुरमुख जापै शब्द लिवलाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए ज्योत पावै सो करे कराया नानक वज

फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणते कुसी है, दुखे दुख विहाए। सतगुर पुरख निर्वैर है, आपे लय जिस लाए, नानक दर्शन जिन्ना विखा लेन तिन्ना दरगह ले छाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुवे मतहारी, कूड़क सत ओह।

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कढ दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड़ई, मन वेखो को निरजास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां, रहंदे खोंदे निंदक मारिया नू।

अमृत नाम निदान है मिल पीवो पाई, जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर भुख रहे ना काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरनाई। श्लोक महला पंजवा, डिठड़ो हबठाए ऊना काई जाए, नानक लद्दा तिन सवाओ जिन्ना सतगुर भेटिया। महला पंजवा, दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे, वत सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तनी पौड़ी, सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीम ना जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख एह रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर प्राणी, तोसा दिचे सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा, अंतर चिंता नैनी सुखी मूल ना उतरे भुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथो दुख। महला पंजवा, मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच ना लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमल एक पछाणिया पौड़ी, जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समर्थ अपना बिनसै सब मंदा, पत ते उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत वछल तेरा बिरद है जो जुग वर्तंदा, नानक जाचै एक नाम मन तन पावंदा। श्लोक महला पंजवा, चिड़ी चौकी पहु फुटी वगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे नानक नामै रंग। महला पंजवा, घर मंदिर खुशियां तही जह तू आवे चित, दुनिया किया वड़ियाईया नानक सब को मित पौड़ी, हर तन सच्ची रास है किने विर लै जाता, तिसे प्राप्त पाए रहो जिस दे विधाता, मन तन पीतर मौलिया हर रंग जन राता, साध संग गुण गाया सब दुख है खाता, नानक सोई जीविया जिन एक पछाता। श्लोक महला पंजवा, खखड़ियां सोहावियां लगड़ियां अककंठ, ब्रह विछोड़ा धनी स्यो नानक सह सह गंठ। महला पंजवा, विसारें दे मर गए मर पे ना सकै मूल, वे मुख होए राम ते जो तस्कर उपर सूल पौड़ी, सुख दान प्रभ एक है अवनासी सुनिया, जलथल मैयल पूरिया घट घट हर भणिया, ऊच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया, मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया, तुस नानक देवै जिस नाम तिन हर रंग मणिया। श्लोक महला पंजवा, जिन्ना सास ग्रास ना विसरै, हर नामा मन मंत धन से सेई नानका, पूर्ण सोई संत। महला पंजवा, अठे पहर पौंदा फिरै खावण संदड़ै सूल, दोजक पौंदा क्यों रहै जा चित ना होए रसूल पौड़ी, तिसै सिरे वो प्राणी हो जिसदै नाउ पल्लै, ऐथै रहो सुहेलिया अगै नाल चलै, घर बंदो सच धर्म का गढ़ थम अहलै, ओट लहो नारायण दीन दुनिया चलै, नानक पकड़े चरण हर तिस दर गै मल्लै। श्लोक महला पंजवा, जाचक मंगै दान देह प्यारिया, देवन हार दातार मैं नित चितारिया, निखुट ना जाई मूल अतुल भंडारिया, नानक शब्द अपार तिन सबके सारिया। महला पंजवा, सिखो शब्द प्यारो जन्म मरण की टेक, मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी, ओथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने, जम कै पंथ ना पाई है फिर ना ही मरने,
जिसनो आया प्रेम रस तिसै ही जरने बाणी उचरै साध जन अम्यो चलै चरने पेख दर्शन नानक जीविया मन अंदर धरने। श्लोक महला पंजवां। सतगुर पूरै सेवै दुखा का होय नास नानक नाम आराध्य कारज आवै रास। महला पंजवां। जिस सिमरत संकट छुटै आनंद मंगल बिसराम नानक जपियै सदा हर निमख ना बिसरो नाम। पौड़ी। तिनकी शोभा क्या गणी जिनी हर हर लद्दा सादा सरणी जो पवै सो छुटै बद्दा। गुण गावै अबनासीयै जोन गर्भ ना दद्दा गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पढ़ बुझ समद्दा। नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा। श्लोक महला पंजवां। कामना करही अपना फिरै अवता लोए नानक नाए विसारै सुख नेहा होए। महला पंजवां। बिखै कौड़ अतन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाउ। पौड़ी। एह निशानी सा

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी, गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म

भिखारी साकत मरै संत सब जीवै राम रसायन रसना पीवै कहो कबीर प्रभ कृपा की जय हार परे अब पूरा दीजै। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवां ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ। हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड लेले को चूंगै नित भेड़ राम रमत मत प्रगटी आई कहो कबीर गुर सोजी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यो जल छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ। सगल जन्म से पुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तब की आकाशी मरण पया मगहर की बासी काशी मगर संबिचारी ओछी भगत कैसे उतरस पारी कहो गुर गाज शिव

सूर्य चंद करै जियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत पाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर आप ते बांधया, मोह कै फाद काल सर संध्या, रहा कटी ना कटे टूट न जाई, सास अपन होए जग को खाई, हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया। गौड़ी कबीर जी दे मुहार

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कह चब कुमाराओं। कहत कबीर पले असवारा, बेदक देवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम रा

गौड़ी कबीर जी आपे पावके आपे पवना, जारै खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया समाए रहाओ। काको जरै काहे होए हान, नटवट खेलै सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम तां लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे, ना मैं जोग त्या।

कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो वान। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर।

कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियोर लाए, पंच दूते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काढ़ लीन सागर संसार। चरण कमल स्यो लागी प्रीत, गोविंद बसै नेता नित चीत। माया तपत बुझिया अंगियार, मन संतोख नाम आधार। जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पे खो तत अंतर जामी। अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई। जिस कृपा करे तिस पूर्ण साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक योपत होई। जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बेगोई। कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रहाओ। नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रवनी होई। उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परे रसोई। फासन की बिद सब को जानै, शूटन की एक कोई। कह कबीर राम हृदय विचार है, सूतक तनै ना होई। गौड़ी झगरा एक न बेरो राम, जाओ तुम अपने जन सौ काम रहाओ। एहो मन बड़ा के जा सौ मन मानिया, राम बड़ा कह राम मैं जानिया। ब्रह्मा बड़ा के जा सो पाया, वेद बड़ा के जहां ते आया। कह कबीर हो पाया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। राग गौड़ी चेती देखो भाई, ज्ञान की आई आंधी। सबै उडानी परम की टाटी, रहे न माया बांधी रहाओ। दुचित्ते की दोए थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा। तिसना शान परी तारी उपर, दुरमत पांडा फूटा। आंधी पाछे जो जल बरखे, तह तेरा जन पीना। कह कबीर मन पया प्रगासा, उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। हर जा सुने ना हर गुण गावै, बात नहीं असमान गिरावै। ऐसे लोगन स्यो क्या कहिए, जो प्रभ किए भगते बाहजो। तिनते सदा डराने रही है रहाओ। आप ना देहे चुरू पर पानी, तह निंदे जे गंगा यानी। बैठत उठत कुटलता चाल, आप गए और नहु कहल। छाड़ को चर्चा यान ना जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न माने। आप गए और नहु खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ले जाने। राग गौड़ी बैरागण कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जीवत पितर नाम

लाज बहारी, लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल कृपा करे अपना कार्य सवारे, पांसो हागण जानिए गुरशब्द विचारे। किरत की बांधी सफर है देखो बिचारी, एसनो क्यों आखी है क्या करे विचारी। पई निराशी उठ चली चित बंद ना धीरा, हर की चरणी लाग रहो पाए सरन कबीरा। गौड़ी जोगी कहे जोग पल मीठा, अवरना दूजा पाई, रुंडत मुंडत एक है सबदी एक है सिद्ध पाई। हर बिन परम पुलाने अंधा, जां पै जाओ आप छुटकावनो ते बांधे बहु फंदा। रहाओ जहते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तब ही, पंडित गुणी सूर हम दाते एक है बड़ा मही। जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूकै। इन बिद माणक लही है, तज बावे दाहने बेकारा, हर पद दृढ़ कर रही है। कहो कबीर गूंगे गुड़खाया, पूछे ते क्या कही है। हरा गौड़ी पूर्वी कबीर जी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जह कछ आहा तहा किश नाही, पाई तत्त नाही, इड़ा पिंगला सुखमन बंदे ए अवगन कत जाही।

मोको को ना कह समझाई रहाओ। जह बरपंड पिंड तै नाही रचनहार तै नाही, जोड़ नहारो सदा अतीता एक ही है किस्माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे जब लग हुए बिनासी। काको ठाकर काको सेवक को काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती। ओआ का मरम ओही पर जाने ओ तो सदा अबनासी। गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा। सुन गुफा मैं आसन बैसन कल्प बिबरजित पंथा। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्तना सोग बियोगी रहाओ। खंड ब्रह्मांड मैं सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तुम्बा करी है जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती टूट सनाही अनहद किंगरी बाजी। सुन मन मगन पए है पूरे माया डोलन लागी। कहो कबीर ता को पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाम गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई। साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधकाई। गई बनावन माहो कर छोड़िया जाए जुलाहो रहाओ। गजी ना मिनिया तोल ना तुलिए पाचन से अडाई। जौ कर पाचन बेग ना पावे चगर करे करहाई। दिन की बैठ खसम की बरकस एह बेला कत आई। छूटे कुंडे भीगे पुरिया चलो जुलाहो रिसाई। छोछी नली तंतनी निकसै नतर रही उर जाई। छोड़ पसार इहार बपरी कौ कबीर समझाई। गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा होए महोए। जित कट नाम नाई उपजै फूट मरै जन सोए। सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे रहाओ। साध मिलै सिद्ध पाई है के ओह जोग के भोग। दोह मिल कारज उपजै राम नाम संयोग। लोग जान

जेते जतन करते डूबे भव सागर नहीं तारे ओरे कर्म धर्म करते बहु संजम अहम बुद्ध मन जारे ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे ओरे हीरा लाल अमूल जन्म है कौडी बदले हारे ओरे रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी हृदय नहि बिचारे ओरे उन्मत मान हिरयो मन माही गुर का शब्द ना धारे ओरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बेकारे ओरे कर्म भाग संतन संगाने काष्ट लो उधारे ओरे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारे ओरे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारे ओरे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचियो जगदीश काम सो आए गज बस परे मन बवा रे अंक सहयो शीस बिखे बाच हर राच समझ मन बौरा रे निरपय होए ना हर भये मन बौरा रे गहयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे नाचियो कर कर बार जो नली सुवटा गहयो मन बौरा रे माया यो व्यवहार जैसा रंक सुंभ का मन बौरा रे त्यों पसरियो उपासार नावन कौ तीर्थ कने मन बौरा रे पूजन कौ बहुदेव कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे छूटन हर की सेव गौड़ी अग्न न दह पवन नहीं मगन तस्कर नेर न आवे राम नाम तन कर संचौनी सो तन कत ही ना जावे हमरा तन माधव गोबिंद तरणी तार एह सार तन कही है जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राज न लही है रहाओ इस तन कारण शिव सनकादक खोजत पए उदासी मन मकांजे बा नारायण परै न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अंब थंब मन तावत परम बंधन पौ भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट अश्वहस्ती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कपके कर मुष्ट चनन की लुप्त ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यों ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रहयो रहाओ ज्यो उद्यान कुसुम पर फुलत कहना ना कराओ लयो तैसे प्रमता नेक जोन मैं फिर काल हयो या तन जोबने अरसुत दारा पेखन कहो जो दयो तिन्ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औद अनल तन तिन को मंदर चौदे ठाठ ठयो कह कबीर पै सागर तरन कहो मैं सदगुर ओट लयो गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं नाही कश आहे ना मोरा तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ इस माटी मैं पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी खिर मैं बिन सजाए हंकारी गौड़ी

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा, ज्यो फूल जई है नार, कह कबीर गुलाम कर का, जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं परमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ, संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकर, जा कै माई ना बापोरे। गौड़ी निंदो निंदाओ मोको लोग निंदाओ, निंदा जन कौ खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी रहाओ, निंदा होए ता बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए, हृदय शुद्ध

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लोरै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पहे है, कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास हो जारा। नौ कर देख जो कामन भूली, बस्ता नूप ना पाई। कहत कबीर नवे कर मूसे, दसवें तत् समाई। गौड़ी माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, शिव सनकाद जास गुन गावे, तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, गगन मंडल में ध्याना ना। बिखे रोग पै बंधन भागे, मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ, दूसर मने ना आना ना। चंदन बास भय मन बासन, त्या कट्यो अभमाना ना। जो जन गाए त्याय जस ठाकर, तास प्रभु है थाना ना। तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो, एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख, भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बामन अखरी, कबीर जियो की एक ओंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

मन ना रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तसल है ना कोई। अल्लाह लहो तव क्या कहो, कहो ता को पुकार, बटक बीज में रव रहो, जाको तीन लोक विस्तार। अल्लाह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदयो, पायो अपंग छेद। तुरक तरीकत जानिया, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशवक पढ़िया ज्ञान। ओवंकार आद मैं जाना, लिखियार मेटै ताहे ना माना, ओवंकार लखै जो कोई, सोई लख मेटना ना होई। कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा। खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे जस्तावा, खसमै जान खिमा कर रहे, ता होए निखियाओ अखै पदल है। गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न धरी काना, रह बिहंगम कतै ना जाई, अगै गह गै गगन रहाई। कग्गा घट घट निवसै सोई, घट फूटे घट कवै ना होई। ता कट माहे काट जो पावा, सो कट छाड़ अव कट कत्तावा। गंगा निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह। चचा रचित चित्र है भारी, ता चित्र है चेतो चितकारी। चित्र बचित्र है अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छच्छा है छत्रपत पासा, छक के ना रहो उषाड़ के ना आसा। रे मानव मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत्या बधावा, जज्जा जाओ।

मन माना। है तो सही लखे जो कोई, तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापे बो सोग। लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे, सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजू न चेते। अब जग जान जो मना रह, जह का बिचरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन, सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह, पंडित हुए सो अन पैर है। पंडित लोग कौ व्यवहार, ज्ञानवंत कौ तत् विचार। जा कह जी जैसी बुद होई, कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी थिति कबीर जी की। श्लोक पंद्रह थिति सात वार, कह कबीर उर्वार ना पार। साधक सिद्ध लखे जो पे ओ, आपे करता आपे दे ओ। थिति अमावस में आस निवारो, अंतर जामी राम सुमारो। जीवत पावो मोख द्वार, अनपौ शब्द तत् निजसार। चरण कमल गोबिंद रंग लागा, संत प्रसाद भय मन निर्मलो। हर कीर्तन में अंदर जागा रहाओ। परवा प्रीतम करो बिचारो, घट में खेल अकट अपारो। काल कल्पना कदे ना खाए, आद पुरख में रह समाए। द्वितीया दोहकर जाने अंग, माया ब्रह्म में सब संग। ना उबड़े न करता जाए, अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वै, आनंद मूल परम पद पावै। साध संगत उपजे विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो, काम क्रोध संकबो ना बहो। जलथल माहे आपे आप, आपे जपो अपना जाप।

दसवीं दैदस होए आनंद छूटै परम मिलै गोबिंद ज्योत स्वरूपी तात्यानूप अमल ना मलन शाह नहीं धूप। एकादशी एक दिस्तावै तो जोनी संकट बहुर ना आवै शीतल निर्मल पया शरीरा दूर बतावो पाया नीरा। बारस बारै उगवै सूर अहनिस बाजे अनहद तूर देख्या तिहू लोक का पियो अचरज पया जीव ते सीओ। तेरस तेरा अगुंब खान अर्ध उर्द बिच सम पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम में बसै मुरार सासन तो कातरो ध्यान कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान। पुन्यो पूरा चंद आकाश पसरे कला सहज प्रगास आद अंत मद होए रहया थीर सुख सागर में रमै कबीर। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत बार बार हर के गुण गावो गुरगम पे सो हर का पावो रहाओ। आदित करै भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंब अहनस अखंड सो रही जाए तो अनहद बेण सहज मह वाए। सोमवार सस्य अमृत चरै चाखत बेख सगल बिखहरै बाणी रोकिया रह द्वार तो मन मत वारो पीवनहार। मंगलवारे ले माहीत पंच जोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए ना तर खरा रिसै है राए। बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में हर का बास। गुरमिल दो एक समतरै उर्द पंक लै सूदा करै बृहस्पत बिखिया दे बिहाए तीन देव एक संग लाए तीन नदी तै त्रिवटी माहे एनस कसमल तो वै नाहे। सुकृत सहारै सो एह व्रत चढ़ै अनदिन आप आप स्यों लड़ै। सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट न पैसै कबै। थावर थिर कर राखै सोए जोत दी वट्टी कट मैं जोए। बाहर पीतर पया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास। जब लग कट मैं दूजी आन तौ तो लो महल न लाभै जान। रमत राम स्यों लागो रंग कह कबीर तब निर्मल अंग। राग गौड़ी चेती बाणी नाम देव जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। देवा पाहन तारी अले राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बदक जन तेऊ मुक्त भये हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा।

मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई, कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ, ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, अब मोए खूब

कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण। संसा सद हृदय बसै, कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पखारी है, घट भीतर बिबद बेकार। शुद्ध कवन पर होए बो, सुच कुंचर बिद व्यवहार। राव प्रगास रजनी जथा गत, जानत सब संसार। पारस मानो ताबोश होए, कनक होत नहीं बार। परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ललाट। उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट। भगत जुगत मत सत करी, परम बंधन काट बेकार। सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार। अन

तेरे अनेक पड़े बो सिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी। जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुद जे वड्यावर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू निचर करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी। तू आपे करै सो होई तुद आपे सिरहिट सब यो पाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सह का जान होई एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला पहला चौपदे कर दूजा। सुन वड्डा आखे सब कोई केवड वड्डा डीठा होई। कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई कहन ना जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुद बिन सिद्धि किने ना पाईया कर्म मिलै नाही ठाकराईया। आखण वाला क्या बेचारा सिबती परे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा नानक सच सवारण हारा। आसा

सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै काट ना जाए।

तो आसा महला पहला जे दर मांगत पू करे महली खसम सुने भावे तीर्क भावे तके एक वडाई दे जानो जोत ना पूछो जाति आगे जात ना हे रहाओ आप कराए आप करे आपो लामे चित धरे जा तू करन हार करतार क्या मोहताजी क्या संसार आप यो पाए आपे दे आपे दुरमत मने करे गुर प्रसाद वसे मन आए दुखा नेरा विच्चों जाए साज प्यारा आप करे अवनी को साज ना दे जे किसे देव खाने नानक आगे पूछना ले आसा महला पहला ताल मदीरे कटके काट दोलक दुनिया वाजे वाज नारद नाचे कल का पाओ जति सती कह रख उपाओ नानक नाम विटो कुर्बान अंधी दुनिया साहेब जान रहाओ गुरु पासो फिर चेला खाए ताम प्रीत वसे कर आए जेसो वरिया जीवन खान खसम पछाण सो दिन प्रवान दर्शन देखे दया ना होए लय दते विन रह ना कोए राजा न्याओ करे हथ होए कहे खुदाए न माने कोए मानस मूर्त नानक नाम करनी कुत्ता दर फुरमान गुर प्रसाद जाने मेहमान ता किस दरगे पावे मान आसा महला पहला जेता शब्द सोरत तुन तेती जेता रूप काया तेरी तू आपे रसना आपे बसना अवरना दूजा कहो माई।

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मंत्र पित ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमें माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चलतो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द पाखे। साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए, आसा महला पहला। जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हृदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ। कर्म धर्म

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंद, खान जीवन की बहुती आस, लेख तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पाओ जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो मन नाओ, हम बलिहार ता कह जाओ, नानक करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगे बैसन होवे थाओ, जा तुद भावे ता दुम जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुद बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विण सेवा फल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावें जियो रह नाही, मत विच मरण जीवन

काया ब्रह्मा अमन है धोती, ज्ञान जनेऊ त्यान कुसपाती, हर नामा जजा चो नाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चजाचार रहाओ। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, धोती टिक्का नाम संभाल, एथे उथे निभि नाल, विणना वै होर करम ना पाल। पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागै, पाहरू राशब चोर ना लागै, तिलक लाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक, आचारी नहीं जीतिया जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। अहिट दसी चहो भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच नाम गुर शब्द।

एक ना परिया गुण कर तोवा मेरा सौ जग हो निष्परसोवा इओ क्यों कंत प्यारी होवा सौ जग हो निष्परसोवा रहाओ आस प्यासी से जयावा आगे से पावा के ना पावा क्या जाना क्या होए गारी माई हार दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी गया सो जो बंतान पछतानी अजय सो जागो आस प्यासी पही ले उदासी रहो निरासी रहाओ हाउ मैं खोए करे सिंगार तव कामन से जरवे पतार तव नानक कंते मन पावे छोड़ वडाई अपने खसम समावे रहाओ आसा महला पहला पेव कड़ैतन खरी ए

साहुरडे तन सच पिछाणिया सहज सुभाए अपना पिर जाणिया गुरप्रसादी ऐसी मत आवै ता कामण कंतै मन भावै कहत नानक पै भाव का करे सिंगार सधी से जै रवै पुतार आसा महला पहला ना किसका।

को सोई। कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियाले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला शे घर शे गुर शे उपदेश गुर गुर एको वेसानेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तोहे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिति वारी माहो पया सूरज एको रोता नेक नानक करते के तेवेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा कर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवै ता सब निरा फल काम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंदो वंदा रहाओ लख खटिए लख संजिए खाजै लख आवै लख जाहे जा पत लेखै ना पवै ता जी किथै फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़ै पुराण जा पत लेखै ना पवै ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजै कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक ठे एक रतीले पाहे रहाओ पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्मराओ सच्चा नामन तांथी है जा एनस लागे पाओ एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सना है आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवतियां दर्शन कहताई दुख भूख तीर्थ किए जोगी जति जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पए तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़वे लायत देश गए पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए सात सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमड़ लिए दुखिए

प्रणवै नानक जात कैसी, आसा घर पंजवा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पीतर पंच गुप्त मन वासे, थिर न रह जैसे भवै उदासे। मन मेरा दयाल से ती थिर न रह।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर छेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सिंगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन मोही तेरे गुण होहे नायवरी रहाओ हर हर हर कंठ ले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तेरे मधसूदन कर मुंदरी पहरे परमेसर पट ले तीरज तीरज तड़ी बंदावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे

अमृत नाम ने रंजन पाया, ज्ञान काया रस भोगं रहाओ, शिव नगरी में आसन बैसाओ, कल्पते आगी बादं, सिंगी शब्द सदा तुन सोहै, एनिस पूरे नादं, पत विचार ज्ञान मत डंडा, वर्तमान बेपूतं, हर कीर्त रैरा सहमारी, गुरमुख पंथ अतीतं, सगली ज्योत हमारी समया, नाना वर्णा नेकं, कहो नानक सुन पार्थर योगी, पार ब्रह्म लिवेकं, आसा महला पहला, गुड़ कर ज्ञान त्यान कर तावै, कर करनी कस पाई है, पाठी पवन प्रेम का पोचा, इतरस अम्यो चुआई है, बाबा मनमत वारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहनस बनी प्रेम लिवलागी, शब्दा नाहद गहया रहाओ, पूरा सच प्याला सहजे, तिसे पियाए जां को नदर करे, अमृत कावा पारी होवे, क्यामत शूशे पाओ तरे, गुर की साखी अमृत बाणी, पीवत ही परवान पया, दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुक्त बैकुंठ करे क्या, सिफती रता सद बैरागी, जुवे जन्म ना हार है, कहो नानक सुन पार्थर योगी, खीवा अमृत धार है, आसा महला पहला, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोषना देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कर लाने, तै की दर्द ना आया, करता तू सबना का सोई, जे सकता सकते कौ मारे, ता मन रोसना होई रहा हो, सकता सीहो मारे पैवगे, खसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ वे गोए कुत्ती, मुया सार ना काई, आपे जोड़ वे छोड़े आपे, वेख तेरी वड़े आई, जे को ना उतराए वड़ा, साध करे मन पाने, खसमै नदरी कीड़ा आवै, जेते चुगै दाने, मर मर जीवै ताक्ष पाए, नानक नाम वखाने, राग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर दर्शन पावै वडभाग, गुर कै सब सच्चै बैराग, खर दर्शन वरतै वरतारा, गुर का दर्शन अगम्या पारा, गुर कै दर्शन मुक्तगत होए, साचा आवसै मन सोए रहाओ, गुर दर्शन उदरै संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा, पाओ प्यारा लाए विरला कोए, गुर कै दर्शन सदा सुख होए, गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार सधार, निगुरे कहो गतकाई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर कै शब्द सुख सांस शरीर, गुरमुख ता कहो लगे ना पीर, जम काल तिस नेड़ ना आवै, नान गुरमुख साज समावै, आसा महला तीजा, शब्द मुवा विचों आप गवाए, सतगुर सेवे तलना तुमाए, निरपव दाता सदा मन होए, सच्ची बाणी पाए भाग कोए, गुण संग्रहो विचों अवगुण जाहे, पूरे गुर कै शब्द समाहे रहाओ, गुणा का गाहक होवै सो गुण जाने, अमृत शब्द नाम वखाणे, साची बाणी सूचा होए, गुणते नाम प्राप्त होए, गुण्या मोलक पाए ना जाहे, मन निर्मल साचा शब्द समाहे, सेवट भागी जिन नाम ते आया, सदा गुण दाता मन वसाया, जो गुण संग्रह तिन बलहारै जाओ, दर साचै साचे गुण गाओ, आपे देवै सह सुभाए, नानक कीमत कहन ना जाए, आसा महला तीजा, सतगुर विच वड्डी वड्याई, चिरी विछुन्ने मेल मिलाई, आपे मेले मेल मिलाए, अपनी कीमत आपे पाए।

विरले कर्म प्राप्त होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाने कोए, विण नावै दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरै पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिलै सजाए, हर का नाम मीठा अत रस होए, पीवत रहै पियाए सोए, गुर कृपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख सांस शरीर, शब्द तरे जन सहज सुभाए, तिनकै हम सद लागै पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुखला था, ते हर दरगह मिलै सुभाए रहाओ, शब्द चाखै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहया भरपूर, आपे नेड़ा आपे दूर, आखने आखै बकै सब कोए, आपे बख्श मिलाए सोए, कहना कथन ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विचों

आए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ मोह गुमान गुर शब्द जलाए पूरे गुर ते सोजी पाए अंतर महल गुर शब्द पछाणै आवन जान रहै थिर नाम समाणै जमन मरना है संसार मन मुखा चेत।

खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोवो हर सिंचव गुरमत जेहत जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लावो मनुआ पेल आसा महला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हौं तब लग सुमारो नाम मेरे मन ऐसी भगत बने आई हौं हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुने उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे तब लग मेरा मन राम गुन गावे कब को नाचे पाप पसारे कब को हाथ फसारे हाथ पाप पसारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम सुमारे कब को लोगन को पति आवे लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हृदय सत्य आवो ता जय जय करे सब कोए आसा महला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कड़ चानन अज्ञाना दे राजाए हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे भाई हम जन के तो वह पाए रहाओ हर हर नाम जपो मन मेरे अन दिन हर लिव लाए जो इच्छाओ सोई फल पावो फिर भूख न लग आए आपे हरे परंपर करता हरे आपे बोल बुलाए सही संत भले तुद पावे जिनकी पत पावे थाए नानक आखना राजे हर गुण ज्यो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हरे अपने गुण गाहक वणज लै जाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवां राग आसा कर अठवें के काफी महला चौथा आया मरण तो राहो हम मैं रोई है गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होई है गुरपूरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया रहाओ पूर्व लिखे डेहे से आए माया चलन अज के कल तुरों फुरमाया बिरथा जन्म तिन्ना जिनी नाम विसारिया जुए खेलन जग के हो मन हारिया जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सचे सच सच समाया आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया गुर प्रसादी बुझ सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया दर सचे सचियार महल बुलाया रहाओ अंतर नाम निदान गुरमुख पाई है अंदर नाम ते आए हर गुण गाई है अंतर वस्जा नेक मनमुख नहीं पाई है हम मैं गर्भ है गर्भ आप खुआई है नानक आपे आप खुआई है गुरमत मन पर गास सच्चा पाई है राग आसावरी कर सोलवे के दो महला चौथा सुधंग एक ओंकार सतगुर प्रसाद हौं आंदिन हर नाम कीर्तन कराऊं सतगुर मोको हर नाम बताया हौं हर बिन खिन पल रह ना सकूं रहाओ हमरे श्रवण सिमरन हर कीर्तन हौं हर बिन रह ना सकूं हौं एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन किन्हू प्रीत लाई दूजा पाओ रिद तार किन्हू प्रीत लाई मोह अपमान हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान आसावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बतावो री माई
हाँ हर बिन खिन पल रह ना सको, जैसे कर हल बेल रिजाई रहाओ। हमरा मन बै राग बिरक्त पायो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह ना सके, तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई। राग शरण जगदीशर प्यारे, मोहे सरदा पूर हर गोसाई। जन नानक कै मन आनंद होत है, हर दर्शन निमख दिखाई। राग आसा कर दूजा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन लाई प्रीत सोई फिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस पौ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटुंब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे। ऐसा देख बिमोहत होए, साधक सिद्ध सुरदे मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहाओ। एक फिरे उदासी तिन काम व्यापे, एक संचय गृही तिन होए ना आपे। एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुर पावे। तप करते तपसी पूलाए, पंडित मोहे लोभ सवाए। त्रै गुण मोहे मोहया आकाश, हम सतगुर राखे दे कर हाथ। ज्ञानी की होए वर्ती दास, कर जोड़े सेवा करे अरदास। जो तू कह है सो कार कमावा, जन नानक गुरमुख नेड़ न आवा। आसा महला पंजवा, ससू ते

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा में

दुख रोग भय गतंते मन निर्मल हर हर गुण गाए भय आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुरसब दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर सीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ तावत रहे एक एक बुझिया आए बसे अब नहीं चल थाए जगतो दारण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दोख परे मेरे पछ अब पकड़े निश्चल।

सोहनी स्वरूप सुजान विचखन अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ अत सूची तेरी पाक साल कर इशनान पूजा तिलक लाल गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान सब बिद खोई लोभ सुवान कापर पहरै पुगै भोग आचार करै शोभा मै लोग चोवा चंदन सुगंध विस्तार संगी खोटा क्रोध चंडाल अवर जो

जो तू करै सोई प्रवाण, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद भावै ता हर गुण गाओ, तेरा कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवां, निकट जी कै सदही संगा, कुदरत वरतै रूप रंगा। करै ना चुरै ना मन रोमन हारा, अवनाशी अवगात्या गोचर। सदा सलामत खसम हमारा रहाओ, तेरे दा

बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ। भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल स्यों लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान। नानक कौ गुर दीख्या दीन, प्रभ अविनाशी घट घट चीन। आसा महला पंजवा, आनंद बिनोद परे पुर धारिया, अपना कार्य आप सवारिया। पूर समग्री पूरे ठाकर की, भरपुर धार रही सोभ जा की रहाओ। नाम निदान

साथ पूरा गुर पूरी बणत बनाई नानक भगत मिली वड़ियाई आसा महला पंजवा गुर कै शब्द बनावो इहो मन गुर का दर्शन संचो हर तन ऊतम मत मेरा हृदय तू आओ त्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीत मोह लागे नाओ रहाओ त्रिपत गावन साचे नाए अठसठ मज्जन संत तू राए सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध बबेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक कहो गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास पई मत पूरी ताते बिरसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर।

गुर पूरा प्रगट मार्ग दिखाया। जाप ताप कश युगत न मोरी, गुर नानक शरणागत तोरी। आसा महला पंजवा ते पदे दो, हर रस पीवत सद ही राता। आन रसा खिन मैं लै जाता, हर रस के माते मन सदा आनंद। आन रसा मैं व्यापै चिंद, हर रस पीवै अलमस्त मतवारा। आन रसा सब हो छेरे रहाओ, हर रस की कीमत कही ना जाए। हर रस साधु हर सुमाए, लाख करोरी मिले ना के हे। जिसे प्राप्त तिस ही दे हे, नानक चाख पए बिस्माद। नानक गुरते आया साध, ईत ऊत कत छोड़ ना जाए। नानक गीदा हर रस माहे। आसा महला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावै। छुटकै दुरमत अपनी तारी, होए नमाणी सेव कुमावै। ता प्रीतम होवै मन प्यारी, सुन सुंदर साधु बचन उधारी। दुख भूख मिटै तेरो सहसा, सुख पावै तू सुख मन नारी। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, आत्म सुध बिखत्या सिनवारी। दासन की होए दास दासरी, ता पावै सो बाहर द्वारी। इही आचार इही ब्योहारा, आग्या मान भगत होए तुम्हारी। जो एहो मंत्र कमावै नानक, सो भौजल पार उतारी। आसा महला पंजवा, दो पदे पही प्राप्त मानुख दे हुरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै नाकाम। मिल साध संगत पज केवल नाम, सरंजाम लाग पवजल तरन कै। जन्म बिरथा जात रंग माया कै, रहाओ जप तप संजम तर्म ना कुमाया। सेवा साध ना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच करमा। शरण परे की रखो शर्मा, आसा महला पंजवा। तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, तू मेरे मन माही। तू साजन संगी पर मेरा, काहे जी डराही। तुमरी ओर तुम्हारी आसा, बैठत उठत सोबत जागत। विसर नाही तू सास गिरासा, रहाओ राख राख सरन प्रव अपनी। अग्न सागर विकराला, नानक के सुखदाते सतगुरु। हम तुमरे बाल गोपाला, आसा महला पंजवा। हर जन लीने प्रभु छड़ाए, प्रीतम स्यो मेरो मन मान्या। ताप मुआ बिख खाए, रहाओ पाला ताऊ कछु ना व्यापै। राम नाम गुण गाए, डाकी कोचत कछु ना लागै। चरण कमल शरण आए, संत प्रसाद पए कृपाला। होए आप सहाए, गुण निदानित गावै नानक। सहसा दुख मिटाए, आसा महला पंजवा। औख दिखायो हर को नाओ, सुख पाए दुख बिनसिया थाओ। ताप गया बचन गुरपूरे, अंध पया सब मिटे विसूरे। रहाओ जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। आसा महला पंजवा, बांशत नाही सो बेलायाई। बिन हुक्मै क्यों बुझै बुझाई, ठंडी ताती मिट्टी खाई। ओह ना बाला बूढ़ा पाई, रहाओ नानक दास सा सरनाई। गुरप्रसाद पौ पार पराई, आसा महला पंजवा। सदा सदा आया तुम परगास, सा संगत हर चरण निवास। राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल सांस सदा सुख पावै। किल विख जाहे सबे मन तेरे, रहाओ कहो नानक जाके पूर्ण कर्म। सतगुर पेटे पूर्ण पार ब्रह्म, दूजे करके चौतीस। आसा महला पंजवा, जा का हर स्वामी प्रबेली। पीड़ गई फिर नहीं दुहेली, रहाओ कर कृपा चरण संग मेली। सुख सहजा आनंद सुहेली, साध संग गुण गाया तोली। हर सिमरत नानक पई अमोली, आसा महला पंजवा।
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਤ ਮਦ ਸਰ ਇਹ ਖੇਲਤ ਸਭ ਜੂਐ ਹਾਰੇ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਾਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਭਾਰੇ ਮਿਲਤ ਸੰਗ ਪਇਓ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰਪੂਰੈ ਲੈਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਰਹਾਉ ਸਭ ਕੀ ਰਿਣ ਹੋਏ ਰਹਿ ਮਨੁਆ ਸਗਲੇ ਦਿਸੈ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਮੱਧੇ ਰਵਿਆ ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਭ ਜੀ ਸੁਮਾਰੇ ਏਕੋ ਏਕ ਆਪ ਇਕ ਇਕ ਏਕ ਹੈ ਸਗਲਾ ਪਾਸਾਰੇ ਜਪ ਜਪ ਹੋਏ ਸਗਲ ਸਾਧ ਜਨ ਏਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਬਹੁਤ ਉਧਾਰੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਸਾਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਵਗਤ ਆ ਗੋਚਰ ਇਹੋ ਸਭ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਕਿਆ ਹਮ ਜੰਤ ਕਰੈ ਚਤੁਰਾਈ ਜਾਂ ਸਭ ਕੇ ਤੁਜੈ ਮਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਰਾਖੋ ਲੀਲਾ ਧਾਰ ਦੇਹ ਸਮਤ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਅਗਮਿ ਅਪਾਰ ਰਹਾਓ ਜੈਸੇ ਜਨਨ ਜਠਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਓ ਰੇਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸੁਮਾਰੈ ਨਾ ਪੋਹੈ ਅਗਨਾਰ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਇਨਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਵਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੇਵੀ ਦੇ ਦਯੰਤਰ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੈ ਆਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਦੀਸੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਾਰ ਜਬ

हर आज मिलक जोबन ग्रह शोभा, रूपवंत जोवानी बहुत दर्ब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी। आगे दरगह काम न आवे छोड़ चला अभिमानी, काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर त्याई है रहाओ। महाबचित्र सुंदर।

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने, नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किसाने, संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा, मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा, राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन महामोहनी मगन, प्रे प्रीत प्राण को त्यागे विरला, चरण कमलया नूप हर संत मंत, को लागे साधु नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग वड़भागे कृपा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, और आगे आसा कर शेवा महला पंजवा, जो तुद पावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई, तेरे जन रसक रसक गुण गावे, मसलत मता स्याण पजन की, जो तू करै करावे रहाओ, अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त गाए सही जन पूरे, सुख निदान हर गाया, जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी, ता कौ नाही चिंता, जा कौ दया तुम्हारी होई, से सह पले भगवंता, परम मोह त्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया, आसा महला पंजवा, जन्म जन्म की मल तोवे पराई, अपना कीता पावे, इहां सुख नहीं दरगह ढोई, जमपुर जाए पचावे, निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंचना साके काहू बात, आगे ठौर ना पाया रहाओ, किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बिकूता जय कोई ना रखे, ओ किस पे करे पुकारा, निंदक की गत कत हू नाही, खसमै एवे भाणा, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संतां टेक

बाहर तोए अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए, इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया, आगे मुस मुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरे, नाम न सुनई डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्रन को तरकन लागा, तत् योग ना पिछाने। उगर गया जैसा खोटा टबुआ, नदर सराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने, उसते कहां छिपाया। कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपना हृदय देख समाले। आसा महला पंजवा, उद्यम करत होवे मन निर्मल, नाचै आप निवारे, पंच जनाले वसगत राखै, मन में एक अंकारे। तेरा जन निरत करे गुण गावै, रबाब पखाव जो ताल घुंगरू, अनहद शब्द बजावै रहाओ। प्रथमे मन प्रबोधै अपना, पाछै अवर रिझावै, राम नाम जप हृदय जापै, मुखते सगल सुनावै। कर संग साधु चरण पुखारै, संत तूर तन लावै, मन तन अर्प तरे गुरु आगै, सत पदार्थ पावै। जो जो सुने पेखै लाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख भागै, ऐसी निरत नरक निवारै, नानक गुरमुख जागै। आसा महला पंजवा, आदम चंडाली पई ब्राह्मणी, सूदी ते श्रेष्ठ आई रे, पाता लिया काशी सखनी, लहबर बूजी खाई रे। घर की बिलाई अवर सिखाई, मूसा देख डराई रे, आज कह वस गुर की नोके हर, कुकर तने लगाई रे रहाओ। बाई थूनिया छपरा था।

सोई अजान कह मैं जाना जानन हार ना शाना रे। कहो नानक गुर अम्यो पियाया रसक रसक बिगसाना रे। आसा महला पंजवा बंधन काट पे सारे अवगुण अपना बिरद समारिया। होए कृपाल मात पित न्याई बारक जो प्रतपारिया। गुर सिख राखे गुर गोपाल काढ लिए महा भवजल ते अपनी नजर निहाल रहाओ। जा कै सिमरन जमते छुट्टी है हलत पलत सुख पाई है। सास ग्रह जपो जप रसना नीत नीत गुण गाई है। भगत प्रेम परम पद पाया सा संग दुख नाठे। छिजै ना जाए किश भौ ना ब्यापै हर तन निर्मल गाठे। अंतकाल प्रपय सहाई एतु तरख नहारे। प्राण मीत ही तन मेरा नानक सत बलिहारे। आसा महला पंजवा जा तू साहिब ता पौ केहा। हाँ तुद बिन किस्सा लाही एक तू ता सब किश है मैं तुझ बिन दूजा नाही। बाबा बिख देखिया संसार रखिया।

दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर वचन तुम्हारे सतगुरु, मन तन मेरा ठारथियो रहाओ। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो। दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे, सहजे बिखिया पही खियो। सुख निदान नाम प्रभ तुमरा, एहो बनासी मंत्र लियो। कर कृपा मोहे सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। धन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मिल लियो। धन सो कलयुग साध संकीर्तन गाई है, नानक नाम आधार हीओ। आसा महला पंजवा, आगे ही ते सब किश हुआ, अवर के जाने ज्ञाना। भूल चूक अपना बारक बख्शिया, पार ब्रह्म भगवाना। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन कौ राख लिया। काटिया रोग महा सुख पाया, हरे अमृत मुख नाम दिया रहाओ। अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पहे। अंध कूप महा कोरते, बहा पकर गुर काड लिए। निरपव पय सगल पव मिटिया, राखे राखण हारे। ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, कार्ज सगल सवारे। गुण निदान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला। आसा महला पंजवा, तू विसरै ता सब को लागू। चीत आवै ता सेवा, अवरना को दूजा सूजै, साचे अलख्या पेवा। चीत आवै ता सदा दयाला, लोगन क्या विचारे। बुरा भला को किसनो कहिए, सगले जी तुम्हारे रहाओ। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू रख। जिस जानी ऊपर तेरी कृपा, तिसको बेपना को भख। ओहो सुख ओहा वड्याई, जो प्रभ जी मन पाणी। तू दाना तू सद मेहरवाना, नाम मिलै रंगमाणी। तुद आगै अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई ना ना जाने मेरा। आसा महला पंजवा, कर कृपा प्रभ अंतर जामी। साह संग हर पाई है, खोल के वार दिखा ले दर्शन। पुनरप जन्म न आई है, मिलो प्रीतम स्वामी अपने। सगले दुख हरौरे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या। ता कै संग तरौरे रहाओ। महा उद्यान पावक सागर पहे, हरक सोग मैं बसना। सतगुर पेट भया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना। तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधया। गुर प्रसाद पहे जन्म मुक्ते, हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राख नहारे, जो प्रभ अपने पाणे। जियो पिंड सब तुमरा दाते, नानक सद गुरबाणे।

तुम ही सुंदर, तुम्हें सुहाग, तुम कर लालन, तुम कर भाग, तू सतवंती, तू प्रधान, तू प्रीतम पानी, तू ही सुरग्ञान, प्रीतम पानी तारंग गुलाल, कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल, सुन री सखी ए हमरी काल, प्रभ आप सिंगार सुवरण हार, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, दुख कनो जब होते दूर, अब मसलत मोय मिली हदूर, चुका निहोरा सखी सहेरी, परम गया गुर पिर संग मेरी, रहाओ निकट आन प्रे से तरी, कान कड़न ते छूट परी, मंदिर मेरा सब दो जारा, आनंद बिनोदी खसम हमारा, मस्तक भाग मैं पिर घर आया, थिर सुहाग नानक जन पाया, आसा महला पंजवा, साच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यो मौला, अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला, रहाओ मुख की बात सगल स्यो करता, जी संग प्रभ अपना धरता, दीस आवत है बहुत पीहाला, सगल चरण की हो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संगरलिया, कान कुंडलिया बस्त्र उडलिया, से सुखलिया मन गर्बलिया, रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बनाले तरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया शलिया बिकार बिखलिया, शरण नानक प्रपुरख दयालिया, आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ कन करिया, अमृत नाम तहां मैं फलिया, ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाइय पद निर्बानी, आस पास बिखुआ के कुंटा, बीच अमृत है पाई रे, रहाओ सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत यान जड़ाई, सगली फूली निफल नाकाई, अमृत फल नाम जिन गुरते पाया, नानक दास तरी तिन माया,

सर्व सुखा बने तेरे ओले, भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले रहाओ। हुकम बूझ रंग रस माने, सतगुर सेवा महान निर्वाणे। जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी प्रवान, नामृता सोई निर्वाण। जा को मिलियो नाम निधाना, पंडित नानक ताका पुरख जाना। आसा

सो स्थान बतावो मिता, जाके हर हर कीर्तन नीता रहाओ। शास्त्र वेद पापुन विचार, नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार। ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार। प्रभ कृपा ते मन वसे आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया। साध संग हर कीर्तन गाइए, एहो अस्थान गुरु ते पाइए। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, घर में सुख बहर फन सुखा। हर सिमरत सगल बिनासे दुखा, सगल सुख जा तू चित आवै। सो नाम जपै जो जन तुद पावै। रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत टहै दुख डेरा। हुक्म बूझै सोई परवान, साध सब जा का निशान। गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, पंडित नानक मेरा मन सुख पाया। आसा महला पंजवा, जहां पठावो तै तै जाई। जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गुसाई। तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई। रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई, तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई। मन तन अंतर तुझे ते आई।

हर माला और अंतर धारै, जन्म मरण का दुख निवारै, हृदय संभालै मुख हर हर बोलै, सो जन इत उत कतै न डोलै, कहो नानक जो राचै नाए, हर माला तां कै संग जाए, आसा महला पंजवां, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगश करै सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सुपने नाहे,

संगा लश्कर जोड़े किया संबाहा निक्षा फूकता हुए गयो सुवाहा ऊंचे मंदर महल अरानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अरतिया मोहे पचे पच अंधा मुआ जिने उपाहा तिने बिनाहा रंग रसा जैसे सुपनाहा सोई मुक्ता तिस राजमाल नानक दास जिस खसम दयाल आसा महला पंजवा इन स्यों प्रीत करी कनेरी जो मिलिए तो वदै वधेरी गल चमड़ी जो छोड़ै नाही लाग छटो सतगुर की पाई जग मोहनी हम त्याग गवाई निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह बाट काट करे बन बन जो है मन तन लागे हुए कै मीठी गुरप्रसाद मैं खोटी डीठी अगर उसके वड़े ठगाऊ छोड़े नाही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन पया आनंद पहु चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने प्रभ का किया मीठा मन एक नाम संतन आधार होए रहे सब की पगशार संत रहत सुनो मेरे भाई ओवा की महिमा कथन ना जाई रहाओ वर्तन जा कह केवल नाम अनद रूप कीर्तन विश्राम मित्र सत्र जा कह एक समान प्रभ अपने बिन अवर ना जाने कोट कोट अग कट नहारा दुख दूर करन जी के दातारा सूर बीर बचन के बली कौला बपरी संती शली ताका संग बांछै सुरदेव अमोग दर्स सफल जा की सेव कर जोड़ नानक करे अरदास मोहे संत है टहल दीजै गुणतास आसा महला पंजवा सगल सुख जप एकै नाम सगल धर्म हर के गुणगाम महापवित्र साधका संग जिस पेड़त लागे प्रभ रंग गुरप्रसाद ओ आनंद पावे जिस सिमरत मन होए परगासा ताकि गत में तो कहन ना जावे रहाओ वर्त नेम मज्जन तिस पूजा वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा महापुनीत जाका निर्मल थान साध संगत जाके हर हर नाम प्रगट्यो सो जन सगले भवन पतत पुनीत ताकी पगरेन जाको पेट्यो हर हर राय ताकी गत में तो कथन ना जाए आठ पहर कर जोड़ते आवाओ उन साधा का दर्शन पावाओ मोहे गरीब को लेहोर लाए नानक आए पै सरनाए आसा महला पंजवा आठ पहर उदके सुनानी सद ही भोग लगाए सुगयानी बिरथा काहू छोड़ै नाही बहर बहर तिस लागै पाई साल ग्राम हमारे

का सदा बैकुंठ, जहां का चवर सब ऊपर झूलै, ता का धूप सदा प्रफुलै। काट काट संपट है रे जाका, अपग सभा संग है सादा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत। जिसे प्राप्त तिसही लहना, संत चरण ओ आयो सरना। हाथ चढ़ो हर साल गिराम, कहो नानक गुर की नो दान। आसा महला पंजवा पंच पदा, जेह पेंड है लूटी परिहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। सतगुर पूरे साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बिथी। जम का मार्ग दूर रहया रहाओ, जह लालच जागाती काट। दूर रही ओ जनते बाट, जह आवटे बहुत घन साथ। पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लिखा। भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा, कौ नानक जे सतगुर पूरा। वाजे ता कै अरहद तूरा, आसा महला पंजवा दो पदा। साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम। बुझ गई तृष्णा हर जसै अगाने, जब जब जीवा सारंग पाने। करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवेहर भरे भंडार। तोट ना आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जन कोए। नानक ता की परम गत होए, आसा कर सतवा महला पंजवा। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आसा महला पंजवा, साधु संगत तरिया संसार। हर का नाम मनाया आधार, चरण कमल गुरदेव प्यारे। पूजे संत हर प्रीत प्यारे रहाओ, जा कै मस्तक लिखिया भाग। कहो नानक ता का थिर सोहाग,

की तब तहरी पलो पयो प्रे कहया मान्या सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार ओह अवनासी अगम अपार ले पखा प्रे चलो पाए पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत मोहे अनी मोहे अनाथ गरीब ने मानी कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा। आसा महला पंजवां

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा हमें पचै मनमुख मूह राखा गुरु नानक बहां पकर हम राखा। आसा महला पंजवां सर्व दुख जब बिसरै स्वामी इहां उहां कामना प्राणी। संत तृप्तासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर सोजन मरता नित नित चूर जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे महाबिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक गत पाई है गुर पूरे टेक। आसा महला पंजवां नाम जपत मन तन सब हरिया कल मल दोग सगल पर हरिया। सोई दिवस भला मेरे भाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। साज जना के पूजे पैर मिटे उपद्रय मन ते बैर गुर पूरे मिल झगर चुकाया पंच दूत सब वसगत आया। जिस मन वसया हर का नाम नानक ते सुपर कुर्बान। आसा महला पंजवां गाव लेहे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे। जा की सेवा सर्व सुख पावे अवर काहू पह भव ना जावे। सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए बलिहारी ते संत प्यारे। जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिय रहाओ। जा का दान निखूटे नाही भली पांत सब सहि समाही। जा की बख्शना मेटै कोई मनवा साई है साचा सोई। सगल समग्री ग्रह जा के पूर्ण प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण। ओट गही निरपौ पद पाई है सास सास सो गुणित गई है। दूर ना होई कतहू जाई है नजर करे ता हर हर पाई है।

पंजवां, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सल का होवा सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बलते सतगुर को जाओ। गुर पूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख विनाशे, सतगुर की शरणाई रहाओ। गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए। अग्न बुझी

मन बंधन काटो सेवक कर, बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वड़े भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जा को भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवां, सतगुर साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजया संजोग। उदरै माहे आए किया निवास, माता कै मन बहुत बिगास। जम्या पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सब मैं लिखिया तुर का रहाओ। दसी मासी हुकुम बालक जन्म लिया, मिटिया सोग महा आनंद थिया। गुरबाणी सखी आनंद गावै, साचे साहेब कै मन भावै। वधी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। मन चिंदिया सतगुरु देवाया, पै अचिंत एक लिव लाया। ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोलै गुर कै पाण। गुज्जी छन्नी नाही बात, गुर नानक तुठा कीनी दात। आसा महला पंजवां, गुर पूरे राख्या दे हाथ। प्रगट भया जन का प्रताप, गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई। जी की अरदास गुरु पह पाई रहाओ। शरण परे साचे गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक सेव। जियो पिंड जोबन राखे प्राण, कहो नानक गुर कौ कुर्बान। आसा घर

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवां, सर्व सुखा मैं पालिया हर जेवड़ ना कोई, गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुरे अपने सा सद कुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा, एहो की जैदाना रहाओ। पागठ सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर, सो छूटे महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा, गुर बिबेक सतसार, ओह आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे, जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवां, साई अलख अपार पोरी मन वसै, दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाँ वन्या कुर्बान साई अपने, होवे अंध घणा मन तन जापने रहाओ। बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेदक तेब संसार

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया सिमरन में सूर विसूर। दास दा सतन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जप जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परे सतगुरु कै जिन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया रहाओ। कर गहली ने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वड्याई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम धन गुण गाओ लाभ पूरा गुर दिता, वण जारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ता के वड़ पागा, ओह सुहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सतगुरु हमारा रहाओ। दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुरसेवा महल पाईए जगद उत्तर तरिए। दृष्ट तेरी सुख पाईए मन माहे निधाना, जां कहो तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हौ चेरली सो सब ते ऊंचा, सब की ता का कांडिये थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहेब की मनिया, नाम जिसे कै उजली तसदासी गनिये रहाओ। वे प्रवाहो आनंद मैं नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ावो, सेवो साधु पाओ कर तो निधर पावो। सगली दासी ठाकर सब कहती मेरा, जिसे सिंगारे नानका तिस सुख है बसेरा। आसा महला पंजवा, संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुणी उत्तमो परता दूर ना पिखरी। एहो मन सुंदर अपना हर नाम जी ठहरंगरी, त्याग स्याण पचातरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ। परता कह सो मानिए एहो सिंगार बनायरी, दूजा पाव विसारिए एहो तंबोला खायरी। गुर का शब्द कर दीप को ए सत की सेज बिछायरी, आठ पहर कर जोड़ रहो तौ पेट हर रायरी। तिस ही चज सिंगार सब साई रूप अपार री, साई सुहागण नानका जो पानी करतार री। आसा महला पंजवा, डीगन डोला तउ लो जो मन के परमा, प्रम काटे गुरे अपने पाए बिश्रामा। ओए बिखादी दोखिया ते गुरदे हूटे, हम छूटे अब उना ते ओए हम ते छूटे रहाओ। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मेरे हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेव को नानक खसमै बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। बलिहारी गुरे अपने सत सत बल जाओ, गुरु विटा हो वारिया जिस मिल सच सुवाओ रहाओ। सगन अप सगन तिस कहो लग है जिस जीत ना आवे,
तिस जम नेण न आवई जो हर प्रभु पावै। पुन दान जप तब जेते सब उपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। पै बिन से प्रम मोह गए को दिसै ना बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा करनावा महला पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्व सुख पावो, आगे पावो के ना पावो। एक दा तार सगल है जाचक, दूसर कह पह जावो। हाँ मांगो आन ल जावो, सगल छत्रपत एको ठाकर, कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पे ना सको, दर्शन खोज खोजावो। ब्रह्मादिक सनकादक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको महल दुलभावो। अगमय अगमय अगाध बोध, कीमत परे ना पावो। ताकि शरण सतपुरख की, सतगुर पुरख ते आवो। भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकर, काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पावो, कहो नानक जो साध संग पायो, तो फिर जन्म ना आवो। आसा महला पंजवा,

वहां के मर्दनों खड़ दर्शन कर तलीरे, सुंदर सुग्र स्वरूप सियाने पंचों ही मोए शलीरे। जिन मिल मारे पंच सूर वीर, ऐसो कौन बली रे। जिन पंच मार बिदार गुदारे, सो पूरा ए कली रे रहाओ। वडी कौम वस भाग नाही, मोहकम फौजा ठली रे। कहो नानक तिन जन निर्दलिया, साध संगत कै चली रे। आसा महला पंजवा, नीकी जी की हर कथा उत्तम, आन सगल रस फीकी रे रहाओ। बहुगुण तुन मुन जन खट बेते, अवर ना किश लाए की रे। बिखारी निरारी अपारी सहजारी, साध संग नानक पीकी रे। आसा महला पंजवा, हमारी प्यारी अमृत तारी, गुर निमख ना मनते टारी रे रहाओ। दर्शन परसन सरसन हरसन, रंग रंगी करतारी रे। खिन राम गुरगम हर दम नह जम, हर कंठ नानक उरहारी रे। आसा महला पंजवा, नीकी सास संगानी रहाओ। पहर मूर्त पल गावत गावत, गोविंद गोविंद बखानी। चालत बैस्त सोबत हर जस, मंतन चरण खटानी। हौ हौ रो तू ठाकुर गौरो, नानक सरन पछानी। राग आसा महला पंजवा, घर बारवा एको ओंकार। सतगुर प्रसाद त्याग सगल सियान पा, भज पार ब्रह्म निरंकार। एक साचे नाम बाजो, सगल दिसै शार। सो प्रभ जानिए सद संग, गुर प्रसादी बूझिए एक हर कै रंग रहाओ। सरन समरथ एक केरी, दूजा नाही ठाओ। महापौजल लंघिए सदा हर गुण गाओ। जन्म मरण निवारिए, दुख ना जम पर होए। नाम निदान सोई पाए, कृपा करे प्रभ सोए। एक टेक आधार एको, एक का मन जोर। नानक जपिए मिल साध संगत, हर बिने अवर ना होर। आसा महला पंजवा, जियो मन तन प्राण प्रभ के, दिए सब रस भोग। दीन बंदप जी दाता, शरण रखन जोग। मेरे मन त्याए हर हर नाओ, हलत पलत सहाय संगे, एक स्यो लिबलाओ रहाओ। वेद शास्त्र जन त्याव, तरण कौ संसार। कर्म धर्म अनेक किरिया, सब ऊपर नाम आचार। काम क्रोध अहंकार बिनसै, मिले सतगुर देव। नाम दृढ़ कर भगत हर की, भली प्रभ की सेव। चरण सरण दयाल तेरी, तू निमाने मान। जी प्राण आधार तेरा, नानक का प्रवतान। आसा महला पंजवा, डोल डोल महा दुख पाया, बिना साधु संग। खाट लाभ गोविंद हर रस, पार ब्रह्म एक रंग। हर को नाम जपिए नीत, सास सास त्याए सो प्रभ। त्याग अवर प्रीत रहाओ, करण कारण समर्थ सो प्रभ। जी दाता आप, त्याग सगल सियाण पा, आठ पहर प्रभ जाप। मीत सखा सहाय संगी, ऊच अगम अपार। चरण कमल बसाए हृदय, जी को आधार। कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म, गुण तेरा जस गाओ। सर्व सुख बड़ी वड़ियाई, जप जीवै नानक नाओ। आसा महला पंजवा, उद्यम करो करावो ठाकुर, पेखत साधु संग। हर हर नाम चिरावो रंगन, आपे ही प्रभ रंग। मन में राम नामा जाप, कर कृपा वसो मेरे हृदय। होए सहाई आप रहाओ, सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम। प्रभ पेखन का चाओ, दया करो किरम अपने को, एह मनोरथ सुआओ। तन तन तेरा तू प्रभ।
तेरा हमरा वस किश ना है, ज्यो ज्यो राखै त्यो त्यो रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किलविख काटै मज्जन हर जन तूर, पाए भगत परम पव नासै हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां अगमै गोचर दर्श तेरा, सो पाए जिस मस्तक भाग आप किरपाल किरपा प्रभ धारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव, मलमूत मूड जे मुग्ध होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट तरता, सब मैरिया समाए धर्म राजा बिस्माद होवा सब पई पैरी आए। सतयुग त्रेता द्वापर पणिया, कल युग ऊतमो जुगा माहे, अह कर करे सो वह कर पाए कोई ना पकड़िया किसै थाए। हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे, एहो तेरा बिरद कर जोड़ नानक दान मांगे अपने संतां दे हर दर्श। राग आसा महला पंजवां कर तेरवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे, रहाओ महा बिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनी संगारे। नरक पवंते नरक पड़ंते तिनके कोले उदारे, कोय न जाने कोय न माने से प्रगट हर द्वारे। कवन उपमा देव कवन वडाई नानक खिन खिन वारे। आसा महला पंजवा बावर सोए रहे, रहाओ मोह कुटंब बिखै रस माते मिथ्या गहन गहे। मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे। कर कृपा राखे सत संगे नानक शरण आहे।

हो, कृपा पाए सहजाए दर्शाए, अब रातिया गोविंद स्यों, संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए, गुर ज्ञान मंदर लाए, रहसाए नहीं आए, सहजाए मन निदान पाए, सब तजी मने की काम करा, चिर चिर चिर चिर भया, मन बहुत प्यास लागी, हर दर्शनो दिखावो, मोहे तुम बतावो, नानक दीन शरण आए गल लाए। आसा महला पंजवां, को बिखम गार तोरै, आस प्यास तो हो।

गोविंद गावो, आन दिनो प्रभ त्यावो, भ्रम पीत जीत मिटावो, निद नाम नानक मोरै, आसा महला पंजवा। काम क्रोध लोभ त्याग, मन सिमर गोविंद नाम, हर भजन सफल काम। रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया, जप राम राम राम, मन संतना कै चरण लाग। प्रभ गोपाल दीन दयाल, पतत पावन पार ब्रह्म, हर चरण सिमर जाग। कर भगत नानक पूर्ण भाग, आसा महला पंजवा। हरख सोग बैराग आनंदी, खेल री दिखायो रहाओ। खिनहू पै निरपै खिनहू, खिनहू उठतायो, खिनहू रस भोगन खिनहू, खिनहू तजायो। खिनहू जोग ता बौ पूजा, खिनहू परमायो, खिनहू कृपा साधु संग, नानक हर रंग लायो। राग आसा महला पंजवा, कर सतारवा आसावरी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गोबिंद गोबिंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कया सोचित धर हां, अनस्यो तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ। पंकज मोसर हां, पग नहीं चले हर हां, गहड्यो मूड नर हां, अन ना उपाव कर हां। तौ निकसै सरन पै री सखी, थिर थिर चित थिर हां, बन ग्रिव समसर हां, अंतर एक पिर हां, बाहर अनेक तर हां। राजन योग कर हां, कहो नानक लोग या लोगी री सखी, आसावरी महला पंजवा। मनसा एक मान हां, गुरस्यो नेत ध्यान हां, दृढ़ संत मंत ज्ञान हां, सेवा गुर चरान हां, तो मिलिया गुर कृपान मेरे।

तौ चूकी सगल कान लैनो जिसम थान हां पै पावक पार प्राण हां निज कर तिसै थान हां हर रस रसै मान हां लाथी तिस पुखान हां नानक सह समायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुनीहा जपिया सहि तुनिहा साधु रसन पनीहा शूटन बिद सुनिहा पाइय वडपुनी मेरे मना रहाओ खोजे जन मुनिहा सर्व का प्रभ तनिहा दुलभ कल दुनिहा दुख बिनासनी हा प्रपूर्ण आसनी मेरे मना मन सो सेविय हां अलख अपेविय हां ता स्यो प्रीत कर हां बिनस ना जाए मर हां गुरते जाने हां नानक मन मान्या मेरे मना आसावरी महला पंजवा एका ओट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आग्या सत सहो हां मने निधान लहो हां सुख समाइय मेरे मना रहाओ जीवत जो मरे हां दुत्तर सो तरे हां सब की रेन होए हां निरपो कहो सोए हां मिटे अंदेसिया हां संत उपदेसिया मेरे मना जिस जन नाम सुख हां तिस निकट ना कदे दुख हां जो हर हर जस सुने हां सब को तिस मन्ने हां सफल सो आया हां नानक प्रपाया मेरे मना आसावरी महला पंजवा मिल हर जस गाइये हां परम पद पाइये हां वा रस जो बिदे हां ता को सगर सिद्धे हां अन दिन जागया हां नानक वट भागया मेरे मना रहाओ संत भगत होइये हां दुरमत खोइये हां दस रेन होए हां व्यापै दुख ना कोए हां भगतां शरण पर हां जन्म ना कदे मर हां अस्त्र से भय हां हर हर जिन जप लय मेरे मना साजन मीत तू हां नाम दृढ़ाए मूहा तिस बिन नाहे कोए हां मने अराद सोए हां निमख ना विसरे हां तिस बिन क्यों सरे हां गुर को कुर्बान जाऊ हां नानक जपे नाओ मेरे मना आसावरी महला पंजवा कारण करन तू हां अवर ना सुजे मूहा करे सो होइए हां सह सुख सोइए हां धीरज मन पए हां प्रभ कै दर पए मेरे मना रहाओ साधु संग में हां पूर्ण संज में हां जब ते छुटे आप हां तब ते मिटे ताप हां कृपा धारिया हां पातरख बनवारिया मेरे मना एहो सुख जानिए हां हर करे सो मानिया हां मंदा नाहे कोए हां संत की रेन होए हां आपे जिस रखे हां हर अमृत सो चखे मेरे मना जिसका नाहे कोए हां तिसका प्रभु सोए हां अंतरगत बुझे हां सबके सब के शिव तिस सुझे हां पत तो उधार लेहो हां नानक अरदास एहो मेरे मना आसावरी महला पंजवा एक तुका ओए परदेसिया हां सुनत संदेसिया हां रहाओ जा स्यो रच रहे हां सब को तज गए हां सुपना ज्यो पए हां हर नाम जिन लए हर तज अन लगे हां जन्मै मर भगे हां हर हर जन लहे हां जीवत से रहे हां जिसै कृपाल होए हां नानक भगत सोए। एको अंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला नावा बिरथा कहो कौन स्यो मन की लोभ ग्रस्यो दसहु दिस्तावत आसा लाग्यो धन की रहाओ सुख कै हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वारे द्वार स्वान ज्यो डोलत नै सुधराम भजन की मानस जन्म्या कार्थ खोवत लाजना लोक हसन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत कुमत बिना सह तन की राग आसा महला पहला अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद
उत्तर आप घट सरवरनावै बकै न बोलै हर गुण गावै जल आकाशी सुन समावै रस सत झोल महारस पावै ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे भरपुर धार रहा सब ठावरे रहाओ सच ब्रत नेम ना काल संतावै सतगुर शब्द करो जलावै गगन निवास समाध लगावै पारस परस परम पद पावै सच मन कारण तत् बिलोवै सुबर सरबर मैलन धोवै जय स्यों राता तै सो होवै आपे करता करे सो होवै गुर हिव शीतल अग्न बुझावै सेवा सुरत पूज चढ़ावै दर्शन आप सहज कर आवै निर्मल बाणी नाद बजावै ज्ञान अंतर ज्ञान महारस सारा तीर्थ मज्जन गुर विचारा अंतर पूजा थान मोरारा ज्योति ज्योत मिलावन हारा रस रसिया मते कै पाए तख्त निवासी पंच समाए कार कमाई खसमर जाए अवगत नाथ ना लिखिया जाए जल मैं उपजै जल ते दूर जल मैं ज्योतरिया भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर नित गुण गावा देखा दूर अंतर बाहर अवरना को ज्योत पावै सोफन होए सुन भारथर नानक कह बिचार निर्मल नाम मेरा आधार आसा महला पहला सब जप सब तप सब जतराई उजड़ पर मैं राहे ना पाई बिन बूजे को थाए ना पाई नाम बिहुने माथे शाई साच धनी जग आए बिनासा छूट प्राणी गुरमुख दासा रहाओ जग मोहे बांधा बहुती आसा गुरमती एक पय उदासा अंतर नाम कमल परगासा तिनको नाही जमकी त्रासा जग त्रे जित कामन हितकारी पुत्र कलत्र लग नाम विसारी बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी सदगुर सेवे करनी सारी बारह मैं कह कहाए अंदरों मुक्त लेप कदे न लाए माया मोह गुर सब जलाए निर्मल नाम सद हृदय त्याए तावत रखै ठाक रहाए सिख संगत कर्म मिलाए गुरबिन पूलो आवै जाए नदर करे संजोग मिलाए रूड़ो कहो ना कहया जाई या कथ कथो न कीमत पाई सब दुख तेरे सुख रजाई सब दुख मेटे साचै नाई कर बिन वाजा पग बिन ताला जे शब्द बुझै ता सच निहाला अंतर साच सबे सुख नाला नदर करे राखै रखवाला तिर भवन सूजै आप गवावै बाणी बुझै सच समावै शब्द विचारे एक लिवतारा नानक तन सवार नहारा आसा महला पहला लेख असंख लिख लिख मान मन मान्या ऐसा सुरत वखान कथनी बदनी पड़ पड़ पार लेखा संखा लेखा पार ऐसा साचा तू एको जान जमन मरना हुक्म पछाण रहाओ माया मोहे जग बादा जमकाल बंदा छूटै नाम समाल गुर सुख दाता अवर ना पाल हालत पालत निभि तुद नाल शब्द मरै ता एक लिवलाए अचर चरै ता परम चुकाए जीवन मुक्त मन ना वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन धर साजी गगन आकाश जिन सब थापी थापो थाप सर्व निरंतर आपे आप किसे ना पूछै पूछै बख्से आप तू पुर सागर माणक हीर तू निर्मल सचगुणी गहीर सुख मान पेटै गुरपीर एको साहेब एक वजीर जग बंदी मुक्ते हो मारी जग्ञानी विरलाया चारी जग पंडित विरला विचारी बिन सतगुर पेटे सब फिरै हंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोए जग रोगी भोगी गुण रोए जग उपजै बिन सह पत खोए गुरमुख होवै बूझै सोए महंगो मोल पारिया फार अटल छल गुरमती धार पाए मिलै पावै पैकार नानक नीच कहै बिचार आसा महला पहला
एक मरे पंचे मिलन होवे, हमें जाय शब्द मल धोवे, समझ सूझ सहज कर होवे, बिन पूजे सगली पथ खोवे, कौन मरे कौन रोवे, ओही करण कारण सब सह सिर तो ही रहाओ, मुए कौ रोवे दुख कोए, सो रोवे जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवन मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हम बलिहारी सदगुर चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना, निरपो आप निरंतर जोत, बिन नामे सूतक जगशोत, दुर्मत बिन सै क्या कह रोत, जन मुवे बिन पग सरोत, मुवे कहो सच रोवै मीत, त्रैगुण रोवै नीता नीत, दुख सुख पर हर सहज सोचीत, तन मन सौ पौ कृष्ण प्रीत, पीतर एक अनेक असंख, कर्म धर्म बहु संख असंख, बिन भय भगति जन बिरंथ, हर गुण गावे मिल परमारंथ, आप मरे मारे पी आप, आपो पाए थापो थाप, सृष्टि उपाई ज्योति तू जात, शब्द विचार मिल नहीं प्रात, सूतक अगन पखे जा खाए, सूतक जल थल सभी खाए, नानक सूतक जन्म मरी जय, गुरप्रसादी हर रस पी जय, राग आसा महला पहला, आप विचारे सो परखे हीरा, एक दृष्ट तारे गुरपुरा, गुरमाने मनते मन तीरा, ऐसा सहो सराफी करे, साची नजर एक लिव तरे रहाओ, पूंजी नाम निरंजन सार, निर्मल साजरता पैकार, सिफत सहज कर गुर करतार, आसा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कह कहाए, गुरते वाट महल कर पाए, कंचन काया जोता नूप, त्रिपवन देवा सगर स्वरूप, मैं सोतन पल्ले साचा खूट, पंच तीन नव चार समावे, तारण गगन कल तार रहावे, बाहर जा तो उल्ट परावे, मूर्ख होए न आखी सूजे, जेवा रस नहीं कया बूजे, बेका माता जग सो लूजे, उत्तम संगति उत्तम होवे, गुण कौतावे अवगुण धोवे, बिन गुर सेवे सहज ना होवे, हीरा नाम जिवे हर लाल, मन मोती है तिसका माल, नानक परख है नजर निहाल, आसा महला पहला, गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान, गुरमुख मैली मैल पछान, गुरमुख सुरत शब्द निशान, ऐसे प्रेम भक्ति विचारी, गुरमुख साचा नाम मुरारी रहाओ, अहनिस निर्मल थान सुथान, तीन पवन ने केवल ज्ञान, साचे गुरते हुक्म पछान, साचा हरख नाही ते सोग, अमृत ज्ञान मारस भोग, पंच समाई सुखी सब लोग, सगली जोत तेरा सब कोई, आपे जोड़ बिछोड़े सोई, आपे करता करे सोई, टाहे उसारे हुक्म समावे, हुक्मे वरते जोत इस पावे, गुर बिन पूरा कोई न पावे, बालक बिरद ना सुरत प्राण, पर जो बिन बूढ़े अभिमान, बिन नामे क्या लैस निदान, जिसका अंतन सहज न जाना, परम पुलाना फिर पछताना, गल फाही बौरा बौराना, बूढ़त जग देखिया तो डर भागे, सदगुर राखे सेवड़ भागे, नानक गुर की चरणी लागे, आसा महला पहला।

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खुत पावो से हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लव लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन सच पछाण अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन महल ना पछाण। निरंकार मैं आकार समावे अगल कला साई टकावे सो नर गर्भ जो न आवे। जहां नाम मिले ते जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी ना मेरा ता। मेरा प्रभ लाए ता को लागे हम मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुखिया गए। मन चंचल बिद नाही जाने मनमुख मैला शब्द ना पछाण। गुरमुख निर्मल नाम वखाणे हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास। किल विख दो काटे हर नाम परगास कर विचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम अनुराता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बन खंड माया मुहे हैराना। ए त्युत जाहे काल के चापे गुरमुख खोजल है घर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मल अवर त्यागो हम मैं कौरा रहाओ। एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी। आपे बक्से सदगुर मिले काल कंटक मारे सच पे लै। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता ते जन्मा साक्त लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिपवन सोजी होई। एहो मन जोगी भोगी तपतापै गुरमुख चीने हर प्रभ आपै। मन बैरागी हम मैं त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चख है दर कर महली हर पत रख है। एहो मन राजा सूर संग्राम एहो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए हम मैं ग्रास एक तथा किए। गुरमुख राग स्वाद अंत आगे गुरमुख एहो मन भक्ति जागे अन हद सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पै निरंकारी। एहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई अह निसो हर जस गुर प्रसाद घट घट सो प्रभ आज जुगाद। राम रसायन एहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दास दासा। आसा महला पहला तन बिनसै तन का को कहियै बिन गुर राम नाम कतल हैयै। राम नाम तन संग सखाई अहनस निर्मल हर लिबलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ। कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिस तू बख्शे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला ज्यो भावे त्यो रख दयाला गुरमुख राम मेरा मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रहाया। अवर ना औखद तंत ना मंता हर हर सिमरन किल विख हंता तू आप लावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा गुर बिन परम जपै जप दूजा आद पुरख गुर दर्शना देखै विण गुर शब्द जन्म के लेखै देख अचरज रहे बिस्माद घट घट सुर नर सहि समाद। भरपुर तार रहे मनमाही तुम समसर अवर को नाही जाकी भक्त हित मुख नाम संत भगत की संगत राम। बंधन तोरे सहि ध्यान छूटै गुरमुखार गुर ज्ञान ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पय हर रंग आसा महला पहला एक तुगी। गुर सेवे सो ठाकर जाने दुख मिटे सत शब्द पछाने। राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ। बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार
बंधन कर्म धर्म हो किया। बंधन पुत कलत मन बिया, बंधन किरखी करे किरसान, हों मैं डन सह राजा मंगे दान। बंधन सौदा अण विचारी, तिप्त नाही माया मोह पसारी, बंधन शासन चैतन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन भेदबाद हंकार, बंधन बिन सह मोह विकार, नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंद ना पाई। राग आसा महला पहला, अष्टपदियां करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संदूर, से सरकाती मुनियां, गल विच आवै धूड़, महला अंदर होंदियां, हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया, कर कर देखै वेस रहाओ। जदों सियां वी आहियां, लाड़े सोहन पास, ही डोली चढ़ आईयां, दंद खंड कीते रास, उपरो पानी वारी है, चले चिमकन पास। एक लख लहन बैठिया, लख लहन खड़िया, गरी शुहारे खांदियां, मान से जड़िया, तिन गल सिलका पाईया, टुटन मोसरिया, तन जो बंदो वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए। दूता नो फरमाया, ले चले पत गवाए, जे तिस पावे दे वड्याई, जे पावे दे सजाए, अगों दे जे चेती है, ता कायत मिले सजाए, साहा सुरत सवाई गवाईया, रंग तमा सह चाहे। बाप रवाणी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए, इक ना वक्त खुवाई है, इक ना पूजा जाए, चौके बिन हिंदवाणिया, क्यों टिके कड़े नाए। राम न कबहू चेते ओ, हुण कहण ना मिले खुदाए, एक घर आवै अपने, एक मिल मिल पुछे सुख, एक ना एहो लिखिया बैबै रोवै दुख। जो तिस पावै सो थीए, नानक क्या मानुख, आसा महला पहला, कहां सो खेल तबेला कोड़े, कहां पेरी सहनाई, कहां सो तेग बंद गा ढेरड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मोबंके, ऐथे दिसै नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी मैं थापो थापे, जर वंड देवे पाई रहाओ। कहां सो करदार मंड मेला, कहां सो बंकसराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान तंबोली हरमा, होइया शाही माई। इस जर कारण कणी विगुती, इन जर कणी खुवाई, पापा बाजो होवे नाही, मुया साथ ना जाई। जिसनों आप खुवाए करता, खुसले चंग्याई, कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया ताया, थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया। कोई मुगल ना होवा अंधा, किनना परचा लाया, मुगल पठाना पई लड़ाई, रण में तेग बगाई। ओनी तुपकतान चलाई, ओनी हस चढ़ाई, जिनकी चीरी दरगह फाटी, तिन्ना मरना पाई। एक हिंदवाणी अवर तुरकाणी, पटियाणी ठकराणी, एक ना पेरन सिर खुर पाटे, एक ना वस मसाणी। जिनके बंके करी ना आया, तिनक्यो रैण विहानी, आपे करे कराए करता, किसनो आख सुनाई है, दुख सुख तेरा पाना होवै, किसथे जाई रुवाई है। हुक्मी हुक्म चलाए विकसै, नानक लिखिया पाई है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आसा काफी महला पहला, कर अठवां अष्टपदिया, जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, कूड़ कमावे आदमी बंद है कर बारा। जागो जागो सूते हो, चले अवन जारा रहाओ, नीत नीत कर बांधी है, जे रहना होई, पिंड पवे जियो चल सी जे जाने कोई। ओही ओही क्या करो, है होसी सोई, तुम रोवोगे ओसनो, तुम कहो कौन रोई। धंधा पिटो पाई हो, तुम कूड़ कमावो, ओह ना सुनी कत ही, तुम लोग सुनावो। जिसते सुता नानका जागाए सोई, जे कर बुझे अपना, तानी दना होई।
जे चलदा लै चलिया के संपै नाले तां तन संचो देख के बूझो विचारे। वणज करो मकसूद लै हो मत पछो तावो औगुण छोड़ो गुण करहो ऐसे तत् परावो। धर्म भूम सत बीज कर वैसी किरस कमावो तावा पारी जानियो लाह लै जावो। कर्म होवै सतगुर मिलै बूझै बिचारा नाम वखाणे सुने नाम नामे ब्योहारा। ज्यो लाह तोटा तिवै वाड़ चलदी आई ज्योत पावै नानका साई वड़ियाई। आसा महला पहला। चारे कुंडा टूडिया को निमी मेंडा जे तुद पावै साहेबा तू मैं हो तेंडा। दर बीबा मैं नीम को कह करी सलाम हेको मेंडा तू तनी साचा मुख नाम रहाओ। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगै रिद्ध सिद्ध मैं एक नाम न विसरै साचे गुरबुद्ध। जोगी पोगी कपड़ी क्या पवै दसंतर गुर का शब्द नाची नहीं तत्सार निरंतर। पंडित पांदे जो इसी नित पड़े पुराणा अंतर वसना जाननी कट ब्रह्म लुकाना। एक तप सी बन मैं तप करै नित तीर्थ वासा आप नचिन तामसी कहे पय उदासा। एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावै बिन गुर शब्द ना छूट ही परम आवै जावै। एक गिरही सेवक साधका गुरमती लागे नामदान इसनान दृढ़ हर भगत सो जागे। गुर ते दर कर जानिए सो जाय सजाण नानक नाम न विसरै साचे मन मानै। आसा महला पहला। मनसा मने समायले पहो जल सज तरना या जुगा दयाल तू ठाकर तेरी सरना। तू दा तो हम जाचका हर दर्शन दी जाय गुरमुख नाम ते आईए मन मंदिर पीजै रहाओ। कूड़ा लालच छोड़िए तो साच पछाणै गुर कै शब्द समाईए परमार्थ जाणै। एहो मन राजा लोभिया लुभतो लोभाई गुरमुख लोभ निवारिए अरसिउ बने आई। कलर खेती बीजिए क्यों लाहा पावै मन मुख सच ना पीजई कूड़ कूड़ गड़ावै। लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसै हो मैं बिखमारी। दुबदा छोड़ कुवाटड़ी मूसोगे पाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई। मन मुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जल मैं केता राखिए अब अंतर सूका। हर का नाम निदान है पूरे गुरदिया नानक नाम ना विसरै मथे अमृत पिया। आसा महला पहला। चले चलन हार वाट फटाया तंद पिटे संसार सच ना पाया क्या पवी है क्या ढूंढी है गुर शब्द दिखाया ममता मोह विसर्जे अपने कर आया रहाओ। सच मिले सचियार कूण ना पाई है सचे सोच तलाए बहु ना आई है। मोया कहो क्या रोवो रोए ना जान हूं रोवो सच सलाए हुक्म पछाण हूं। हुक्मी मजो लिखाए आया जानिए लाहा पल्ले पाए हुक्म सियाणिए हुक्मी पैंदा जाए दरगह पाणिए हुक्मे ही सरवार बांदर बाणिए। लाहा सच न्याओ मन वसाइए लिखिया पल्ले पाए गर्व न्याइए। मन मुखिया सिर मार वाद खपाइए ठग मुठी कूड़ियार बन चलाइए। साहेब हृदय वसाए न पछोता वही गुनहा बख्शन हार शब्द कमा वही। नानक मंगै सच गुरमुख कहलिए मैं तुझ बिन अवरना कोए नदर निहालिए। आसा महला पहला। क्या जंगल ढूंढी जाए मैं कर बन हरी आवला सच टिकै कर आए शब्दो तावला। जै देखा तै सोए अवर ना जानिए गुर की कार कमाए महल पछाणिए। रहाओ आप मिलावै सच ता मन भावई चलै सदर जाए अंक समावई। सच्चा साहिब मन वसै वसिया मन सोई आपे दे वड़ियाइयां दे तोट ना होई।

सब नावै नौ लोई दी जिस कृपा करे सो पाए, बिन नावै सब दुख है सुख तिस जिस मन वसाए। तू बेअंत दयाल है तेरी शरणाई, गुरपुरे ते पाई है नामे वड्याई। अरहाओ अंतर बाहर एक है बहुविध से ट्यो पाई, हुक्मे कार कराईंदा दूजा किस कही है भाई। बुझना या बुझना।

परम सुख पाया मुख भागा रत्ती चारे। गुरमत हर गाया हर हर उर पाया, हर नामा कंठ तारे। सब एक दृष्ट समत कर देख, सब आत्म राम पिछान जियो। हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो। सत संगत मन पाई हर रसन रसाई, विच संगत हर रस होए जियो। हर हर आराध्या गुर शब्द विगासिया, बीजा अवर ना कोए जियो। अवर ना कोए हर अमृत सोए, जिन पिया सुबिद जाने। तन तन गुरु पूरा प्रपाया, लग संगत नाम पिछाणे। नामो सेव नामो आराध्य, बिना मैं अवर ना कोए जियो। सत संगत मन पाई हर रसन रसाई, विच संगत हर रस होए जियो। हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो। कढ लेवो शब्द सुभाए जियो। मोह चीकड़ फाथे निगरत हम जाते, हर बहां प्रभु पकराए जियो। प्रभ बहां पकराई उत्तमत पाई, गुर चरणी जन लागा। हर हर नाम जपया आराध्या, मुख मस्तक भाग सपागा। जन नानक हर कृपा तारी, मन हर हर मीठा लाए जियो। हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो। कढ लेवो शब्द सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना। हर हर मन पाना, हर भक्त जना मन चाओ जियो। जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो। मन हर हर पाओ गुर करे पसाओ, जीवन मुक्त सुख होई। जीवन मरणो हर नाम सुहेले, मन हर हर हृदय सोई। मन हर हर वसिया गुरमत हर रसिया, हर हर रस गटाग पियाओ जियो। मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो। जग मरण ना पाया नित आप लुकाया, मत जंपक रह लै जाए जियो। हर अंतर बाहर हर प्रभ एको, एहो जियाड़ा रखिया ना जाए जियो। क्यों जियो रखी जय हर वस्त लोड़ी जय, जिसकी वस्त सो लै जाए जियो। मन मुख करण पलाव कर भर में, सब औखद दारू लाए जियो। जिसकी वस्त प्रभ लय सुमामी, जन उपरे शब्द कमाए जियो। जग मरण ना पाया नित आप लुकाया, मत जंपक रह लै जाए जियो। तुर मरण लिखाया गुरमुख सुहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो। हर शोभा पाई हर नाम वडियाई, हर दरगह पैंदे जान जियो। हर दरगह पैदे हर नामे सीधे, हर नामे ते सुख पाया। जन मरण दोवै दुख मेटे, हर रामे नाम समाया। हर जन प्रभ रल एको होए, हर जन प्रभ एक समान जियो। तुर मरण लिखाया गुरमुख सोहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो। जग उपजै बिनसै बिनस बिनासै, लग गुरमुख अस्त्र होए जियो। गुरमंत्र दृढ़ाए हर रस करसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो। हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बाहुड़ मरण ना होई। हर हर नाम अमर पद पाया, हर नाम समावै सोई। जन नानक नाम आधार टेक है, बिन नाम है अवर ना कोई जियो। जग उपजै बिनसै बिनस बिनासै, लग गुरमुख अस्त्र होए जियो। आसा महला चौथा, शंत वड्डा मेरा गोविंद अगमा गोचर। आद निरंजन निरंकार जियो, ता की गत कही ना जाई। अमित वड्याई मेरा गोविंद लाख्या पार जियो। गोविंद लाख्या पार परंपरा पे अपना जाने, क्या है जंत विचारे कही है जो तुझे आख वखाने। जिसनो नजर करे तू अपनी, सो गुरम करे विचार जियो। वड्डा मेरा गोविंद अगमा गोचर, आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरख परंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर, समय रह समाये जियो। घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर, ता कांत न पाया। तिस रूप न रेखा दिष्टा गोचर, गुरमुख लख लखाया। सदा आनंद रह दिन राति, सहजे नाम समाये जियो। तू आद पुरख परंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो। तू सत परमेश्वर सदा बनासी, हर हर गुणी निधान जियो। हर हर प्रभे कोई अवर ना कोई, तू आपे पुरख सुजान जियो। पुरख सुजान तू प्रधान, तू जेवड़े अवर ना कोई। तेरा शब्द सब तू है वरतै, तू आपे करै सो होई। हर समय रव्या एको सोई, गुरमुख लखिया हर नाम जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निधान।

कतहु ना तावो शरण पावो करना मैं प्रभ करमया। सम्राथ अगाथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो। अपराधी मतहीन निर्गुणा नाथ नीच, साठ कठोर कुलहीन व्याप्त मोह कीच, मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीत ना आवे। बंता विनोद आनंद माया ज्ञान ताल लपटावे, खिसे जोबन बदे जरुआ दिन हारे संग मीच। बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच, परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहो तहे संग मीठे भोग सोन। भ्रमत पार अगांत आयो बहु परदेसत आयो, आवे ओढ़ धारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हरन आयो। राखन हारे प्रभु प्यारे मुझते कछु ना होवा हो ना, सुख सहजानंद नानक कृपा तेरी तरह पौन। नाम तारी को धारे भगत संसा कौन, जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बाणी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावहे, हर रंग राते प्रभ दाते राम के गुण गावहे। बसद गागद बन राज कलमा लिखण कहो जे होए पवन, बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण सरण। आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान, ताकि शरण गही निरपो पे प्राण, चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन इष्टबंद पजाणिया, गह कंठ लाया गुर मिलाया जस बिमल संत बखाणिया। बेअंत गुणिया नेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही, प्रभ एक अनक अलख ठाकर ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाय या भय राम नाम उरहार, बिहके दिवस गए। गत परम हो बेकार बिनसे जोने आवन सब रहे, अग्न सागर पय शीतल साध अंचल गए रहे। गोविंद गोपाल दयाल सम्राथ बोल साधु हर जय जय। नानक नाम ते आए पूर्ण साध संग पाई परम गते, जै देखो तै संग एको रव रहया, घट घट वासी आप वर लैकने लहया। जल थल महियल पूर पूर्ण कीट हस्त समानिया, आद अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुणनिद जन कहया, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहया। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत करमल पाप टरे। दुख भूख दर दर नाठे प्रगट मग दिखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संभूहा सब तरे, दिन सरैण आनंद आंदन सिमरंत नानक हर हरे। आसा महला पंजवा शंत कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत। शंत पिनी रैनड़िए चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरै आंदे नो, चरण कमल ध्यान हिरदै प्रभ सिर नाही एक खिनो। तज मान मोह बेकार मन का कलमला दुख जारे, बिनवंत नानक सदा जागे हरदास संत प्यारे। मेरी से जिड़िया आडंबर बनिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखै गामी चाव मंगल रस परे, अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तर सब हरे। मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री धर सगल आनंद रस बनिया। मिल सखिया पुछे कौ कंतनी साणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी।
ਗੁਣ ਗੂੜ ਗੁਪਤ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਨਿਗਮ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਹੇ ਭਗਤ ਪਾਏ ਧਿਆਏ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੁਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਣੀ ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿ ਸੁਮਾਣੀ ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜੇ ਹਰ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ਸਾਜਨ ਸਰਸਿਆੜੇ ਦੁਖ ਦੁਸ਼ਮਨ ਭਾਗੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਰਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਿਸੇ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀਆ ਹਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਨਵਾਰੀਆ ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸਗਲ ਨਿਤ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨ ਤਾਗੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਠ ਮੰਜ ਵਟਾਉੜਿਆ ਤੈਂ ਕਿਆ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਮੁਹਲਤ ਪੁੰਨੜੀਆ ਕਿਤਕੂਲ ਲਵਾਇਆ।

द्वापर रथ तप का सत अग्यर्थवा हो, कलयुग रथ अगन का कूड अग्यर्थवा हो। महला पहला। साम कह से तंबर स्वामी, सच में अच्छ साच रहै।

जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जाद भया पार जात गोपी लै आया वृंदावन मैं रंग किया। काल मैं बेदा थर बन हुआ नाव खुदाई अलहो पया नील बसर ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया। चारे वेद हुए सचिया।

जो गतन राम नाम है जिसका पिंड पुराना। कहो कबीर जे कृपा तारे दे सच्चा निशाना आसा। हिंदू तुर्क कहां ते आए किन ए राह चलाई। दिल में सोच विचार गवा दे पिस्त दो जको किन पाई। काजी तै कवन कते बखानी पड़त गुणत ऐसे सब मारे। किन्हू खबर ना जानी रहाओ सख्त स्नेहो कर सुनत करिए मैं ना बदोगा पाई। जौरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा अपन ही कट जाई। सुनत किए तुर्क जे होएगा औरत का क्या करिए। अर्ध शरीरी नार ना छोड़ै ताते हिंदू ही रहिए। शाड़क तेव राम भज बौरे जुर्म करत है भारी। कबीर पकड़ी टेक राम की तुर्क रह पछारी। आसा जब लग तेल दीवे मुख बाती तब सूजै सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी सुना मंदर होई। रे बौरे तुह करी ना रखै कोई तू राम नाम जप सोई। रहाओ कां की मात पिता कहो का को कवन पुरख की जोई। घट फूटे को बात ना पूछे काडो काडो होई। देहरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए भाई। लट छटकाए त्रिया रोवे हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो पैसा गर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है जब नहीं हटे गुसाई। दो तुके एको अंकार सतगुर प्रसाद। आसा श्री कबीर जियो के चौपदे एक तुके सनक सनंद।

तन कर मटकी मन माहे बिलोई, इस मटकी मैं शब्द संजोई। हर का बिलोवना मन का बिचारा, गुर प्रसाद पावे अमृत धारा। कहो कबीर नदर करे जे मीरा, राम नाम लग उतरे तीरा। आसा बाती सूकी तेल निखूटा, मंदल ना बाजै नट पै सूता। बुझ गई अगन नानक से धुआं, रव रहया एक अवर नहीं दुआ। रहाओ टूटी तंत ना बजै रबाब, भूल बिगारो अपना काज। कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो बिसरियो गावन। कहत कबीर पंच जो चूरे, तिनते नाही परम पद दूरे। आसा सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत ना राख स्थेते। रा मैया हूं बारक तेरा, काहे ना खंड से अवगन मेरा। रहाओ जे अत क्रोप करे करत आया, ता पी चीत ना राख समाया। चिंत पवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उत्तर सपारा। देह बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। आसा हज हमारी गोमती तीर, जहां बसै पीतंबर पीर। वाहो वाहो क्या खूब गावता है, हर का नाम मेरे मन पावता है। रहाओ नारद सारद करै खवासी, पास बैठी बीबी कबला दासी। कंठे माला जेवा राम, सहंस नाम लै लै करो सलाम। कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुर्क दो समझावो। आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ, दो तुके पंज एक ओंकार। सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो। जिस पाहन को पाती तोरै, सो पाहन निर्जियो। भूली मालिनी है ओ, सतगुर जागता है दे ओ। रहाओ ब्रह्म पाती बिसंडारी, फूल शंकर दे ओ। तीन देव प्रतख तोरै, करे किसकी से ओ। पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी, दे कै छाती पाओ। जे एह मूर्त साची है, तो गण नहारे खाओ। पात पहत यर लापसी, कर करा का सार। भोग नहारे भोगया इस मूर्त के मुखशार। मालन पुली जग पुलाना, हम पुलाने नाहे। कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय। आसा बारह बरस बालपन बीते, बीस बरस कष्ट अपना कियो। तीस बरस कष्ट देवन पूजा, फिर पछताना बिरद पयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भुजंग बलियो। रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथ वार करे। आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुक्त फिरै। चरण शीस कर कंपन लागे, नैनी नीर आसार बह। जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै, तबरे धर्म की आस करै। हर जियो कृपा करै लिव लावै, लाहा हर हर नाम लियो। गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चलद्या नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अंतन कछुए लै ना गयो। आई तरब गोपाल राय की, माया मंदिर छोड़ चलियो। आसा काहू दीने पाठ पटंबर, काहू पलंग निवारा। काहू गरी गोदरी नाही, काहू खान परारा। अहे रखवाद ना।

हम गोरु तुम ग्वार गोसाई जन्म जन्म रखवारे कबहू ना पारो तार चरायो कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं का सीत जुल्हा बूजो मोर गयाना तुम तो जाचे पूपत राजे हर सौ मोर त्याना। आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधान। बाबा माया मोह हित कीन जिन ज्ञान रतन हरलीन रहाओ नैन देख पतंग उर्जै पस ना देखै आग काल फासना मुग्द चेतै कनक कामन लाग। कर विचार बिकार पर हर तरन तारन सोए कह कबीर जग जीवन ऐसा दुती नाही कोए। आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब फुन रूप ना होई तागा तंत साज सब थाका राम नाम बस होई।

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी, सर्व भूत एक कर जानिया, चूके बाद बिबादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पहे राम प्रसादा। आसा रोजा तरह मनावे अल्लाओ, स्वादत जी संघार है, आपा देख अवर नहीं देख, काहे कौ चख मार है, काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देख, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेख रहाओ, साज कते बखाने अल्लाह, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुणे ना ही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई, अल्लाह गैब सगल घट पीतर, हृदय लिहो बिचारी, हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा, कियो सिंगार मिलन के ताई, हर ना मिले जग जीवन गुसाई, हर मेरो पेर हौ हर की बहुरिया, आराम बड़े मैं तनक लहोरिया, रहाओ तन पर एक संग बसेरा, सेज एक पै मिलन दुहेरा, तन सुहागन जो पी पावै, कह कबीर फिर जन्म न आवै, आसा श्री कबीर जियो के दो पदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हीरा हीरा बेद पवन मानो, सहजे रहा समाई, सगल जोत इन हीरे बेदी, सतगुर बचनी मैं पाई, हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पशानी, रहाओ कहे कबीर हीरा अस देखियो, जग में रहा समाई, गुप्ता हीरा प्रगट पायो, जब गुरगम दिया दिखाई, आसा पहली क्रूप कुजात को लखनी, साहुरे पेये बुरी, अब की स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर तरी, पली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवाओ मेरी अब की तरी, रहाओ कहो कबीर जब लहुरी आई, बड़ी का सुहाग टर्यो, लहुरी संग पहिया मेरा जेठी और तरयो, आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ, ले रखियो राम जनिया नाओ, इन मुंडिया न मेरा घर तुंदरावा, बिटवे राम रमुआ लावा, रहाओ कहत कबीर सुनो मेरी माई, इन मुंडियन मेरी जात गवाई, आसा रहो रहो री बहुरिया, कुंगट जिन काडे अंत की बार, लहगी ना याडे, रहाओ कुंगट कांड गई तेरी आगे, उनकी गैल तुहे जन लागे, कुंगट काडे की यह बड़ाई, दिन दस पांच बहु पले आई, कुंगट तेरो तो पर साचे, हर गुण गाए कूदे यार नाचे, कहत कबीर बहु तब जीतै, हर गुण गावत जन्म बतीतै, आसा करवट भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी, हों वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे कौ मारे, रहाओ जो तन चीरा अंगना मोरो, पिंड पर तो प्रीत ना तोरो, हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सो कंत नार हम सोई, कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत ना हुई, आसा कोरी को कहूं मर्म ना जाना, सब जग आनत ना होता ना, रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरे होता ना, तरने आकाश की कर गए बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई, पाई जोर बात एक कीनी, तै तांती मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पिशाना, कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी, आसा अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ ना जाना, लोकपतीने कछू ना होवे, ना ही राम याना, पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा, रहाओ
जल कै मज्जन जे गत होवै नित नित मेंढक नावै जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जोनी आवै मनो कठोर मरै बानारस नरक ना बांचिया जाई हर का संत मरै हाड़म्बै ता सगली सैन तराई दिन सनारैन बेदनी शास्त्र।

एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र विचित्र विमोहत बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अरफेन बुदबुदा जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकर कौ स्नान करो। ब्याह लीस लख जी जल मैं होते बीठर पहला काय कराओ।

आसा सेख फरीद जियो की बाणी एको अंकार सतगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीय रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दर वेस से तिन धन जने दी माओ आए सफल से पर्वत गारिया पार अगम बेअंत तू जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर मूह तेरी परै खुदाए तू बख्शंदगी सेख फरीद खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गौर करे आज मैं लावा सेख फरीद टाक मकुंजड़िया मनोम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाई है घुम ना आई है झूठी दुनिया लग ना आप वजाई है बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए जो गुर दसै वाट मुरीदा जोली है शैल लगंदे पार गोरी मन धीरिया।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंग गुर प्रसाद। राग गुजरी महला पहला चौप दे कर पहला, तेरा नाम करी चननाठिया जे मन उरसा होए, करनी कुंगू जे रल कट अंतर पूजा होए। पूजा की चै नाम ते आई है, बिन नावे पूज ना होए रहाओ। बाहर देव पखाली है जे मन तो वह कोए, झूठ लह जियो मन जी है मोख पयाना होए। पशु मिले चंगे आईया खड़ खावे अमृत दे, नाम विहुने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। नेड़ा है दूर ना जाने आओ नित सारे संभाले, जो देवे सो खावना कहो नानक साचा है। गुजरी महला पहला नाब कमल ते ब्रह्मा उपजे, वेद पड़े मुख कंठ सवार, ताको अंतना जाई लखना आवत जात रह गोबार। प्रीतम क्यों बिसरै मेरे प्राण आधार, जाकी भगत करै जन पूरे मुन जन सेवै गुर विचार। रहाओ राव सस दीपक जाके तिर पवन एका ज्योत मुरार, गुरमुख होए सो अहिंस निर्मल मन मुख रहने आधार। सिद्ध समाध करै नित झगरा दोह लोचन क्या हेरै, अंतर ज्योत सब तुन जागै सतगुर चगर नबेरै। सुर नर नाथ बेअंत जोनी साचै महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा। राग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्रिग अवेहा जीवना जित हर प्रीत ना पाए, जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुर सेविए मना जित सेवे गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए। हर सेती चित गह रह जरा का पौ ना हो वही, जीवन पदवी पाए। रहाओ गोविंद प्रीत स्यों एक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी आप सेती आप खाया, ता मन निर्मल होवा ज्योति ज्योत समई। बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाई है, जे लोचै सब कोए कूड़े की पाल विचों निकले ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह सेवक सेवा करे, गुर आग्या जियो धरे सतगुर का पाणा चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला तीजा हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोए जी। हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है, दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी। हर मेरी प्रीत रीत है हर मेरी कथा कहानी जी, गुरप्रसाद मेरा मन पीजै एहा सेव बनी जियो। रहाओ हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधप हर मेरा पाई, हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्तै, हर मेरा साक अंत होए सखाई। हर बिन होर रास कूड़ी है चलद्या नाल ना जाई, हर मेरा तन मेरा साथ चल है जहां हो हाँ जाओ तह जाई। सो झूठा जो झूठे लागे झूठे कर्म कमाई, कह नानक हर का पाणा होवा कहना कछु ना जाई। गुजरी महला तीजा जुग माहे ना

सास सास तेरा नाम सुमारा तुम ही को प्रव्याही, नानक टेक पई करते की होर आस बेडानी लाही। गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निस्यार पोर केस संग दास पगचारो एह मनोरथ मोर। ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर, चित चित वो हर रस न्यारा दो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकर बिनो करो कर जोर, नाम जपै नानक दास तुमरो उदर से आखी फोर। गुजरी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक, आई इंद्र लोक ते ताए, साध संगत को जोहे ना सकै मल मल धोवे तो पाए। अब मोहे आए परयो शरणाए, गुहज पाव को बहुत पर जा रहे, मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ। सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर, रही कंठ उर जाए, जन नानक अंग किया प्रभ करता है, जा कै कोट ऐसी दास आए। गुजरी महला पंजवा आप जस मिटै होवे जग कीर्त, उंदर गै बैसन पाई है, जम की त्रास नास होए खिन मैं, सुख अंध सेती कर जाई है। जाते काल न बिरथी जाइए, आठ पहर सिमरो प्रभ अपना, मंत्र सदा त्याइए रहाओ। मोहे सरन दीन दुख भंजन, तू देह सोई प्रभ पाइए, चरण कमल नानक रंग राते, हर दास पैज रखाइए। गुजरी महला पंजवा विश्वंपर जियन को दाता, भगत परे भंडार, जाकी सेवा निफल ना होवत खिन मैं करे उधार। मन मेरे चरण कमल संगराज, सगल जी जाको वारा दे, ताहू को तू जाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते, तू प्रभ प्राण आधार, हुए सहाय जिस तू रखै तिस कहां करे संसार। गुजरी महला पंजवा जन की

आओ। मात पिता सुत मीत भाई तिस बना नहीं कोए, ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रव्या सोए। कोट जतने उपाव मिथ्या कछ न आवै काम, शरण साधु निर्मला गत होए प्रभ कह नाम। आगम दयाल प्रभु ऊचा शरण साधु जोग, तिस प्राप्त नानका जिस लिखिया तुर संजोग। गुजरी महला पंजवा आपना गुर सेव सदी रमह गुण गोबिंद, सास सास आराध हर हर लह जाए मन की चिंद। मेरे मन जाप प्रभ का नाओ, सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल थाओ रहाओ। साध संग उधार एहो मानो, आठ पहरे आराध काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटै सगले उपाद। अटाला शेदा भेद सुमामी सरण ताकी आओ, चरण कमल आराध हृदय एक सिउ लिव लाओ। पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बख्श लीने आप, सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप। गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया, गई शंका टूट दुखा नेरा।

जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पहे पूर्ण काम। सास सास ना बिसर कब हूं ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगंत सदा अकथ। दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर सरण। गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महादीर्घ रोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करण कारण योग। मन तन बांछी है जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ। आदि अंते मध्य आसा कुकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काटी है जमजाल। काम क्रोध लो मोह मूठे सदा आवा गवन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन। मिटत जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हरजन संत। सर्ब बिद भ्रमते पुकारे कतै नाही छोट हर चरण सरण अपार प्रभ के दृढ़ गही नानके ओट। गुजरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आराध श्री धर सफल मूर्त करण कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग। मन चरण अरबिंद उपास काल कलेस मिटंत सिमरन काड़ जमदूत फास रहाओ। सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुवाओ। गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरन को दाता दुख भंजन सुख राए जाहे कलेस मिटे पै परमा निर्मल गुण प्रभ गाए। गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी। आठ पहरो हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उदरै बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ सरन परयो नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियले बरजत चोरी तावै त्रह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावै। चेताओ बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ। उर्द मूल जिस साख्त लाहा चार बेद जित लागे सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे। पार जात कर अंगन मेरा पुहप पत्र तत डाला सर्ब ज्योत निरंजन संभू छोडो बहु जंजाला। सुन सिखवंते नानक बिनवै छोडो माया जाला मन विचार एक लिव लागी। पुनरप जन्म ना काला सो गुरु सो सिख कथियाले सो वै जे जाने रोगी। तिस कारण कामना तंदा नाही तंदै गिरही जोगी। काम क्रोध अहंकार तजियाले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत ते आया गुर प्रसादी पाया। ज्ञान ध्यान सब दात कथियाले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मदत तासर साधं जगत नाही सूता। महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनै ना गर्म बेख तज अमृत पी आया। गुजरी महला पहला कवन कवन जाचै प्रभ दाते ताके अंत न परै सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरासा देवनहार। ऐ जी जप तप संयम सच आधार हर हर नाम दे सुख पाईए तेरी भगत परे पंडार रहाओ। सुन समाद रह लिव लागे एका एकी शब्द विचार जल थल तरण गगन तह नाही आपे आप किया करतार। ना तद माया मग ना छाया ना सूरज चंद ना ज्योत्या पार
ਸਰਬ ਲੋਚਨ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਚਨ ਅਭਿਯੰਤਰ ਏਕਾ ਨਜ਼ਰ

आपन चाहे सो भगत कहिए, अपना प्यार आप लाए, आपे गावे आप सुनावे। इस मन अंधे को मार्ग पाए, अंधन नाचे सकत निवारे, सेवकर नींद ना होई। सकती कर जगत सूता, नाचे टापे अवरो गावे, मनमुख भगत ना होई। सुर नर विरत पख करमी नाचे, मुनजन ज्ञान बिचारी। सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध विचारी। खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुम्हारी। जी जंत सब ही नाचे, नाचे खानी चारी। जो तुद भाव है से ही नाचे, जिन गुरमुख शब्द लिव लाए। से भगत से तत् ज्ञानी, जिसको हुक्म मनाए। एहा भगत सच्चे सिउ लिव लागे, बिन सेवा भगत ना होई। जीवत मरे ता शब्द विचारे, ता सच पावै कोई। माया कै अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत् विचारी। गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिनको कृपा तुम्हारी। एकदम साचा विसरै, सावेला बिरथा जाए। साहे साहे सदा संभालिए, आपे बक्से करे रजाए। सही नाचे जो तुत पावे, जे गुरमुख शब्द विचारी। कहो नानक से सहे सुख पावे, जिन कहो नजर तुम्हारी। गुजरी महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर बिन जियरा रह ना सके, जो बालक खीर आधारी। आगम्या गोचर प्रभ गुरमुख पाई है, अपने सतगुर कह बलिहारी। मन रे हर कीर्त तरतारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाई है। जिन कहो कृपा तुम्हारी, रहाओ सनक सनंदन। नारद मन सेवै, अंदर जपत रह बनवारी। शरणागत प्रहला जन आए, तिनकी पै सवारी। अलख निरंजन एको वरतै, एका ज्योत मुरारी। सब जाचक तू एको दाता, मंगे हाथ पसारी। भगत जना की उत्तम बाणी, गावे कथ कथा नित न्यारी। सफल जन्म भया तिनकेरा, आप तरे कुलतारी। मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे, जिन अंतर मोह गुबारी। संत जना की कथा ना पावे, ओए डूबे सन परवारी। निंदक निंदा कर मल धोवे, ओह मल पख माया तारी। संत जना की निंदा व्यापे, ना उरवार ना पारी। एहो परपंच खेल किया, सब करता है हर करता है सब गलतारी। हर एको सूत वरतै जुग अंतर, सूत खिंचै एक अंकारी। रस निरसन रस गावै हर गुण, रसना हर रस धारी। नानक हर बिन अवर ना मांगो, हर रस प्रीत प्यारी। गुजरी महला पंजवा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राजन मैं तू राजा कहिया, भूमन मैं भूमा। ठाकर मैं ठकराई तेरी, कोमर सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, उसत कमन करी जय करते। पेख रहे बिस्मा रहाओ, सुखियन मैं सुखिया तू कहिया। दातन सिर दाता, तेजन मैं तेजवंशी कहिए। रसियन मैं राता, सूरन मैं सूरा तू कहिए। भोगन मैं भोगी, ग्रस्तर मैं तू बड़ो ग्रस्ती। जोगन मैं जोगी, करतन मैं तू करता कहिए। आचारन मैं आचारी, साहन मैं तू साचा साहा। वापारन मैं वापारी, दरबारन मैं तेरो दरबारा। शरण पालन टीका, लक्ष्मी केतक गनी ना जाइए। गाना सको सिका, नामन मैं तेरो प्रभ नामा। ज्ञानन मैं ज्ञानी, जुगतन मैं तेरी प्रभ जुगता। इशनानन मैं इशनानी, सिद्धन मैं तेरी प्रभ सिद्धा। करमन सिर करमा, आज्ञा मैं तेरी प्रभ आज्ञा। हुक्मन सिर हुक्मा, ज्यो बुलावे त्यो बोले स्वामी। कुदरत कमन हमारी, साह संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, गुजरी महला पंजवा कर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
ਨਾਥ ਨਰ ਹਰ ਦੀਨ ਬੰਧਵ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਦੇਵ ਪੈ ਤਰਾਸ ਨਾਸ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਣਨਿਦ ਸਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੇਵ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਸਰਨ ਦਿਆਲ ਕੇਸਵ ਤਾਰ ਜਗ ਪਵ ਸਿੰਧ ਰਹਾਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਰਨ ਮਦ ਮੋਹ ਦਹਿਨ ਮੁਰਾਰ ਮਨ ਮਕਰੰਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਧਰਣੀ ਧਰ ਪਤ ਰਾਖ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਲਤ ਅਨਕ ਤਰੰਗ ਮਾਇਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹਰ ਰਿਦ ਮੰਤ ਛੇ ਦੇਹ ਬੁੱਧ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਮੇਟ ਪੁਰਖਿਆਨੰਤ ਸਿਮਰ ਸਮਰੱਥ ਪਲ ਮਹੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ ਸਹਿ ਸਮਾਦ।

तनाड आड भंडार हर निद होत जिना ना चीर खल मूड खल मुक्त मूड कटाक श्री धर पय गुण मतीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परमहंस रीत देत दर्शन सरवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पत उदार गुजरी की वार महला तीजा सिकंदर ब्रह्म की वार की तुनी गावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला तीजा एहो जगत ममता मोवा जीवन की बिद नाहे गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाए नानक नगरी मन वसै गुरमुख सही समाए महला तीजा अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार दूजे पाए सुते कवे ना जागे।

कलयुग में नाम निदान भक्ति खटिया, हरि उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अन दिन नाम पियाया, विचे ग्रह गुरबचन उदासी, हों मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुरे अपने विटों, जिन भ्रम पुला मार्ग पाया। महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले, जो देख दीपक पतंग पचाया, पंडित पुल पुल माया वेख है, दिखा किने केहो आन चढ़ाया, दूजे पाए पड़े नित बिखया, नाम दईए खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अहंकार बहु गर्भ वधाया, शादन भोजन ना लही सत पिखया, मन अठ जन्म गवाया, एतड़िया विचों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनो आख सुनाईए, जा कर दे सब कराया, पौड़ी माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अहंकारा, एह जम की सिरकार है, इना उपर जम का डंड करारा, मनमुख जम मग पाईयन, जिन दूजा पाओ प्यारा, जम पर बदे मारियन, को सुने ना पुकारा, जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले, गुरमुख निस्तारा। श्लोक महला तीजा, हौ मैं ममता मोहनी, मनमुखा नो गई खाए, जो मोहे दूजे चित लाए दे, तिन्ना व्याप रही लपटाए, गुर कै शब्द पर जाली है, ता एह विच्चों जाए, तन मन हो वै उजला, नाम वसै मन आए, नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए। महला तीजा, एहो मन केतड़िया, जुग भरमिया, थिर रहे न आवै जाए, हर पाणा ता परमायन, कर परपंच खेल्यो पाए, जा हर बख्से ता गुर मिले, अस्थिर रहे समाए, नानक मन ही ते मन मानिया, नाक्ष मरे न ना जाए। पौड़ी काया कोटिया पार है, मिलना संजोगी, काया अंदर आप वस रहया, आपे रस भोगी, आप अतीत अलिप्त है, निर्जोग हर जोगी, जो तिस पावे सो करे, हर करे सो होगी, हर गुरमुख नाम ते आई है, लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा, वाहो वाहो आपा खाइंदा, गुर शब्दी सच सोए, वाहो वाहो सिफत सलाह है, गुरमुख बूझै कोए, वाह वाहो बाणी सच है, सच मिला वाहोए, नानक वाह वाहो करत्या प्रपाया, कर्म प्राप्त होए। महला तीजा, वाह वाहो करती रसना शब्द सुहाई, पूरे शब्द प्र मिलया आई, वडभागिया वाह वाहो मोह हो कढ़ाई, वाह वाहो करै सही जन सोहणे, तिनको परजा पूजने आई, वाह वाहो कर्म प्राप्त होवै, नानक दर सच्चै सोभा पाई। पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ पीतर, कूड़ को सत अभमानी, परम पूले नजर नायावनी, मनमुख अंध ज्ञानी, उपाय कता ना लभनी, कर पेख तखे पेखवानी, गुर शब्दी खो लाई अनु, हर नाम जपानी, हर जीव अमृत बिरख है, जिन पिया ते त्रिपतानी। श्लोक महला तीजा, वाह वाहो करत्या रैन सुख विहाए, वाह वाहो करत्या सदा आनंद होवै मेरी माए, वाह वाहो करत्या हर स्यों लिवलाए, वाह वाहो करमी बोलै बोलाए, वाह वाहो करत्या शोभा पाए, नानक वाह वाहो सत्र जाए। महला तीजा, वाह वाहो बाणी सच है,

आप दया कर दे नानक वाह वाह गुरमुख पाईए अंधन नाम लाए महला तीजा बिन सतगुर सेवे सांत ना आवई दूजी नाही जाए जे बहु तेरा लुची है बिन करमै ना पाया जाए जिन्ना अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुवाए जमन मरन ना चुकई हम मैं विच दुख पाए जिन्ना सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो वई ना ओए दुख सहाहे नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समाहे पौड़ी ढाडी तिसनो वाखीऐ जे खसमै तरे प्यार दर खड़ा सेवा करे गुरसबदी विचार ढाडी दर कर पाए सी सच रखे उरतार ढाडी का महल अगला हर कै नाए प्यार ढाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार श्लोक महला तीजा गुजरी जात गवार जा सहो पाए अपना गुर कै शब्द विचार अंधन हर जप जपना जे सतगुर मिले तिस पहो पवै सा कुलवंती नार सा हुकुम पछाणै कंत का जिसनो कृपा कीती करतार ओहो कुचजी कुलखणी पर हर छोडी पतार पै पै मल कटियै निर्मल होवै शरीर अंतर प्रगास मातू तुम होवै हर जप गुणी गहीर पै विच बैसै पै रहै पै विच कमावै कार ऐथै सुख वडियाईया दरगे मोख द्वार पै ते निरपौ पाईऐ मिल ज्योति जो अपार नानक खसमै पावै सा पली जिसनो वापे बख्शे करतार महला तीजा सदा सदा सालाही है सच्चे को बल जाओ नानक एक छोड़ दूजे लगे सा जेवा जल जाओ पौड़ी अंसा अवतार उपायोन पाओ दूजा किया जो राजे राज कमाव दे दुख सुख पिड़िया ईश्वर ब्रह्मा सेव दे अंत तिनी ना लिया निरपौ निरंकार अलख है गुरमुख प्रगटिया तिथै सोग विजोग ना व्यापई अस्त्र जगथिया श्लोक महला तीजा एहो सब किछ आवण जाण है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सोहवा प्रमाण नानक जे को आप गणाए।

कड़ी मोहत न विसरै नानक रवि है नित पौड़ी सूर वीर वरियाम कने ना होड़ी है फौ सतानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी अवधूत दिन चमोड़ी है जिन जन लैन रलाए एहो इना लोड़ी है त्रै गुण इनकै वस किने ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपूरा आराद बिखम दल फोड़ी है हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़ी है श्लोक महला पंजवा किल विख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजै नानक बिसरै नाओ महला पंजवा नानक सतगुर भेटे है।

पौड़ी सो सतगुर तन तानो जिन परम गढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया, नाम निदान या खुट गुर दे दारुओ, महारोग बिकराल उतने बिदारुओ। पाया नाम निदान बहुत खजाने आ, जिता जन्मया पार आप पछाने आ, महिमा कही ना जाए गुर समर्थ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अरम अपरंपरा लाखा पेव। सलोक महला पंजवा, उद्यम करेंदिया जियो तू कमावदे।

जो तेरा रंग रफ्ते से जोनना जोवना अंतर बाहर एक नैणा लोवना जिनी पछाता हुक्म तन कदे ना रोवना नाव नानक बख्शीस मन माहे प्रोवना। श्लोक महला पंजवां जीवन दया ना चेत्यो मुआ रल लंदड़ो खाक नानक दुनिया संग उदारिया सागत मूड़ नपाक। महला पंजवां जीवन दया हर चेत्या मरन दया हर रंग जन पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी आदि जुगादी आप रखण वालिया सच नाम करतार सच पसारिया। ऊणा कही ना होए कटे कटसारिया मेहरवान समरथ आपे ही कालिया जिन मन उठाया आप से सदा सुखालिया आपे रचन रचाए आपे ही पालिया सब किश आपे आप बेअंत अपारिया गुरपुरे की टेक नानक संभालिया। श्लोक महला पंजवां आदि मध्य अंत परमेश्वर रखिया सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया साधा संग अपार अंदर हर गुण रवै पाए मनोरथ सब जोनी नह पवै सब किश करते हथ करण जो करै नानक मंगै दान संता तूर तरै। महला पंजवां तिसनो मन वसाए जिन उपाया जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस होवा आप किरपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसै दयाल बुझाए हुक्म मित जिसै।

जब लग तागा बाहो बेही तब लग विसरै राम स्नेही ओछी मत मेरी जात जुलाहा हर का नाम लयो मैं लाहा कहत कबीर सुनो मेरी माई हमरा इनका दाता एक रगराई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जौ राज देह ता कमन वडाई जो भीख मंगावै ता क्या कट जाई तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण बहुर ना होए तेरा आवन जान रहाओ सब तै उपाई भरम भुलाई जिस तू देवै सह बुझाई सतगुर मिलै ता सहसा जाई किसह पूजो दूजा नजर न आई एक है पाथर की जय पाओ दूजे पाथर धरिए पाओ जे ओह देओ ता ओह पी देवा कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला मलै ना लाछै पार मलो परम लियो बैठो री आई आवत किने ना पेखेओ कमने जाने री बाई कौन कहे किन बूझिया रमैया या कुल री बाई रहाओ ज्यो आकाश पंखिया लो खोज निरखियो ना जाई ज्यो जल माजै मछलो मार्ग पेखणो ना जाई ज्यो आकाश कड़ुवलो मृग तृष्णा भरिया नामे चे स्वामी बीठलो जंती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दूता बछरै थनो बिटारियो फूल पवर जलमीन बिगारियो माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो अवरना फूलिया नूपन पावो रहाओ मैं लागर बेरे है भयंगा बिखे अमृत बसै एक संगा धूप दीप नहीं बेदै बासा कैसे पूज करें तेरी दासा तन मन अर्पाओ पूज चरावो गुरप्रसाद निरंजन पावो पूजा अर्चा आहे ना तोरी कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलो

अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमंग सत आद भावरतंग परमद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्वगतंग केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयंग रहाओ इच्छ सजमाद परा भयंग जस स्वस्थ सुकृत कीर्तंग भव भूत भाव समग्यंग परमंग प्रसन्न मिदंग लोभाद दृष्ट पर गिरहंग जद विद आचरणंग तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तर शरणंग हर भगत निज नेह केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदंग जय देव आयो तस सफटंग भवभूत सर्वगतंग एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपंग गुरप्रसाद राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे जन नानक के प्रभ

चले पित गली हर के संत बतावो मार्गो हम पीछे लाग चली रहाओ। प्रे के बचन सुखाने ही अरे ए चाल बनी है पली लटरी मदरी ठाकर पाई ओह सुंदर हर टोल मिली। एको प्रेयो सखिया सब प्रे की जो पावे पिरसा पली नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे तितराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलू लै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ। हाँ फिरों दीवानी आवल बावलो तिस कारण हर ढोली है कोई मेले मेरा प्रीतम प्यारा हम तिसकी गुलगुली है। सतगुर पुरख मनावो अपना हरे अमृत पी झोली है गुर प्रसाद जन नानक पाया हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकर पैहार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार।

ठाकर प्रभ तुमरी तिस राखो कृपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हों तिस बरिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन, जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ। तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी, हम क्यों कर मिले जूठारी। हमरे जिए होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ेयारी। हमरी मुंदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी। जो पावे त्यों राखो स्वामी, जन नानक शरण द्वारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नकटी, जो बेसवा के घर पूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रगटी रहाओ। जिनके हृदय नाहे हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरगटी। ज्यो निगुरा बहु बाता जाने, ओहो हर दर गह है प्रस्ती। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकटी। नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पाछ शुकटी। शक्का एक देव गंधारी महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुरचरणी चित लाइय, प्रभ होए कृपाल कमर पर गासे। सदा सदा हर त्याई है रहाओ, अंतर एको बाहर एको, समय एक समाई है। घट अवघट रविया सब ठाई, हर पूर्ण ब्रह्म दिखाई है। उस्तत कर है सेवक मुन के ते, तेरा यंत्र कतहू पाई है। सुखदाते दुख भंजन स्वामी, जन नानक सतबल जाई है। देव गंधारी माई होन हार सो होई है, राच रहे ओ रचना प्रभ अपनी। कहां लाभ कहां खोई है रहाओ, कह फूले आनंद बिखे सोग। कब हसनो कब रोई है, कब हूं मैल भरे अभिमानी। कब साधु संगत होई है, कोई ना मेटे प्रभ का किया, दूसर नाही अलोई है। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जे प्रसाद सुख सोई है। देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत, मेर तेर तजो अभमाना। शरण स्वामी की परत रहाओ, जो जो कह सोई पल मानो। नाहिन का बोल कर दो, निमख ना बिसरो ही ए मोरे ते। बिसरत जाई हो मरत, सुखदाई पूर्ण प्रभ करता। मेरी बहुत अयान पजरत, निर्गुण कुरूप कुलीन नानक हौं। आनंद रूप स्वामी भरत, देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं। गावत सुनत जब तो उधार है, बरन्या बरना सब हूं रहाओ। जहते उपजो तही समान्यो, जहते उपजो तही समायो। एह बिद जानी तब हूं, जहां जहां एह देही धारी। रहना पायो कब हूं, सुख आयो पै परम बिनासे। कृपाल हुए प्रभ जब हूं, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ। सा संग तज लब हूं, देव गंधारी मन जो अपने प्रभ पावो। नीचो नीचो नीचो अत नाना, होए गरीब बुलावो रहाओ। अन के अडंबर माया के बरथे, तासो प्रीत कटावो। ज्यो अपनो स्वामी सुख मानै, ता मैं शोभा पावो। दासन दास रेण दासन की, जन की टैल कमावो। सर्व सुख वडियाई नानक, जीवो मुखो बुलावो। देव गंधारी प्रभ जी तो प्रसाद भ्रम डारियो, तुमरी कृपा ते सबको अपना। मन में यह बिचारियो रहाओ, कोट पराध मिटे तेरी सेवा। दर्शन दुख उतारियो, नाम जपत महासुख पायो। चिंता रोग बिदारियो, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा। साधु संग बिसारियो, माया बंद काटे कृपा निद। नानक आप उधारियो, देव गंधारी
ਮਨ ਸਗਲ ਸਿਆਨ ਪਰਹੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕੇ ਉਠ ਗਹੀ ਰਹਾਓ ਆਪ ਮੇਟ ਪਏ ਸਰਨਾਈ ਇਹ ਮਤ ਸਾਧੂ ਕਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਲਹੀ ਜਾਨ ਪਰਬੀਨ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਅਹੀ ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪ ਨਹਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਮਨਾ ਪਹੀ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਖਦਾਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਹੂ ਜਾਤੇ ਰਹਾਓ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਿਨ ਕਉ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਤੇ ਰੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਲਾਲ ਪਏ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ਮਹਾ ਕਿਰਵਖ ਕੋਟ ਦੋਖ ਰੋਗਾ ਪ੍ਰਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੁਹਾਰੀ ਹਾਤੇ ਸੋਵਤ ਜਾਗ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਗਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਿਓ ਨੈਣੀ ਸੁਖਦਾਈ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਕੀ ਬੈਣੀ ਰਹਾਓ ਅਗਿਆਨਾ ਦੇਰਾ

ना प्राप्त हो निधाना जिनके कर्म लिखा। सेवड पागी से पतवंते से ही पूरे सहा। सुंदर सुगण स्वरूप ते नानको जिन हर हर नाम विसाहा। देवगंधारी पंजवा मन कहे अंकार अफारा। दुर्गंध पवित्र अपावन पीतर जोधी सहसो शारा। रहाओ जिन किया ते सिमर प्राणी जियो प्राण जन तारा। तिसह त्याग अवर लपटावै मरजन मैं मुक्त गवारा। अंध कोंग गोंग पिंगल मतहीना प्रभ राखो रखनहारा। करण करावन हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा। देव गंधारी पंजवा सो प्रभ नेरै हूं ते नेरै। सिमरत आए गाए गुण गोबिंद दिन रैण सांझ सवेरै। रहाओ उधर देह दुलभ साधु संग हर हर नाम जपेरै। करी ना मोहत ना चसा बिलंबो काल नितै नित हेरै। अंध बिलाते काडो करते क्या नाही करते रह। नाम आधार दीजै नानक कहो आनंद सुख घनेरै। शके दो देव गंधारी पंजवा मन गुरमिल नाम आराध्यो। सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल बाध्यो। रहाओ कर कृपा

पयो अनुग्रहो मिट्यो मोर्चा। अमोल पदार्थ ला देओ बलिहार है नानक लख बेरा, मेरे ठाकर अगम्यागा देओ। देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे, सफल आया जीवन फलता को पार ब्रह्म लिवलावे। रहाओ सुंदर सुगड़ सूर सो बेता, जो साधु संग पावे। नाम उचार करे हर रसना, बहुन न जो नीत आवे। पूर्ण ब्रह्म रव्या मंतन मह, आना दृष्टि आवे। नरक रोग नहीं होवत जन संग, नानक जिस लड़ लावे। देव गंधारी पंजवा चंचल सुपने ही उर जायो, इतनी ना बूझै कबहू चलना, बिगल पयो संग मायो। रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया, बिखिया एक उपायो, लोभ सुने मन सो कर माने, बेग तहां उठतायो। फिरत फिरत बहुत श्रम पायो, संत द्वारे आयो, करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी, नानक लियो समायो। देव गंधारी पंजवा सर्व सुखा गुर चरना, कालमल डारन मने सुधारन, ए आसर मोए तरना। रहाओ पूजा अर्चा सेवा बंदन, एह टहल मोहे करना, बिकसै मन होवे परगासा। बहुर ना गर्भ परना, सफल मूर्त परसव संतन की, एह त्याना तरना। पयो कृपाल ठाकर नानक, पर्यो साध की सरना। देव गंधारी महला पंजवा, अपने हर पै बिनती कहियै। चार पदार्थ अनंद मंगल निध, सुख सहज सिद्ध लहियै। रहाओ मान त्याग हर चरणी लागो, तिस प्रभ अंचल गही है। आंच ना लागे अग्न सागर ते, शरण स्वामी की अही है। कोट प्राद महा अकृत कान, बहुर बहुर प्रभ सही है। करना मैं पूर्ण परमेश्वर, नानक ते शरण ही है। देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा, रोग सोग सब दुख विनाशे, उतरे सगल कलेसा। रहाओ जन्म जन्म के किल बिखनासे, कोट

प्रेम रसाने जाको उपजी, छोड़ न कतहूं जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर, हर रस भोजन खाता। अठसठ तीर्थ मज्जन कीनो, साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया, जन कीनो सौत बेदाता। सगल समूह लै उदरे नानक, पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा, माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है। अनक प्रकार फिलत बिललाते, मिलत नहीं गोसाई है। रहाओ मोह रोग सोग तन बांधो, बोझो नी परमाई है। टिकट ना पावै बिन सतसंगत, किसी आगे जाय रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा, साध चरण चित लाई है। संकट घोर कटे खिन पीतर, नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महला पंजवा, ठाकर होए आप दयाल। पई कल्याण आनंद रूप होई है, उबरे बाल गोपाल। रहाओ दोए कर जोड़ करी बेनंती, पार ब्रह्मन त्याया। हाथ दे राखे परमेसर, सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया, ठाकुर का जयकार। कहो नानक जन को बल जाइए, जो सबना करे उधार। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, देव गंधारी महला पंजवा। अपने सतगुर पै बिनो कहया, पै कृपाल दयाल दुख भंजन। मेरा सगल अंधेसरा गया, रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी। हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया, कर मस्तक तार साज निवाजे, मोए दुष्ट जो खया। पार उपकारी सर्व सुधारी, सफल दर्शन सहजया। कहो नानक निर्गुण कहो दाता, चरण कमल उर धरिया। देव गंधारी महला पंजवा, अनाथ ना

तब तुहारे, उन समार मेरा मन साधारे, सुन गावो गुर बचनारे, बल बल जाओ साध दरसारे, मन में राखो एक या सारे, नानक प्रभ मेरे करण हारे। देव गंधारी महला पंजवां, प्रभ यह

लागो जन चरणी निस्बासर दर्स पावां। तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावां। सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिया। एक आधार नाम तन मोरा अनद नानक एहो लईऐ। राग देव गंधारी महला पंजवा घर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ ना जाई सधी संगे अंदन गुर मिल गाए। रहाओ मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कत हूं जाए। अनक अनक भांत बहु पेखे प्रेरोम ना समसर लाए। मंदर भाग शोभ द्वारे अनहद रोण चुन लाए। कहो नानक सदा रंग माणे गृह प्रे थीते सद थाए। देव गंधारी पंजवा दर्शन नाम कौ मन आचै। भ्रम आयो है सगल थान रे आहे पर्यो संत पाछै। रहाओ किस हम सेवी किस आराधी जो दिष्टै सो गाचै। साध संगत की सरणी परियै चरण रेन मन बांचै। जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माया छ। आए पयो नानक गुर चरणी तो उतरी सगल दुराछ। देव गंधारी पंजवा अमृता प्रे बचन तुहारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे। सबहू मद निरारे रहाओ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा मोहे ठाकर ही दरसारे। दीन द्वारे आयो ठाकर शरण पर्यो संत हारे। कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन सीतर बिगसारे। देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारियो। दीन दयाल पए प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो। रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रत्न जन्म नहीं हारियो। प्रभ गुण गाए बिखै बंतरिया कुलै समूह उदारियो। चरण कमल बस्यारिद पीतर सास ग्रास उचारियो। नानक उठ गही जगदीशर पुनः पुनः बलिहारियो। राग देव गंधारी महला पंजवा घर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद। करत फिरे बन पेख मोहन रहत निरार। रहाओ कथन सुनावन गीत नीके गावन मन में तरते गार। अत सुंदर बहु चतर सियाने विद्या रसनाचार। मान मोह मेर तेर बिबरजत एहो मार्ग खंडे तार। कहो नानक तिन भव जल तरियले प्रभ कृपा संत संगार। राग देव गंधारी महला पंजवा घर पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मैं पेख्योरी ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा। आना समसर को लागे ढूंढ रहे हम ऊंचा। रहाओ बहु बेअंत बड़ो बाह गाहरो था नहीं अगहूचा। तोल ना तुलिया मोल ना मुलिया कत पाइय मन रूचा। खोज असंखा अनक तपंथा बिन गुर नहीं पहुचा। कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा। देव गंधारी महला पंजवा मैं बहुविध पेख्यो दूजा नाही री को। खंड दीप सब पितर रव्या पूरयो सब लो। रहाओ अगन अगम अगम्मा कवन महिमा मन जीवै सुन सो। चार या शर्म चार ब्रन्ना मुक्त पय सेव तो। गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया दुति गए सुख हो। कहो नानक भव सागर तरिया हर निध पाई।

दुख रोग ना पौ ब्यापै जिनी हर हर त्याया संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मनसा ते आई मिलिया पुरखिया पारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच्छ पुनी हमारी बिहागड़ा महला पंजवां कर दूजा एको अंकार सतनाम गुरप्रसाद वद सुख रह निड़िए प्रे प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसौ सदा पगा पग तूर बांछो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रेरंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी मिलन प्रीतम सच मगा बिनवंत नानक तार कृपा रहो चरण संग लगा मेरी सखी सहेलड़ियो प्रभ कै चरण लगे मन प्रे प्रेम कणा हर की भगत मंगे हर भगत पाईए प्रभ ते आईए जाए मिलिए हर जना मान मोह विकार तजिए अर्प तन तन एहो मना बड पुरख पूर्ण गुण संपूर्ण प्रभ प्रीत हर हर मिल पगे बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए हर नाम नित नित नित जपै हर नार सुहागणे सब रंग माणे रांड ना बैसई प्रभ पुरख चराणे न दुख पावै प्रभ ते आवै तन ते वट पागिया सुख सहज सोवै किल बिख खोवै नाम रस रंग जागिया मिल प्रेम रहना हर नाम गहना प्रे बचन मीठे पाने बिनवंत नानक मने छपाई हर मिले पुरख चराने तित ग्रह सोहलड़े कोड नंदा मानता नू रव रहया प्रभ परमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री तर गोविंद भक्त उदारणो प्रभ कृपा तारी हर मुरारी पै सिंध सागर तारणो जो सरन आवै तिस कंठ लावै एहो बिरद स्वामी संदा बिनवंत नानक हर कंत मिलिया सदा केल करंदा बिहागड़ा महला पंजवा हर चरण सरोवण तै करो निवास मना कर मज्जन हर सरे सब किल विख नास मना कर सदा मज्जन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नासे जन्म मरण ना होए तिस कौ कट्टै जमके फासे मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो बिनवंत नानक धार कृपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बिनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावै संत जना प्रभ का जय करो राम मिल संत गावै खसम पावै हर प्रेम रस रंग पिनिया हर लाभ पाया आप मिटाया मिले चिरी विछुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम्या पारो बिनवंत नानक सदा निर्मलो सच शब्द रुण चुनकारो सुन वड भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी तिसरदै सुमाणी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जसिया प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर ना मुआ कल कले साधुख हरे हर शरण पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मंतन पाणी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत पए किश कहन ना जाई राम जिसते उपजियाड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल महियल एक रव्या न दूजा दृष्टाया बन त्रैण त्रिपावन पूर पूर्ण कीमत कहन ना जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन एह बणत बनाई बिहागड़ा महला पंजवा खोजत संत फिरै प्रप्राण आधारो राम तान तन खीन पया बिन मिलत प्यारे राम प्रमिलो प्यारे मया तारे कर दया लड़ लाई लीजिए देहे नाम अपना जपो स्वामी हर दर्श पे खे जीजिए समर्थ पूर्ण

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरनाराम, तपत न कतै बुझै बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना, अमै सरोवर पियो अमै सरोवरो पियो, हर हर नामा राम संतै संग मिले, जप पूर्ण कामा राम सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण, हर निमुख मनो ना बिसरै, आनंद अंदन सदा साचा सर्वगुण जगदीशर। अगणत ऊच अपार ठाकर अगम जाको धामा, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकी महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचक मिया पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवा शंत अनकाए रातड़िया, वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया, तेरा कोई ना बेली राम कोई ना बेली होए तेरा, सदा पछोता वहे गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदों से दे आवे। तार वार विशुन्ने ने पाप जुड़ते जाम्बा गौने अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूक करै सब जाने जानी राम, लेखा तरम पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी अनक जोन परमाया, महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया, एक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी। बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोहे लोभाणी, बीच ना कोय करे अकिरत कान विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया, पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया। गुण गोविंद गुरमुख ना जपते जपया, तपत थम गल लातिया, काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछता पिया। बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया, तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम। पतत उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम, पतत उदाहरण शरण स्वामी कृपा निदयाला, अंध कूप ते उदर करते सगल कट प्रतपाला। शरण तेरी कट महा बेड़ी एक नाम देह आधारा, बिनवंत नानक कर दे राखो गोविंद दीन दयारा। सो दिन सफल गणिया हर प्रभु मिलाया राम, सब सुख प्रगटिया दुख दूर पराया राम। सुख सहज आनंद विनोद सदही गुण गोपाल नित गाइए, भज साध संगे मिले रंगे बहुत जोन ना ताइए। गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया, बिनवंत नानक आप मिलिया बहुत कतू ना जाया। बिहागड़ा महला पंजवा शंत सुनो बिनंतिया, स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम। दुख हरण कृपा करन मोहन कल कलेसै भंजना, शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना। सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे, अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे। तू समर्थ सदा हम दीन पिखारी राम,
माया मोहे मगन कट लिहो मुरारी राम। लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दुख कमावने, अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने। कार्य अनुग्रह पतत पावन बहुजोन प्रमते हारी, बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम, पल है अकृत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम। अगाध बोध्या पार करते मोहे नीच कछू ना जाना, रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना। त्याग चलती महा चंचल दोह कर कर जोरी, नानक सरण समरथ स्वामी पैज रख मोरी। जा ते विछड़िया तिन आप मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम। गुण गाए गोविंद सदा नीके कल्याण में प्रगट पए, सेजा सुहावी संग प्रभ कै अपने प्रभ कर ले। छोड़ चिंत अचिंत होए बहुत दुख ना पाया, नानक दर्श पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया। बिहागड़ा महला पंजवा शंत बोल सो तरमीड़िया, मोन का तारी राम तू नेत्री देख चलिया। माया ब्योहारी राम संग तेरा कश ना चले, बिना गोविंद नामा देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा। पुत्र कलतरना संग सोबा हस्त कोर विकारी, बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी। राजन क्यों सोया तू नींद परे, जागत कत नाही राम। माया झूठ रुदन केते बिललाही राम, बिललाहे केते महामोहन बिन नाम हर के सुख नहीं। सहस सियाणप उपाव था के जय पाव तै जाई, आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र कट कट आही। बिनवंत नानक जिन साध संगम से पत सेती कर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक स्याणे राम। सर पर विछड़ना मोहे पछताणे राम, हर चंदौरी देख पूला कहां अस्थित पाई है। बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है। हाँ हाँ करतना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने, बिनवंत नानक बिन नाम हर के केतिया पछताने। तार अनुग्रह अपना कर लीना राम, पूजा गह काढ़ लियो साधु संग दीना राम। साध संगम हरिया राधे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सो दान किरिया संग तेरे से चले। रसना अराधा एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर मिलाए सो सर्व गुण परबीना। बिहागड़े की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा गुर सेवा ते सुख पाई है, होर थे सुख ना पाल। गुर कै शब्द मन भेदी है सदा वसै हर नाल। नानक नाम तिन्ना कौ मिलै जिन हर वेखै नजर निहाल। महला तीजा सिफत खजाना बख्स है जिस बख्सै सो खर्चै खाए, सतगुर बिन हथ ना आवई सब थके कर्म कुमाए। नानक मनमुख जगत तनहीन है, अगै भुखा के खाए पौड़ी सब तेरी।

जो हर प्रभाव है सो थी सब करन तेरा कराया सालाहे हो हर सबना ते वड्डा जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जग जीता सब कोए नामे कार्ज सिद्ध है सहजे होए सो होए।

का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्तै अंध, महला चौथा। अंधे चानन तां थीऐ जां सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज, नानक सरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै, तदों पुछना सेवक बिया, तदों क्या को लेवै क्या को देवै, जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै, दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करै सोथिया। सलोक महला तीजा, गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा, अंदन सहज प्यार, सदा आनंद गावै गुण साचे, अर्ध उर्ध उरतार। अंतर प्रीतम वसिया, तुर कर्म लिखिया करतार, नानकिया मिलाया नू आपे कृपा तार। महला तीजा कहे।

गोवग्या जाए, ज्ञानी होए सो चेतन होए, अज्ञानी अंध कमाए। नानक एथे कमावे सो मिले, अगे पाए जाए महला तीजा। तोर खसमै का हुकुम पया, विन सतगुर चेत्या न जाए। सतगुर मिलया अंतर रव रहया, सदा रहया लिव लाए। दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए। जन्म मरण का पहो गया, जीवन पदवी पाए। नानक एहो मर्तबा तिसनो दे, जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी। आपे दाना बीनिया, आपे प्रधाना, आपे रूप दिखालदा, आपे लाए ध्याना। आपे मोनी वर्तदा, आपे कथे ज्ञाना। कौड़ा किसे न लगई, सब ना ही पहना। उस्तत बरना सकिए, ससत कुरबाना। श्लोक महला पहला। कली अंदर नानका, जिन्ना दा अवतार। पुत जनूरा ती जनूरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार। महला पहला। हिंदू मूले पूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही। अंधे गुंगे अंधे अंधार, पाथर ले पूजे मुद गवार। ओहे जे आप डुबे, तुम कहां तरन हार पौड़ी। सब केहो तेरे वस है, तुम सच्चा साहो। भगत रते रंग एक कै, पूरा वे साहो। अमृत भोजन नाम हर, राज राज जन खाहो। सब पदार्थ पाईयन सिमरन सच लाहो। संत प्यारे पार ब्रह्म, नानक हर अगमागा हो। श्लोक महला तीजा। सब किश हुक्मे आमदा, सब किश हुक्मे जाए। जे को मूर्ख आपो जाना, अंधा अंध कमाए। नानक हुक्म को गुरमुख बुझै, जिसनो कृपा करे रजाए। महला तीजा। सो जोगी जुग सो पाए, जिसनो गुरमुख नाम प्राप्त होए। तिस जोगी की नगरी सब को वसै, पेखी जोग ना होए। नानक ऐसा विरला को जोगी, जिस कट प्रगट होए।

नानक गरीब राखो हर मेरे वढ़ंस महला चौथा। मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी, हाँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभाणी, हाँ क्यों कर पिर कौ मिलो एयाणी। जो पिर पावे सा सुहागण, साई पिर कौ मिले सियाणी रहाओ। मैं विच दोस हाँ क्यों कर पिर पावा, तेरे अनेक प्यारे हाँ पिर चित ना आवा। जिन पिर रावे आ सा भली सुहागण, से मैं गुण नाही हाँ क्या करी दुहागण। नित सुहागण सदा।

जल थल महियल रहया भरपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण परयो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वड़दाता अंतर जामी। सब मै रावया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। चरण कमल हृदय उतारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर अमृत पीजै। ना जियो मरै ना कबहू चीजै, वडभागी गुरपुरा पाई है। गुर कृपा ते प्रभु त्याई है रहाओ। रतन जवाहर हर माणक लाला, सिमर सिमर प्रपय निहाला। जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभु।

जह चित आवै सो थान सुहावा, जित वेला विसरै ता लागै हवा। तेरे जी तू सधी साथी, संसार सागर ते कढ़ दे हाथी। आवन जाना तुम ही किया, जिस तू राखै तिस दुख ना थिया। तू एको साहिब अवर ना होर, बिनों करै नानक कर जोर। बड़हंस महला पंजवा, तू जाना है ता कोई जाने, तेरा दिया नाम खाने। तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाओ, तुझे आपे कारणू आपे करना, हुक्मे जमण हुक्मे मरना। नाम तेरा मंत्र आधारी, नानक दास बख्शीश तुम्हारी। वडहंस

सच कमाई है, जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है, लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है, जिथे जाए बहिया भला कही है, सुरत शब्द लिखाई है, काया कूड़ बिगाड़ काहे नाई है।

आए वसया जामते फरमाया नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया ता मैं कहया कहण जा तुझे कहाया वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आवना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना जो दे सहना मने कहना आख या आख नाही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना साबियो पाईया ने आप आपे नजर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे किश पुन दान अनेक।

नदर करै ता सच पछाणा, साचो पछाणा ताम तेरा, जाम आप बुझावै दुख भूख संसार किए सासा हो चुकावै। बिनवंत नानक जाय सहसा, बुझै गुर विचारा, वड्डा साहिब है आप अलख अपारा।

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेवने अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मनमुख माया मोहे व्यापे दुख संतापे दूजे पत गवाई हौ मैं मार सच शब्द समाने सच रते अधकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेवने अपना से जनवड़ पागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत नेह चलियत गूड़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया एक कामन हितकारी माया मोहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवै गुरे अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजीऐ सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुण मैं गुणी समाई राम गुण मैं गुणी समा

होई, पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणा, बिन बूझे सुख ना होई। आवन जाना कदे ना चूकै, माया मोह प्यारा, माया मोह सब दुख है, खोटा यो वापारा। खोटे खरे सब परखियानु, ते सच्चा कै दरबारा राम। खोटे दरगह सुटियन, उबे करन पुकारा राम। उबे करन पुकारा मुद गवारा, मनमुख जन्म गवाया। बिखिया माया जिन जगत भुलाया, साचा नाम ना पाया। मनमुख संता नाल वैर कर, दुख हटे संसारा। खोटे खरे परखियन, ते सच्चा दरबारा राम। आप करे किसे आखिया, होर करना छूना जाई राम। जित पावै तित लाए सी, जो तिसदी वड्याई राम। जो तिसदी वड्याई आप कराई, वरियाम ना फुसी कोई। जग जीवन दाता कर्म विधाता, आपे बख्शे सोई। गुर प्रसादी आप गवाई है, नानक नाम पत पाई। आप करे किसे आखिया, होर करना किछु ना जाई। वड़हंस महला तीजा, सच्चा सौदा हर नाम है, सच्चा वापारा राम। गुरमती हर नाम पाई है, अतमोल अफारा राम। अतमोल अफारा सच वापारा, सच वापार लगे वडभागी। अंतर बाहर भगती राते, सच नाम लिवलागी। नदर करे सोई सच पाए, गुर कै शब्द विचारा। नानक नाम रते तिन्ही सुख पाया, साचे के वापारा। हमें माया मैल है, माया मैल पुरी जय राम। गुरमति मन निर्मला, रसना हरस पी जय राम। रसना हरस पी जय अंतर पी जय, साच शब्द बिचारी। अंतर खूहटा अमृत भरिया, शब्दे काढ़ पी है पनिहारी। जिस नजर करे सोई सच लागै, रसना राम रिविजय। नानक नाम रते से निर्मल, होर हमें मैल परिजय। पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पे करै पुकारा राम। माया मोह अंतर मन लागै, माया

शरण आई राम अरदास करी गुर पूरे आगे। रख लेवो देहो बढ़ाई राम रख लेवो शरण आई हर नाम बढ़ाई। तो जेवड़े अवरना दाता सेवा लागे सेवड़ भागे जुजगु एको जाता। जत सत संयम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवै हर शरणाई। जो हर मत दे साई उपजै होर मत न काई राम। अंतर बाहर एक तू आपे दे बुझाई राम। आपे देह बुझाई अवरना भाई गुरमुख हर रचा खिया। दर सचै सदा है साचा सचै शब्द सुपाखिया। घर मैं निज कर पाया सतगुर दे वडाई। नानक जो नाम रते सही महल पायन मत प्रवान सच साई। वडांस महला चौथा शंत एको अंकार सतगुर प्रसाद। मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम। हर हर हर हर नाम मेरा मन वसाई राम। हर हर नाम मेरा मन वसाई सब दुख विसार नहारा। वडभागी गुर दर्शन पाया तन तन सतगुरु हमारा। उठत बैठत सतगुर सेवो जित सेवया सांत पाई। मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई। हो जीवा सतगुर देख सर से राम। हर नाम दृढ़ाए जप हर हर नाम विगसे राम। जप हर हर नाम कमल परगासे हर नाम नवंग निद पाई। हो मैं रोग गया दुख लाथा हर सह समाध लगाई। हर नाम वडाई सतगुर ते पाई। सुख सतगुर देव मन परसे हो जीवा सतगुर देख सर से। कोई आन मिलावे मेरा सतगुर पूरा राम। हाँ मन तन देवा तिस काट शरीरा राम। हाँ मन तन काट काट तिस देई जो सतगुर वचन सुनाए। मेरा मन बैराग भया बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए। हर हर कृपा करो सुखदाते देहो सतगुर चरण हम धूरा। कोई आन मिलावै मेरा सतगुर पूरा। गुर जेवड़ दाता मैं अवर न कोई राम। हर दानो हर दान देवै हर पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम जिन्नी आराध्या तिनका दुख परम पौ पागा। सेवक पाए मिले वडभागी जिन हर जिन गुर चरनी मन लागा। कहो नानक हरिया मिलाए मिल सतगुर पुरख सुख होई। गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई। वडहंस महला चौथा हाँ गुरबिन खरी निमाणी राम। जग जीवन दाता गुरमेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम समाणी जप हर हर नाम ते आया। जिस कारण हाँ टूंडेंदी सो सज्जन हर कर पाया। एक दृढ़ हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी। हाँ गुरबिन खरी निमाणी। जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मिलाए राम। तिन चरण सिरेवै हम लागै तिन कै पाए राम। हर हर चरण सिरेवै तिन के जिन सतगुर पुरख प्रभ ते आया। तू वडदाता अंतर जामी मेरी सरदा पूए हर राया। गुरसिख मेल मेरी सरदा पूरी आंदन राम गुण गाए। जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मिलाए। हाँ वारी गुरसिख मीत प्यारे राम। हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नामा दारू राम। हर हर नाम मेरा प्राण सखाई तिस बिन कड़ी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता गुरमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए हर आपे आप सवारे। हाँ वारी गुरसिख मीत प्यारे।
हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम। हरे आपे मेले करे सोई राम। जो हर प्रभु पावे सोई होवे अवर न करना जाई। बहुत सियाणप लया न जाई कर था के सब चतराई। गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर न कोई। हरे आपे पुरख निरंजन सोई। वडहंस महला चौथा। हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम। तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम। गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान देर बिनासे। सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास गिरासे। जिन कौ हर प्रभु कृपा तारी ते सतगुर सेवा लाया। हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया। मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रहन न जाई राम। हर नाम देवे मेरा अंत सिखाई राम। हर हर नाम मेरा अंत सिखाई गुर सतगुर नाम दृढ़ाया। जिथे पुत्र कलत्र कोई बेली नाही तिथे हर हर नाम छड़ाया। तन तन सतगुर पुरख निरंजन जित मिल हर

हर मने मीठा प्रभु तुठा अम्योग उठा सुख पय दुख नाश परम विनाश तंते जप जगदीश ईसै जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तन खनिए मन्या जिन कट मेरा हर प्रभु उठा सलोक जो लोड़ींदे राम सेवक सही कंडिया नानक जाने सत साई संतना बाहरा शंत मिल जल जलै खटाना राम संग ज्योति ज्योत मिलाना राम समाए पूर्ण पुरख करते आपे आपे जानी है तह सुन सहि समाध लागी एक एक वखाणी है आप भुगता आप मुगता आप आप वखाना नानक भ्रम पै गुण बिनासे मिल जल जलै खटाना वडहंस महला पंजवा प्रभ करण कारण समरथा राम रख जगत सगल दे हथा राम समरथ सरना जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हाँ कुरबाणी दास तेरे जिन्नी एक पछाता वर्ण चिहन न जाए लखिया कथन ते अकथा बिनवंत नानक सुनो बिनती प्रभ करण कारण समरथा एह जी तेरे तू करता राम प्रभ दुख दर्द प्रम हरता राम प्रम दुख दर्द निवार खिन मैं रख ले हो दीन दयाला मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो सरने आवै गुण निधान पावै सो बहुत जन्म ना मरता बिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता आठ पैर हर त्याईय राम मन इच्छा फल पाईय राम मन इच्छ पाईय प्रभ त्याईय मिटै जमके त्रासा गोविंद गाया सा संगाया पई पूर्ण आसा तज मान मोह विकार सगले प्रभु कै मन पाई है बिनवंत नानक दिन सरैणी सदा हर हर त्याई है दर वाजे अनहद वाजे राम घट घट हर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा बिराजे अगमा गोचरी उच्चा गुण बेअंत किश कहण न जाई कोय ना सकै पहुचा आप यो पाए आप प्रतपाले जी जंत सब साजे बिनवंत नानक सुखनाम भगती दर वजह अनहद वाजे राग वढ़ंस महला पहला घर पंजवा अलाहणिया एको अंकार सतगुर प्रसाद तन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जगतंद लाया मोहलत पुन्नी पाई परी जानी अड़ा कत चलाया जानी कत चलाया लिखिया आया रुन्ने वीर सबाए काया हंस थिया वे छोड़ा जांदन पुन्ने मेरी माए जेहा लिखिया तेहा पाया जेहा प्रभु कमाया तन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जगत अंदर लाया साहिब सिमरो मेरे पाई हो सबना हो पयाना ऐथे तंदा कूड़ा चार दिहाया गै सर पर जाना आगै सर पर जाना जो मेहमाना काहे गर्भ कीजै जित सेवे दरगै सुख पाईऐ नाम तसै का लीजै आगै हुक्म न चलै मूले सिर सिर क्या विहाना साहिब सिमरो मेरे पाई हो सब ना हो पयाना जो तिस पावै समरथ सोथीऐ हीलड़ा हो संसारो जल थल महियल रव रहया साचड़ा सृजनहारो साचा सृजन हारो अलख्या पारो ताका अंत ना पाया आया तिनका सबल भया है एक मन जिनी तिहाया टाहे टाहे ओ सारे आपे हुक्म सवारन हारो जो तिस पावै समरथ सोथी है हिलड़ा ओ संसारो नानक रुना बाबा जानिया जे रोवै लाए प्यारो वाले वे कारण बाबा रोई है रोवन सगल बेकारो रोवण सगल बेकारो गाफल संसारो माया कारण रोवै चंगा मंदा के सूजै नाही ओ तन एवै खोवै ऐथे आया सब को जासी कूड़ करो अहंकारो नानक रुना बाबा जानिए जे रोवै लाए प्यारो
ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ, ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ। ਰੋਵੈ ਬਿਰਹਾ ਤਨ ਕਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਪੰਥ ਨਿਹਾਲ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਪੇ ਉਥੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤਿਨਹੀ ਲੀਆ, ਹੋਵਾ ਤਸੈ ਕਾ ਪਾਣਾ। ਜੋ ਤਿਨ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇਹਾ। ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ, ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ। ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਐਸਾ ਕੋਏ। ਸੇਵੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ, ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੈ ਹੋਏ। ਪੰਥ ਸੁਹੇਲੈ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਆਗੈ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ। ਭੇਟੈ ਸਿਉਂ ਜਾਵੋ।

मरण मुन सासुरिया हक है, जो होए मरण परवानो, सूरे से ही आज्ञा आखी है, दरगह पावे साची मानो, दरगह मान पावे पत स्यों जावे, आगे दुख न लागे, कर एक ते आवे ता फल पावे, जित सेवे पहु पागे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरे परवानो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है ओ संसारो, कीता वेखे साहब अपना, कुदरत करे बिचारो, कुदरत बिचारे तारण तारे, जिन किया सो जाने, आपे वेखे आपे बूझे, आपे हुक्म पछाणे, जिन किश किया सोई जाने, ताका रूपया पारो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है एहो संसारो, वडहंस महला पहला दखनी, सच सरंदा सच्चा जानिए, सचड़ा पर्वत गारो, जिन आपी ने आप साजिया, सचड़ा लखिया पारो, दोए पुड़ जोड़ विछोड़ियान, गुरबिन कोरिया दारो, सूरज चंद सिरजियान, अहनिस चलत विचारो, सचड़ा साहेब सच तू सचड़ा देह प्यारो रहाओ, तुद सिर जिनी मेदनी, तुद सिर जी मेदनी, दुख सुख देव नहारो, नारी पुरख सिरजिया बिख माया मोह प्यारो, खानी बाणी तेरिया देह जिया आधारो, कुदरत तख्त रचाया सचन विण नहारो, आवागमन सिरजिया तू थिर करण हारो, जमन मरना आए गया बदक जियो बिकारो, पूंडड़े नाम विसारिया बूढ़ड़े क्या तिस्चारो, गुण छोड़ बिख लद्या अवगुण कावण जारो, सदड़े आए तना जानिया हुक्म सचे करतारो, नारी पुरख विछुनिया विछड़िया मिलन हारो, रूप ना जाने सोहनिया हुक्म बदी सरकारो, बालक बिरत ना जाननी तो नहेत प्यारो, नौदर ठाके हुक्म सचै हंस गया गहनारे, सा तन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया, मृत कड़ा अंगनड़े बारे, सुरत मुई मर माइये महल रुनी दरबारे, रवो कंत महलियो सच्चे के गुण सारे, जल मल जाली ना वालिया कपड़ पटिया बारे, वाजे वजे सच्ची बाणिया पंच मोए मन मारे, जानी विछुनड़े मेरा मरण भया त्रिग जीवन संसारे, जीवत मरे सो जानिए फिर सचड़ा हित प्यारे, तुसी रोवो रोवन आई हो झूठ मुठी संसारे, हाउ मुठड़ी तंदे तावनिया फिर छोड़ियाड़ी विदन कारे, कर कर कंत महेलिया रूड़े हित प्यारे, मैं फिर सच सलाहना हाउ रह सियाड़िए नाम पतारे, गुर मिलिया वेस पलटिया सा तन सच सिंगारो, आवो मिलो सहेलियो सिमरो सिरजन हारो, बैयर नाम सुहागणी सच सवारन हारो, गावो गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो, वडहंस महला पहला, जिन जग सिरज समाया सो साहेब कुदरत जानो वा, सचड़ा दूर ना पाली है कटकट शब्द पछाणो वा, सच शब्द पछाणो दूर ना जानो, जिन एह रचना राची नाम ते आए ता सुख पाए, बिन नामे बिड़काची जिन थापी बिद जाने सोई, क्या को कह वखाणो, जिन जग थाप वताया जालो सो साहिब परवानो, बाबा आया है उठ चलना अद पंदे है संसारो वा, सिर सिर सचड़े लिखिया दुख सुख प्रभ विचारो वा, दुख सुख दिया जेहा किया सो निभ जी नाले, जेहे कर्म कराए करता दूजी कार ना पाले, आप निरालम तंदे बांधी कर हुक्म छडावन हारो, अज कल कर दिया काल बया पै दूजे पाए विकारो, जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़े अंध गवारो वा, ना जल लेप तो लाइया ना भोजन प्रकारो वा,
ਭੋਜਨ ਪਾਉ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾਪੜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਉਬੋ ਨਾ ਦਿਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਜਮਨ ਨਾਹੀ ਪਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਪਾਰੋ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕੋ

ज्ञान में होनी मुठी, बिन शब्द पिर ना पायो जन्म गवायो, रोवै उगणे आरी झूठी। पिर जग जीवन किसनो रोई है, रोवै कंत विसारे, सब जग आपो पायो नो आमन जान संसारे। सो पिर सच्चा सद ही साचा है, ना यो मरे ना जाए, भूली फिरे तन एणिया, रंड बैठी दूजे पाए, रंड बैठी दूजे पाए, माया मोहे दुख पाए, आव कटे तन शीजे। जो किश आया सब किश जासी, दुख लागा पाए दूजे, जमकाल ना सूजे, माया जग लूजे, लब लोभ चित लाए। सो पर साचा सद ही साचा, ना एहो मरे ना जाए। एक रोवे पिरे विशुनिया, अंधी ना जाने पिर नाले, गुर प्रसादी साचा पिर मिले, अंतर सदा समाले, पिर अंतर समाले सदा है नाले, मनमुख जाता दूरे। एहो तन रुले रुलाया, काम ना आया, जिन खसम ना जाता हदूरे। नानक सातन मिले मिलाई, पिर अंतर सदा समाले, एक रोवे परे विशुनिया, अंधी ना जाने पिर है नाले। वडहंस महला तीजा। रोवे परे विशुनिया, मैं पिर सचड़ा है सदा नाले, जिन्नी चलन सही जाने आ, सतगुर सेवै नाम समाले। सदा नाम समाले, सतगुर है नाले, सतगुर सेव सुख पाया, सबदे काल मार साची वरतार, फिर आवन जान ना होया। सच्चा साहेब सच्ची नाई, वेखे नजर निहाले, रोवे पिरो विशुनिया, मैं पिर सचड़ा है सदा नाले। प्रभ मेरा साहेब शब्द ऊंचा है, के मिला प्रीतम प्यारे, सतगुर मिली ता सहज मिली, पिर राखिया उरतारे, सदा उरतारे नेहो नाल प्यारे, सतगुर ते पिर दिसै। माया मोह का कच्चा चोला, तित पैदै पग खिसै, पिर रंग नहीं पिर रंग राता, सो सच्चा चोला, तित पैदै तिखा निवारे। पर मेरा साहेब शब्द ऊंचा है, क्यों मिला प्रीतम प्यारे। मैं प्रभ सच पछाणिया, होर भूली अवगणियारे, मैं सदा रावे पिर अपना, सचड़ै शब्द विचारे। सच्चे शब्द विचारे रंग राती नारे, मेर सतगुर प्रीतम पाया, अंतर रंग राती सहजे माती, गया दुश्मन दुख सवाया। अपने गुर कहो तन मन दीजै, ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे। मैं फिर सच पछाणिया, होर भूली अवगणियारे, सचड़ा आप जगत्यो पाया, गुर बिन कोर अंधारो, आप मिलाए आप मिलाए, आपे दे प्यारो, आपे दे प्यारो।

नानक नाम रताय करंगी शब्द सवारण हारा सोरठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पालो खिन विसरै तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड मुगद सदा से भाई गुर कै शब्द परगासा हर जियो तुम्हें आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटों वारिया सद ही तेरे नाम विटों बल जाई रहाओ हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले भाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होवा हर वसिया मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर स्यो रहया समाई शब्द ना जाने से अन्ने बोले से किते आए संसारा हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम्मै वारो वारा बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने मनमुख मुग्ध गुबारा आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई तिस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै भाई करता करे सो होई नानक नाम वसिया मन अंतर भाई अवर ना दूजा कोई सोरठ महला तीजा गुरमुख भगत करै प्रभु पावै अंदर नाम वखाणे भगतां की सार करै आप राखै जो तेरे मन पाणे तू गुणदाता शब्द पछाता गुण कै गुणी समाणे मन मेरे हर जियो सदा समाल अंत काल तेरा बेली होवै सदा निभै तेरे नाल रहाओ दुष्ट चौकड़ी सदा कूड़ कमावै ना बूझै विचारे निंदा दुष्टि ते किन फल पाया हर नाक्स नखै बिदारे प्रहलाद जन सद हर गुण गावै हर जियो ले उबारे आप सकाओ बहु भला कर जाणै मनमुख मत ना काई साधु जन की निंदा व्यापे जासन जन्म गवाई राम नाम कदे चेतै नाही अंत गए पछताई सफल जन्म भगता का कीता गुर सेवा आप लाए सबदे राते सहजे माते अंदन हर गुण गाए नानक दास कह बेनंती हों लागा तिन कह पाए सोरठ महला तीजा सो सिख सखा बंद पह पाई जे गुर के पाने विच आवै अपने पाने जो चले पाई विछड़ चोटां खावै बिन सतगुर सो कदे ना पावै पाई फिर पछोतावै हर के दास सुहेले पाई जन्म जन्म के किल बिख दो काटे आपे मेल मिलाई रहाओ एहो कुटुंब सब जी के बंधन पाई परम पुला संसारा बिन गुर बंधन टूटै नाही गुरमुख मुख द्वारा कर्म करै गुर शब्द ना पछाणै मर जन्मै वारो वारा हौ मेरा जग पलच रहया पाई कोई न किसी केरा गुरमुख महल पायन गुण गावन निज कर होए बसेरा ऐथै बुझै सो आप पछाणै हर प्रभ है तिसकेरा सतगुर सदा दयाल है पाई मिण भागा क्या पाई है एक नदर कर वेखै सब उपर जेहा पाओ तेहा फल पाई है नानक नाम वसै मन अंतर विचों आप गवाई है सोरठ महला तीजा चौथके सच्ची भगत सतगुर ते होवै सच्ची हिरदय बाणी सतगुर सेवे सदा सुख पाए हम मैं शब्द समाणी बिन गुर साचे भगत ना होवी होर भूली फिरै आणी मनमुख फिरै सदा दुख पावै डू मोए विण पाणी पाई रे सदा रहो सरनाई अपनी नजर करे पत राखै हर नामो दे वडियाई रहाओ पूरे गुर ते आप पछाता शब्द सच्चै विचारा
ਹਿਰਦੈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸਦ ਵਸਿਆ, ਤਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰਾ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ ਜੋ ਜੁਗ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀ, ਨਾਉ ਮੀਠਾ ਮਨੈ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਛਾਤਾ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਗ ਆਇਆ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ ਸਦਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣੀ ਅਗਾਇਆ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਆ ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਕੋਈ ਨਾ ਬੂਜੈ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਮਗ ਪਛਾਣੈ ਹਰ ਰਸ ਰਸਨ ਰਸਾਈ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲੈ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਨ ਦਰ ਸਾਚੈ ਪਤ ਪਾਈ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੋ ਤੁਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਪਈ ਭਾਈ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਬੂਝ ਪਾਏ ਸੋ ਗੁਰੂ।

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सहिसमाणी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा किलबिख काटणु हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे। गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसिया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुख अंदा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हौमै बंधन कमाए जमन मरन सिर उप।

जानै। राम नाम सुख होई, त्रै गुण सब तेरे तू आपे करता, जो तू करै सो होई, नानक राम नाम निस्तारा, सबदे हम मैं खोई। सोरठ महला।

बिखाई माधवे ऐसी देह बुझाई सेवो साध गहो उठ चरना न बिसरे मुहत छसाई रहाओ। अरे मन मुगद्या चेत चंचल चेत तुम ऐसी हृदय ना आई प्राण पत त्याग अंतू रचिया उर्ज्यो संग बैराई। सोग ना व्यापै आप ना थापै साध संगत बुद्ध पाई सागत का बकना इउ जानो जैसे पवन चुलाई। कोट परादा शादे ओहे मनो कहना कछु ना जाई जन नानक दीन सरने आयो प्रभु सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा पुत्र कलतर लोक ग्रह बनता माया सन बंदे ही अंत की बार को खरा ना होसी सब मिथ्या असने ही रे नर काहे पपोरो देही।

पंचन हारा दूजा अपने साहेब का परवासा अपने सतगुर कै बलिहार आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारे रहाओ अंतर जामी करण हारा सोई खसम हमारा निरपो पै गुर चरणी लागे एक राम नाम आधारा सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है पी हो बनहारा कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा वड्डी वड्याई अचर जसोबा कारज आया रासे नानक कौ गुरपुरा भेट्यो सगले दुख बिनासे सोरठ महला पंजवा सुखिए कौ पेख सब सुखिया रोगी कै भाण सब रोगी करण करावन हार स्वामी अपना हाथ संजोगी।

संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी। हाँ मैं रोग जाका मन व्यापत ओह जन्म मरे बिललाती। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया ता कौ सर्व परगासा। अज्ञान अंधेरै सूझस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने नानक एहो सुख मांगै। जह कीर्तन तेरा साधु गावै तह मेरा मन लागै। सोरठ महला पंजवा। तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्व कुशल तब थिया। संतन बिनु अवर ना दाता बिया जो जो शरण पर साधु की सो पार गरामी किया रहाओ। कोट पराध मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाई है। इहां सुखिया गै मुख उजल जन का संग वड भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केतक उपमा कही है। अगमा गोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी

मुकत भुगत जुगत सच पाई है, सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवै। पूर्ण पुरख विधाता श्रवणी सुनिए रसना गाइय, हृदय त्याई सोई करण कारण समर्थ स्वामी, जाते बिरथा ना कोई। वड्डे भाग रतन जन्म पाया, करो कृपा कृपाला, साध संग नानक गुण गावै, सिमरै सदा गोपाला। सोरठ महला पंजवा, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन पै आरोगा, कोट बिगल नाथे प्रभ सरना, प्रगटे पले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुपाखिया, गावो सुनो पढ़ो नित पाई, गुरपूरै तू राखिया रहाओ। साचा साहेब अमित वडाई, भगत वछल दयाला, संतां की पैज रखदा आया। आद बिरद प्रतपाला, हरे अमृत नाम भोजन नित पुंचो, सर्व वेला मुख पावो। जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोबिंद नित गावो, सुनी अरदास स्वामी मेरा। सर्व कला बन आई, प्रगट पई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा, कर दूजा चौपदे एको अंकार, सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुरहाई, सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी। हर दर्शन देहो दिखाई, सुन मीता तूरी को बल जाई, एह मन तेरा पाई रहाओ। पाव मिलोवा मल मल तोवा, एह मन तैकू देसा, सुन मीता हों तेरी सरनाई आया। प्रभ मिलो देहो उपदेसा, मान ना कीजै शरण परिजै, करै सो पला मनाइयै। सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै, इउं दर्शन हर जियो पाइयै। भयो अनुग्रहो प्रसाद संतन कै, हर नामा है मीठा, जन नानक कौ गुर कृपा धारी, सब अकुल निरंजन डीठा। सोरठ महला पंजवा, कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे, प्रतपाले नित सार संभाले, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। हर आराधना जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे, हर जियो नाम परयो रामदास रहाओ। दीन दयाल कृपाल सुख सागर, सर्व घटा पर पूरी रे, पेखत सुन तो सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हर बेअंत मित कर वरनाओ, क्या जाना होए कैसो रे, करो बेनती सतगुरे अपने, मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट परादी तरिया रे, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना भरिया रे। सोरठ महला पंजवा, जिन्ना बात को बहुत अंदेसरो, ते मिटे सब गया, सह सैन यार सुख मन नारी, ऊंद कमल बिगसया। देखो अचरज पाया, जे ठाकर कहो सुनते अगाध बोध, सोरदय गुरदया रहाओ। जोए दूत मोहे बहुत संतावत, ते भयानक भया, करै बेनती राग ठाकर ते, हम तेरी शरणया। जह पंडार

एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम वा भगत भंडार गुरु नानक सौपे फिर लेखा मूल नाम लिया। सोरठ महला पंजवां चरण कमल स्यों जा का मन लीना से जन तृप्त अगाई गुणिया मोल जिस हृदय ना वसया ते नर तृष्ण त्रिखाई। हरिया राधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ। जिह जन ओट कही प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जिह नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गरने। जिह गुरमान प्रभु लिव लाई ते महा आनंद रस करया जिह प्रभु बिसार गुरते बेमुखाई ते नरक कोर मैं परया। जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकड़ी संतन की हृदय पय मगन चरनारा। सोरठ महला।

हर जन को ही सुहावे पेख निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कह लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मैं विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पावै जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावै जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवां हम मैले तुम यूजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकर देसा रहाओ तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेरवाना तुम करो भला हम पलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम एह हवाला राख संतन कै पाचे सोरठ महला पंजवां कर दूजा मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे पावक सागर

कीते कहो मेरे सम्मान है करनहार तरन जान है तू दाता मांगन कहो सगली दान दे प्रभ पान है खिन मैं अवर खिन मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूढ़ो गूढ़ो गहर गंभीर ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना संत हमारी ओढ़ सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखिया पाई एह मन तेरा पाई रहाओ संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों ब्योहारा संतन स्यों हम लाहा खाटिया हर भगत भरे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहां करै गो जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भय सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर स्यो मन मान्या रंग रते बिस्मादे सोरठ महला पंजवां

गुरपुरै दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर्विद जाने ता की कर मन सेवा। कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद मुद्र दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नाम वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवा मृतक का उपायो तन सासा। बिशरत यान मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते। हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई। ताकि कीमत कहन न जाई रहाओ। दुख सो काटायो डेरा अंध मंगल बिश्रामा। मन बाँथ

जो कुछ करे सोई सोई जाने, रह न कछु शानी रहाओ। जेहबा स्वाद लोभ मद माताओ, उपजे अनक बेकारा। बहुत जोन भरमत दुख पाया, हमें बंधन के पारा। दे के वाड़ अनक पड़दे मैं, परदारा संग फाके। चित्र गुबत जब लेखा मांगे, तब कौन पड़दा तेरा टक है। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन, तुम बिन ओटना काई। काढ़ लेहो संसार सागर मैं, नानक प्रभ शरणाई। सोरठ महला पंजवा, पार ब्रह्म होवा सहाई। कथा कीर्तन सुखदाई, गुरपूरे की बाणी। जप अंत करो नित प्राणी, हर साचा सिमरो भाई। साध संग सदा सुख पाई है, हर बिसरना कब हूं जाई रहाओ। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवै। जिसनों कर्म प्राप्त होवै, सो जन निर्मल थीवै। बिघ्न विनाशन सब दुख नासन, गुर चरणी मन लागा। गुण गावते अच्युत अविनाशी, अंधन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कथा सुहेली। आदि अंत मद नानक कहो, सो प्रभ हो आबेली। सोरठ महला पंजवा, पंच पदा। बिनसै मोह मेरा यार तेरा, बिनसै अपनी तारी। संतो यह बतावो कारी, जित हो मैं गर्भ निवारी रहाओ। सर्वभूत पार ब्रह्म कर मान्या, होवा सगल रे नारी। पेख्यो प्रभ जी अपने संगे, चूके पीत परमारी। औखद नाम निर्मल जल अमृत, पाइये गुरु द्वारी। कहो नानक जिस मस्तक लिखिया, तिस गुर मिल रोग बेदारी। सोरठ महला पंजवा, कर दूजा दो पदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मैं बैसंतर, सगल दूध मैं किया। ऊंच नीच मैं ज्योत समाणी, कट कट माधव जिया। संताओ कट कट रया समायो, पूर्ण पूर्ण रहो सर्व मैं। जल थल रमैया आहयो रहाओ। गुण निदान नानक जस गावै, सतगुर भरम चुकायो। सर्ब निवासी सदा अलेपा, समय रया समायो। सोरठ महला पंजवा, जाके सिमरन होए आनंदा। बिनसै जन मरण पै दुखी, चार पदार्थ नव निध पावै। बहुर ना तृष्णा पुखी, जा को नाम लै तू सुखी। सास सास त्यावो ठाकर कहो, मन तन जिया रे मुखी रहाओ। सांत पावै होवै मन शीतल, अग्न ना अंतर दुखी। गुर नानक कहो प्रभु दिखाया, जल थाल तेरे पवन रुखी। सोरठ महला पंजवा।

जी जंत प्रभ सगले उदारे दर्शन देखण हारे गुरपुरे की अचरज वड़ियाई नानक सदबलिहारे। सोरठ महला पंजवां संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलश विनोद आनंद सुख माण। खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोयथ। चढ़ लंगो बिख संसार रहाओ पय कृपाल पूर्ण अबनासी आपै कीनी सार। पेख पेख नानक बिखसानो नानक नाही सुमार। सोरठ महला पंजवां गुरपुरै अपनी कल तारी सब घट उपजी दया आपे मिल वडाई किन्नी कुशल खेम सब भया। सतगुर पूरा मेरे नाल पार।

जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ अवतराया, कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया, होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई, सास सास प्रभ त्याई है हर मंगल नानक गाई है, सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा, पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी, हर की प्रेम भगत मन लीना, नित बाजे अनहत बीना रहाओ, हर चरण की ओट सतानी सब चूकी कान लुकानी, जग जीवन दाता पाया हर रसक रसक गुण गाया, प्रभ काटिया जमका फासा मन पूर्ण होई आसा, जै पेखा तै सोई हर प्रभ बिन अवर ना कोई, कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे, निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया, सोरठ महला पंजवा ठांड पाई करतारे, ताप छोड़ गया परवारे, गुरपूरा है राखी शरण सचे की ताकी, परमेसर आप हुआ रखवाला, सांत सहज सुखिन मैं उपजे, मन होवा

प्रभ अपना बिरद सुमारिया, हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया। गुर का शब्द भयो साखी, तन सगली लाज राखी। बोलाया बोली तेरा, तू साहिब गुणी गहेरा। चप नानक नाम सच साखी, अपने दास की पैज राखी। सोरठ महला पंजवां, विच करता पुरख खलोवा, वाल ना विंगा होवा। मज्जन गुरे आंदा रासे, जप हर हर किल विखनासे। संतो रामदास सरोवर निका, जो नावे सो कुल तरावे। उदार हुआ है जी का रहाओ, जय जयकार जग गावे। मन चिंदे अड़े फल पावे, सही सलामत नाए आए। अपना प्रभु ते आए, संत सरोवर नावे। सो जन परम गत पावे, मरे ना आवे जाई। हर हर नाम ते आई, एहो ब्रह्म विचार सो जाने। जिस दयाल होए भगवान, बाबा नानक प्रभ शरणाई। सब चिंता गणत मिटाई, सोरठ महला पंजवां। पार ब्रह्म निबाही पूरी, काई बात न रहिया ऊरी। गुरचरण लाए निस्तारे, हर हर नाम सुमारे। अपने दास का सदा रखवाला, कर कृपा अपने कर राखे। मात पिता ज्यो पाला रहाओ, फटभागी सतगुर पाया। जिन जम का पंथ मिटाया, हर भगत पाए चित लागा। जप जीवै से वटभागा, हर अमृत बाणी गावै। साधा की धूरी नावै, अपना नाम आपे दिया। प्रभ करण हार रख लिया, हर दर्शन प्राण आधारा। एहो पूर्ण बिमल बिचारा, कर कृपा अंतर जामी। दास नानक शरण स्वामी, सोरठ महला पंजवां। गुरपूरे चरनी लाया, हर संग सहाई पाया। जय जाइए तहां सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। हर गुण गावो सदा सुभाई, मन चिंदे सगले फल पावो। जी कै संग सहाई रहाओ, नारायण प्राण आधारा। हम संत जनारे नारा, पतत पुनीत कर लीने। कर कृपा हर जस दीने, पार ब्रह्म करे प्रतपाला। सद जी संग रखवाला, हर दिन रहन कीर्तन गाइए। बहुना जोनी पाइए, जिस देवै पुरख बिदाता। हर रस नहीं जाता, जम कंकर नेड़ ना आया। सुख नानक सरणी पाया, सोरठ महला पंजवां। गुरपुरे कीती पूरी, प्रभ रव रहया पर पूरी। खेम कुशल पया इस नाना।

मिल साधु दुर्मत होए पद तपनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाथे पाप कमाते गुण गोबिंद नित गाइए साध संग मिल त्याइए मन बाइत फल पाए गुर पूरा हृदय ते आए गुर गोपाल आनंदा जब जब जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभु अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस छतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैना पिर पर दे सिदायो हुन नहीं संदेसरो मायो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रहाओ क्यों बिसरे ओ लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदर चरक पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हाँ हाँ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन पेखे दूर आयो पयो कृपाल सर्व को ठाकरो सगरो दुख मिटायो कहो नानक हो मैं पीत गुर खोई तो दयार बीठ लो पायो सब रहो अंदेसरो मायो जो चाहत सो गुरु मिलायो सर्व गुणा निदरायो रहाओ दूजा सोरठ महला पंजवा गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभी माया तारी नाम पर्यो भगत गोविंद का एह राखो पैज तुम्हारी तो

जैसा बालक पाए सुभाई लख अपराध कमावै कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावै पिछले अवगुण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावै हर अंतर जामी सब जाणै ता किस पै आख सुनाई है कहना कथन ना पीजै गोविंद हर भावै पैज रखाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकरो आपे सुने बेनंती पूरा सतगुर मेल मिलावै सब चूकै मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा दुख कले सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले संठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरे दियो उपदेसा जब पौजल पार उतारा रहा हो तू है।

क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवै प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप प्रभ स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांचो संता तूरी, सोरठ महला पंजवा, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हरे अपनी कृपा तारी, प्रपूर्ण पै सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात ना काई रहाओ, करते पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया, तोट ना कतहूं आवै, मेरे पूरे सदगुर पावै, सिमर सिमर दयाला, सब जी पय कृपाला, जय जयकार गोसाई, जिन पूरी बणत बनाई।

प्रभ अपने वर दीने सगल जीव अस कीने जन नानक नाम ते आया ता सगले दुख मिटाया। सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गुरपुरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने। बेदन सतगुर आप गवाई सिख संत सब सरसे होए हर हर नाम ते आई रहाओ। ज्यो मंगे सो लेवे प्रभ अपने संतां देवे हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक साज सुपाखिया। सोरठ महला पंजवां सोई कराए जोत पावे मुहे सियाणप कछु ना आवै हम बारक तो शरण आई प्रभ आपे पैज रखाई मेरा मात पिता हर राया। कर कृपा प्रतपालन लागा करी तेरा कराया रहाओ। जी जंत तेरे तारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे जेकरा वैसो करना नानक दास तेरी सरना। सोरठ महला पंजवा हर नाम हृदय परोया सब काज हमारा होया। प्रभ चरणी मन लागा पूर्ण जाके भागा मिल साध संग हर त्याया। आठ पहरिया राध्यो हर हर मन चिंदिया फल पाया रहाओ। परा पुरबला अंकर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श समावै। नानक दास सच्चे गुण गावै सोरठ महला पंजवा गुरमिल प्रभु चितारिया कार्ज सब सवारिया मंदा को नाया लाए सब जय जयकार सुनाए। संतो साची शरण स्वामी जी जंत सब हाथ सहकै सुप्रभ यंत्र जामी रहाओ। करतब सब सवारे प्रभ अपना बिरद समारे पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सतगुरबाना। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म साज सवारिया एहो लहोड़ा गुरु उबारिया आनंद करो पित माता परमेश्वर जी का दाता। शुभ चितवन दास

सुखदाई। नानक नाम ते आया पूर्व लिखिया पाया, सोरठ महला पंजवा गुरपुरा आरा दे, कार्ज सगले सादे सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे संतो राम जपत सुख पाया। संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाओ। गुरपुरे की बाणी पार ब्रह्मन पाणी, नानक दास बखाणी निर्मला कथ कहानी। सोरठ महला पंजवा भूखे खावतला भूखे खावतला जना आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै। अपने काज को क्यों अलकाई है, जे सिमरन दर गै मुखी उज्जल, सदा सदा सुख पाई है रहाओ। ज्यों कामी काम लुभावै, त्यों हर दास हर जस पावै। ज्यों माता बाल लपटावै, त्यों ज्ञानी नाम कमावै। गुरपुरे ते पावै, जन नानक नाम ते आवै। सोरठ महला पंजवा सुख सांद घर आया, निंद कै मुख छाया, पूरे गुर पहराया, बिनसे दुख सवाया। संतो साचे की वड़ियाई, जिन अचरज सो बनाई रहाओ। बोले साहेब कै पाणे, दास बाणी ब्रह्म वखाणे। नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बणत बनाई। सोरठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय ते आए, कर सही सलामत आए। संतोख भया संसारे, गुरपुरे लै तारे। संताओ प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत की गणत न गणही, राखे बाल गोपाला रहाओ। हर नाम हृदय और तारे, तन सबे थोक सवारे। गुरपुरे तुस दिया, फिर नानक दुख ना थिया। सोरठ महला पंजवा हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। गुरपुरे की वड़ियाई, ता की कीमत कही ना जाई। हाँ कुर्बान जाई तेरे नाम, जिसनों बख्श लह मेरे प्यारे। सो जस तेरा गावै रहाओ, तू पारो स्वामी मेरा। संता परवासा तेरा, नानक प्रभ शरण आई, मुख निंदक कै शाई। सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता, पाचे आनंद प्रभ कीता। परमेश्वर बणत बनाई, फिर डोलत कत हूं नाही। साचे साहेब स्यो मन मानिया, हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करें प्रतपाला। अचरज तेरी वड़ियाई, नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवा नाल नारायण मेरा, जमदूत ना आवै नेरा। कंठ लाए प्रभ राखे, सतगुर की सच साखे। गुरपुरे पूरी कीती, दुश्मन मार विडारे सगले। दास को सुमत दीती रहाओ, प्रभ सगले थान वसाए। सुख सांद फिर आए, नानक प्रभ पहरा नानक प्रभ शरण आए। जन सगले रोग मिटाए, सोरठ महला पंजवा। सर्व सुखा का दाता सतगुर, ताकी सरणी पाई है। दर्शन पेड़त होत आनंदा, दुख गया हर गाई है। हर रस पीवो पाई, नाम जपो नामो आरादो। गुरपुरे की शरणाई रहाओ, तिसै प्राप्त जिस तुर लिखिया। सोई पूर्ण पाई, नानकी बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा करण करावन हर अंतर जामी, जन अपने की रखै। जय जयकार होत जग पीतर, शब्द गुरु रसचा।

जो जन भजन करे प्रभ तेरा तसै अंदेसा नाही, सतगुर चरण लगे पौ मिटिया, हर गुण गाए मन माही, सुख सहज आनंद घनेरे, सतगुर दिया दिलासा, जिन घर आए सोभा सेती, पूर्ण होई आसा, पूरा गुर पूरी मत जां की, पूर्ण प्रभ के कामा, गुरचरणी लाग तरयो पव सागर, जप नानक हर हर नामा, सोरठ महला पंजवां, पयो किरपाल दीन दुख पंजन, आपे सब ठाती, खिन मैं राख लियो जन अपना, गुरपूरै बेड़ी काटी, मेरे मन गुरु गोविंद सद त्याई है, सगल कलेस मिटै इस अंते, मन चिंदिया फल पाई है रहाओ, जेते जी जंत जाके सब कीने, प्रभु उच्चा अगम अपारा, साध संग नानक नाम ते आया, मुख उज्जल पय दरबारा, सोरठ महला पंजवां, सिमरो अपना साई, दिन सरैन सत्याई, हाथ दे जिन राखे, हर नाम महाराज चाखे, अपने गुरु उपर कुर्बान, भय किरपाल पूर्ण प्रभदाते, जी होए मेहरबान, रहाओ नानक जन सरनाई, जिन पूर्ण पैज रखाई, सगले दुख मिटाई, सुख पुंचाओ मेरे पाई, सोरठ महला पंजवां, सुनो बिनंती ठाकुर मेरे, जी जंत तेरे तारे, राख पैज

सुनी पुकार सम्राट स्वामी बंधन काट सवारे पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनित पारे उतारे।

दारा मीत पूत रथ संपत धन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुग हार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नावा। मन रे कौन कुमत लीनी पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी रहाओ। मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया। ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो नहीं उपजियो कछ ज्ञाना कट ही माए निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना। बहुत जन्म परमत तै हारियो अस्त्र मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरठ महला नावा। मन रे प्रभु की शरण विचारो जय सिमरत गण काशी उदरी ताको जस उर तारो रहाओ। अटल भयो त्रु जा कै सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महिमा नाम कहां लो बरनाओ राम कहत बंधन ते टूटा। अजा मल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तैं पी उतरें पारा।

तरई कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई कल मैं एक नाम कृपा निध जाहें जपै गत पावै और धर्म ताकै समनाहन एह बिद बेद बतावै दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई महामोह अज्ञान तिमर मोह मन रहो उरजाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई बिख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस नाहे निस्बासर बिख्यन कौ तावत कह बिदरो कौताहे रहाओ वेद पुराण सिमरत के मत सुनो निमख नाहिए बसावै पर धन पर धारा सिओ रचियो बिरथा जन्म सिरावै मद माया कै पयो बावरो सूजित न कछ ज्ञाना कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म न जाना जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी सोरठ महला नावा रे नर एह साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार अजहू समझ कश बिगड़ो नाहन पजले ना मुरार कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई सगल जगते अपने सुख लागेओ दुख में संग ना होई रहाओ दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यों लागे जब ही निरतन देखियो नरकओ संग छाड़ सब भागे

लोभ मोह अवमाना हरख सोग ते रह न्यारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्याग जगते रह निरासा काम क्रोध जे परस नाहनो ते कट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जे नर कौ कीनी तेह ए जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यो पानी संग पानी सोरठ महला नावा प्रीतम जान लेहो मन माही अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ को काहू को नाही रहाओ सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहूं दिस घेरै विपत परी सभी संग छाड़त को न आवत नेरै कर की नार बहुत हित जा स्यों सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजी एकाया प्रेत प्रेत कर पागी एह बिद को व्योहार बनयो है जांस्यो नेहो लगायो अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो सोरठ महला पहला घर पहला अष्टपदियां चौतुकी एको अंकार सतगुर प्रसाद दुबदा ना पड़ो हर बिन होर ना पूजाओ बड़े मसान ना जाई तृष्णा राजना पर कर जावा तृष्णा नाम बुझाई कर पीतर कर गुरु दिखाया सहज रते मन पाई

बिख माया चित मोहया पाई, चतराई पत खोए, चित में ठाकर सच वसै पाई, जे गुर ज्ञान समोए। रूडो रूडो आखिए पाई, रूडो लाल चलूल, जे मन हर स्यों बैरागिए पाई, दर कर साच पूल। पातालिया कास तू पाई, कर कर तू गुण ज्ञान, गुर मिले सुख पाया पाई, जूका मनो गुमान। जल मल काया मांजिए पाई, पी मैला तन होए, ज्ञान महारस नाइए पाई, मन तन निर्मल होए। देवी देवा पूजिए पाई, क्या मांगो क्या देहे, पाहन नीर पखालिए पाई, जल में बुढ़े ते है। गुर बिन अलख न लखिए पाई, जग बूढ़े पत खोए, मेरे ठाकर हाथ वड्याईया पाई, जय पावे तें दे। बैयर बोले मिठली पाई, साच कह पिर पाए, ब्रह बेदी सच वसी पाई, अदक रही हर नाए। सब को आखे अपना पाई, गुरते बुझे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईंधन अदक सकेलिए पाई, पाव करन चक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा, कर पहला ते तुकी एको अंकार, सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख लए हर जियो, हरनाक समार पजाया। गुरमुखां नूं प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम भुलाया, हर जी एह तेरी वडियाई। भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी सरनाई रहाओ। भगतां नूं जम जोहे ना साकै, काल ना नेड़ै जाई, केवल राम नाम मन वसिया, नामे ही मुक्त पाई। अरिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई। मन मुखां नूं प्रतीत ना आवई, अंतर लोभ सुवाओ, गुरमुख हिरदै शब्द ना भेदियो, हर नाम ना लागा पाओ। कूड़ कपट पाज लहि जासी, मनमुख फीका आ लाओ, भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता। माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विधाता, हों मैं मार मन सामने समाणी, गुर कै शब्द पछाता। अचिंत कम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब का ईश्वर नहारा। ओना की रीस करे सो विगुचै, जिन हर

माया लालच अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिन तू विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए तूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साक्त संग ना की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मुह कल उठ जाए मन मुख टोई नह मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस सियाण पा प्यारे एक न चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वस न जातिया प्यारे कू न चली नाल सतगुर जिना मिलायोन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंधन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगतां तिसका तान ते सरनाई टै पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवा कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंगम साधे पंच जना स्यों संग न छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बाधे प्यारे इन बिद मिल न जाई मैं किए कर्म्या नेका हार पर्यो स्वामी कै द्वारे दीजे बुद्ध बबेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहयो नगन फिरयो बन माही तड़ तीर्थ सब धरती प्रमयो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए मन की मैल न उतरै एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु बिद दान दा तारा अन्न बस्त्र भूम बहु अरपे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडाओ तो खट कर मारत रहता हाहो करत बंधन मैं परया न मिली है ए जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर रहया वड्डी हार जा फिर जन्मे हर स्यों संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्म्या फारा सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर करमन कह करमा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक हे रंग माता भयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल न कत मन जीबै सच्चा सोए ससरै पेय पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावै पिर संग सदा सिंगारी नाओ मन कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावै नानका करम मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावनी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले
हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लब्बई, सब देखिया जगत मैं टोले। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, मन अंत ना काहूं डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया, तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया, दाता करता आप भोगन हारिया, सब तेरा शब्द वरतै ओ पावन हारिया। हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर कौ वारिया, श्लोक महला तीजा। हाँ मैं जल दे जल मोए, भ्रम आए दूजे पाए, पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए। एहो जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुभाए, शब्द रते से शीतल पाए, नानक सच कमाए महला तीजा। सफल्यो सतगुर सेवया तन जन्म परवान, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसरै सही पुरख सुजान। कुल उधारे अपना सोजन होवै परवान, गुरमुख मोए जीव दे परवान है, मनमुख जन्म मराहे, नानक मोए ना आखिया जे गुर कै शब्द समाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है, सतसंगत साधु लग हर नाम समाई है। हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है, हां गोला लाला तुद मैं हुकुम फरमाई है। हाँ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइया, श्लोक महला तीजा। पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास, मोहठ गौली पाईयन विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवन दा दूजे पाए मुयास। जिनी गुरमुख नाम ना चेतियो से बहन ना मिलनी पास, दुख लागा बहुत घना पुत कलातना साथ कोई जास, लोकां विच मोह काला होवा अंदर उबे सास, मनमुखा कोना विसही चुक गया वे सास। नानक गुरमुखा नो सुख अगला जिनांतर नाम निवास। महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए, सतगुर का पाणा अंदन करे से सच रहे सुमाए। दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे वेकार, मनमुख आप सवारथी कारज ना सके सवार। नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई न मिटन हार, पौड़ी तुद आपे जगतो पाए कै आप खेल रचाया, त्रै गुण आप सिर

अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोए गवार, सतगुर सेवया सुख पाया सत्या शब्द विचार। अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चै नाए प्यार, नानक नाम रते सहजे रजे जिन्ना हर रखिया उरतार।

वेद पुराण सब मत सुन के करी कर्म की आसा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा, मन रे सरे ना एक काजा भजियो नारग पत राजा रहाओ, बन खंड जाए जोग तप कीनो कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया, भगत नार दी हृदय न आई काश कूश तन दीना, राग राग नी डिंब होए बैठा उन हर पै क्या लीना, परयो काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी, कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जै जानी, कर दूजा दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिरया और ना देखा,

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला।

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतऊ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पवसागर तार मुरारी सोरठ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुधारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पहली जय रहाओ, छिन छिन तन छीजै जरा जनावै, तब तेरी ओक कोई पानियो ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पवने सुख बनया, किस जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै, हाँ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ, दोए शेर मांगो चूना, पाओ की ओ संग लूना, अध शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जिवाले, खाट मांगो चौपाई, सरहाना अवर तुलाई, ऊपर कौ मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा, मैं नाही कीता लबो, एक नाव तेरा मैं फबो, कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया, राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब देखा तब गावा, तौ जन तीरज पावा, नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ, जह चिल मिलकार दिसंता, तै अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी, चमकार बीजल तही, नेरै नाही दूर, निजात मैं रया भरपूर, जय अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जलै शंशारा, गुर प्रसादी जानिया, जन नामा सहे समानिया, कर चौथा सोरठ, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान शिवाई हो, तो पै दुगनी मजूरी दहाओ, मोको बेडी देहो बताई हो, रिबाई बेडी देन न जाई, देख बेडी रे उस माई, हमारे बेडी प्राणे आधारा रहाओ, बेडी प्रीत मजूरी मांगे, जौ को शान शिवावे हो, लोग को टंब सबोते तोरे, तो अपन बेडी आवे हो, ऐसो बेडी बर्न ना सको, सब यंत्र सब ठाई हो, गुंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कह न जाई हो, बेडी के गुण सुन री बाई, जल्द बांतु था प्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी, लंकप भीखण आ प्यो हो, सोरठ करती जा, अड़मड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कन हर गाज।

तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चुमारा चमरटा गांठ न जनई, लोग गठावै पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रोपो, लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हम बिन गंठे जाए पहुचा। रविदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत पेखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैनो

हर हर अगमय अगाध बोध अपरंपर पुरख्या पारी जन कौ कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी। तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जपयो तिनका दुख भरम पौ भागी। अपनी सेवा आप कराई गुरमते अंतर जागी। हर कै नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिव लागी रहाओ। संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकर हम सांगी। जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नानक कीरे तुम वड पुरख वडागी। तुमरी गत मित कह ना सकै प्रभ हम क्यों कर मिलया पागी। हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी। नानक दास संदास करो प्रभ हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी। जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सतगुर बानी। हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल। सब के लिविख पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी। तिनकी तूर मंगै प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी। हर हर सफलियो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी। हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुखानी। जिनके वडे भाग वड उच्चे तिन हर जपियो जपानी। तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दा दसानी। तनासरी महला चौथा हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चाले गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे अपन पाली। गुर सखमी चलो गुर चाली जो गुर कह सोई पल मानाओ। हर हर कथा निराली रहाओ। हर के संत सुनो जन पाई गुर सेवो बेग बेगा।

हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती हर बिनो रह न सको एक राती जो बिन अमल अमली मर जाई है त्यों हर बिनो हम मर जाती रहाओ तुम हर सर्वर अत अगाहा हम लह न सके अंत माती तू पर पर अपरंपर स्वामी मित जानो अपन गाती हर के संत जना हर जपयो गुर रंग चलू लै राती हर हर भगत बनियत सोभा हर जपयो उतम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावै पाती नानक जन तुमरी शरण आई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कलयुग का धर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपयो तरह तरा की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगते काकी रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपयो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जमकी बाकी हर के संत जपयो मन हर हर लग संगत साध जना की दिन यार सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरयो चंद चंदा की तो वड पुरख वड अगम्या गोचर तुम आपे आपे आपा की जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दस दसा की तनासरी महला चौथा कर पंजवा दोपद एक ओंकार सतगुर प्रसाद उर तार विचार मोरार रमो रम मन मोहन नाम जपीने अदृष्टा गोचर परंपर स्वामी गुरपुरै प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सतसंग पहे हर कंचन चंदन कीने रहाओ नाम शे खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इवना पतीने जन नानक हर हृदय सत्यावो इव हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर एव हर हर नाम ते आई हर दर गै पावे फिर जन्म ना आवे हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी होहे सर्व सुखी हर जस ऊच सबना ते ऊपर हर हर हर सेव छडाई रहाओ हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर स्यों प्रीत बने आई बहु चिंत विसारी हर नाम ओर तारी नानक हर पय है सिखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लेख हर जप हर गाओ हर भोजन पार उतारी मन बचन हृदय ते आए हर होए संतुष्ट एव पण हर नाम मोरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होवे दिन राती हर कीर्त कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्यम हर हर नाम जपयो गत ही पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बोत तीस कोट मुन जानो सब चाहे हर जियो तेरो नाओ गुर प्रसाद को बिरला पावे जिन कौल लाट लिखिया तुर पाओ जप मन रामै नाम हर जस उत्तम काम जो गावे सुने ते राजा स्वामी हम तिनकै सद बलिहारै जाऊं रहाओ शरणांगत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देहो सोई हों पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजै नानक हर सिमरन का है चाओ तनासरी महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवै।

सह सब तुझी महेश माहे सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे साह ज्यो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवा कर पहला चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद पव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वच्छल निरंकारे कोट प्राद मिटे खिन पीतर जां गुरमुख नाम सुमारे मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वासकीने पंच दूतारे रहाओ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोहै दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे तेरा वर्ण ना जापै रूप ना लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रव्या सर्ब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करै सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मुरारे ज्यो पावै त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण दुआरे तनासरी महला पंजवां बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बड़ायो कमल हेत बिन स्यो है पवरा उन मार्ग निकस ना पायो अब मान एक स्यो मोह कीना मरे न जावे सदही संगे सतगुर सबदी चीना रहाओ काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओ परवस भयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बेदारा देख कुटांब लोभ मोहयो प्राणी माया कौ लपटाना अत रचियो कर लीनो अपना उण छोड़ सरा पर जाना बिन गोबिंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बजायो प्रीत प्रभु सदकेला तनासरी महला पंजवां कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरणी लाए साध संग

गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानक जिन जमते काढ़े तिस गुर कै कुर्बानी। तनासरी महला पंजवा जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तौ बिद नीकी खटानी जी की कै ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोल कहीरा गुरदीनो मनतानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानको निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजनियार भूमन ताकि तृष्ण ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी। बिखिया मैं किन्हीं तृप्त ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रप बिन हर कहां अगाई। रहाओ दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकि मिटै ना भूखा। उद्यम करै सुवान की न्याई चारे कुंटा कोखा। कामवंत कामी बहु नारी पर गृह जोहन चूकै। दिन प्रत करै करै पछतापै सोग लो मैं सूकै। हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना। सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना। तनासरी महला पंजवा लवै न लागन कहो है कशु है जाको फिर एहो तावै। जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बन आवै। जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चितना बसाओ। रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई। बरन न साको उस ताकी कीमत कहन न जाई। काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आए चिंता। जाको दया करी मेरे ठाकर तिन गुरै कमानो मंता। दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला। ओत पोत नानक संग रव्या जो माता बाल गोपाला। तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया। महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग दे

जाई तुम दयाल कृपाल कृपा निद पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुक्ते निमुख बुलाई। जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ कै मन पाई नाम जपत तृष्णा सब बुझी है नानक तृप्त अगाई। तना श्री महला पंजवा जिन कीने वस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या यो जंत विचारा। प्रभ की ओट गही तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याद तब हूटो रहाओ। न सुनिए न मुख

प्रभ जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजे सब ता कहो, बिख मना जाई लैन रहाओ। जाप ताप परम जाप ताप परमन बसदा कर, उर्द ताप लै गैन, एह बिदन है पतियानो ठाकर, जो जोत कर जैन। अमृत नाम निर्मोल कहार जास, तिन पायो जिस कर पैन, साध संग रंग प्रपेटे, नानक सुख जन रैन। तनासरी महला पंजवा, बंधन ते छुटकावै, प्रभु मिलावै, हर हर नाम सुनावै, अस्त्र करे निचल एहो मनुआ, बहुण ना कतहू कावै। है कोई ऐसो हमरा मीत, सगल समग्री जियो हियो देओ, अर्पो अपनो चीत रहाओ। पर तन पर की निंदा, इन स्यो प्रीत न लागे, संत संग संत संपाखन, हर कीर्तन मन जागे। गुण निदान दयाल पुरख प्रभ, सर्व सुख दय अल्ला, मांगे दान नाम तेरो नानक, ज्यो माता बाल गोपाला। तनाश्री

जा कै संग तेरे बंधन छूट गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण अवर आस कछ पटल ना कीजै सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जा को कृपा कीजै।

देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राखो सगल है मरना रहाओ। चंदन चोवा रस भोग करता नेकै, बिखिया बेकार देखो सगल है फीके। एकै गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन, तन तन अपन था प्यो हर जपना निमख जाप्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना, जा को रे करम पल्ला तिन ओट गई संत पल्ला। तिन नाही रे जम संतावै साधु की संगना, पायो रे परम निधान मिट्यो है अभिमान। एक निरंकार नानक मन लगना, तनासरी महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, काल कलेश लोभ मोह महापौजर तारे रहाओ। सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे, साध संग जपन संग मन दान तारे। चरण कमल नमस्कार गुण गोबिंद विचारे, साजना की रेण नानक मंगल सुख सधारे। तनासरी महला पंजवा कार अठवा दो पदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ, सास सास संभाले ए लोक पर लोक संग सहाई। जत कत मोहे रखवाले गुर का बचन बसै जी।

निर्तन कौ तन अंदले कौ टेक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। तनाश्री महला पंजवा, पै कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई, नाम ने दरिद सिधार, लाग रही जन पाई। संतन का आनंद सगली जाई, गृह बार ठाकर भगतन का, रव रया सर्व ठाई रहाओ। ता को कोई न पहुंच नहारा, जा कै अंग गुसाई, जम की त्रास मिटै जिस सिमरत, नानक नाम ते आई। तनाश्री महला पंजवा, दर्भवंत दर्व देह गर्भ है, पूमवंत अभिमानी, राजा जन सगल राज हमरा, त्यों हरजन टेक स्वामी। जे को अपनी उड़ सुमार है, जैसा बित तैसा हुए वर्त, अपना बल नहीं हार रहाओ। आन त्याग पय के आसर, शरण शरण कर आए, संतानुग्रह।

सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वस तां कै जां का सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग सरणी पावन नाम त्यावन सहिस मावन संग रहाओ जन के चरण वसै मेरे ही अरे संग पुनीता देही जन की तूर दे हो कृपा निध नानक कै सुख एही। तनाश्री महला पंजवा जतन करे मान खुड है कावे ओह अंतर जामी जाने पाप करे कर मुकर पावे पेख करे निर्बन जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताकै उत ते उत पेख आवै लोभी फेर रहाओ। जब लग टुटै नाही मन परमा तब लग मुक्त ना कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनाश्री महला पंजवा नाम गुर दी होए अपने जा कै मस्त करमा नाम दृढ़ावै नाम जपावै ताका जुग मै तरमा। जन कौ नाम वडाई सोभ नामो गत नामो पत जन की मानै जो जो हो ग्रहाओ। नाम तानो जिस जन कै पालै सेई पूरा सहा नाम व्यवहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनाश्री महला पंजवा नेत्र पुनीत पए दर्स पेखे माथे परोरवाल रस रस गुण गा।

महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचनन उपर साल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखै महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिलै नानक संत सेवा। तनासरी महला।

मन तन राम नाम हितकारे। सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे। जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिनसना कतहू जात। सतगुर पूरे कीनी दात। हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पई हमारी गात। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मने सादारी। सागत किया वरदा जाय बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी। तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना। शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती। रहाओ

नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। तनासरी महला पंजवा औखी कड़ी न देखन देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ स्यो लाग रहे हो मेरा चीत आद्यंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवा जिसको बिसरै प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगयो। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस शीज गया सब तंते प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवा जन

मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम गोबिंद दमोदर सिमरौ दिन रैन नानक सत कुरबान।

स्वस्थ व्यवस्था की सेवा मदयंत प्रभ जापण नानक रंग लगा परमेसर बाहुड़ जन्म ना छापण तनासरी महला पंजवां मांगो राम ते सब थोक मानख कहो जाचत शरम पाई है प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ कोखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारै कोख कृपा सिंध सेव सच पाई है दोवै सोहेले लोक आन आचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पह काटे मिल साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवां तृष्णा।

आओ वड़े भाग पेटे गुरदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन तिस जन ना ब्यापै सागर तरिया साधु संगे निरपौ नाम जपो हर रंगे पार तन दोख किश पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवै नेड़े त्रिसना यगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ सरनाई तनासरी महला पंजवा त्रिपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाओ अनक प्रकारी वस्त्र ओढ़ाए अंधन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार गुरदय निहारी मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया तनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जन

जत सत संजम हृदय समाए चौथे पद कहो जे मनपति आए साचे निर्मल मैल न लागै गुर कै शब्द भरम पौ भागै सूरत मूर्त आदि अनूप नानक जाचै साच स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिलै मिलिया प्रवान नात स्मरण ना आवन जान ठाकुर मैं दा दास मैं सोए जै देखा तै अवर न कोए गुरमुख भगत सहज कर पाई बिन गुर भेटे मरियाई जाइय रहाओ सो गुर करो जे साज दृढ़ावै अकथ कथावै शब्द मिलावै हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकर सच प्यारा तन मैं मनुआ मन मैं साचा सो साचा मिल साचे राचा सेवक प्रभ कै लागै पाए सतगुर पूरा मिलै मिलाए आप दिखावै आपे देखै हठ ना पतीजै ना बहु पेखै घर पांडे जन अमृत पाया प्रेम भगत ब्राह्मण पति आया पढ़ पढ़ भूलै चोटा खाहे बहुत सियाण पे आवै जाहे नाम जपै पौ भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिला तीर्थ बनवासा परमत डोलत पय उदासा मन मैलै सूचा क्यों होए साच मिलै पावै पत सोए।

कोई ऐसो रे पेट संत मेरी लाह सगल चिंत ठाकर स्यो मेरा रंग लावे पड़े रे सगल बेद नह चूके मन भेद एक खेना धीर मेरे करके पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरा हृदय संचा जे तेरे तीर्थ नाए अहम बुद्ध महल लाए कर को ठाकरो एक तिल ना मन है कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान सगलिया शर्म कीने मनु अन है पतीने विवेकहीन देही तोए कोई पाई है रे पुरख विधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कही ना लेख जिस भेटिए सफल मूर्त करे सदा कीर्त गुर प्रसाद को नेत्रों पेख मन अठ जो कमावे तिल ना लेख पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभ की कथा सुनाई तिस भेटे गत हुए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरभय गोबिंद सुख नानक ला दे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले सादा रहाओ दूजा तनासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पूर्व सदा दसहरा हो नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ तरणी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन ने साच तीर्थ मजना साचना लागे मैल क्या मल तोई है गुणे हर परोए किसको रोई है।

फिर संग पावे सहजन आवै बेणी ता संगम सत सते आराधे अकंकार साचा नित दे चढ़ै सवाया गत संग मीता संत संगत कर नजर मेल मिलाया कहन कह सब कोय केवड़े आखी है हम मूर्ख नीचा जान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा कूच कर आवै बिखला दे शब्द सच्चा गुर मेरा आखण तोट ना भगत भंडारी परपुर रहा सोई नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरा नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा सिरजन हारा जिन सिर जी तिन गोई परवाना आया हुक्म पठाया फिर न सकै कोई आपे कर वेखै सिर सिर लेखै आपे सुरत बुझाई नानक साहब अगमा गोचर जीवा सच्ची नाई तुम सर अवर ना कोए आया जाए सी जियो हुक्मी होए नबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच मैं साज समाना आपो पाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा सच्ची वडियाई गुरते पाई तू मन अंत सिखाई नानक साहेब अवरना दूजा नाम तेरे वडियाई तू सच्चा सिरजनहार अलख सरंदिया जियो एक साहब दोहरा वाद वधंदिया जियो दो राह चलाए हुक्म सवाए जन्म वा संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवारन हारा नानक साहेब सब संजापै साचा सिरजनहारा भगत सोहै दरबार शब्द सुहाया जियो बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तसाए गुर कै शब्द विकाणे पारस परसै पारस होए जां तेरा मन भाणे अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहंदर साचै साचे के वापारी भूख प्यासो आथ क्यों दर जाए सा जियो सतगुर पूछो जाए नाम ते आए सा जियो सच नाम ते आई साच वाई गुरमुख साच पछाणा दीना ना दयाल निरंजन अंधन नाम वखाणा करनी कार तुरो फुरमाई आ मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा तृष्णा नाम निवारी तनासरी संत महला पहला पिरसंग मूठड़िए खबर ना पाया जियो मस्तक लिखे आला लेख पुरब कमाया जियो लेख ना मिटई पुरब कमाया क्या जाना क्या होसी गुणिया चार

हमरा मन तानो राम को नामा, राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई रहाओ। बनता सुत देहे ग्रहे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई। अजा माल गज गन का पतत कर्म कीने, तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन प्रमे तउ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बेदन खेद, राम नाम लेही गुरप्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई, जिन तरन तर मुंड बलाए।

दुर्योधन से पाई, बारह जो जन शत्र चल था, देही गिरज न खाई, सर्व सो इनकी लंका होती, रावण से अदकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्वासा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए, कृपा करी जने अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए, दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो, सत्तर दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो, पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, यह संसार ते तभी छूटो, जो माया ने लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेहता दर्शन पावो, एत कर भगत करे जो जानो, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देओ बाहर क्या भरमो, ए संजम हर पाई है, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, ज्यो कुरंक निसनाद बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, तेरा नाम रूडो रूप रूडो, आतरंग रूडो मेरो रामैया रहाओ, ज्यो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पावरला, ज्यो कोकल को अंब बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, चकवी कौ जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसला, ज्यों तरणी कौ कंत बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, बार्क कौ जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली कौ जैसे नीर बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, साधक सिद्ध

ते हंसा सगले जना कृष्णा ते जानाऊ हर हर नाचंती नाचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंदी मैं सागरा रहाओ।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारे सगल जूठारे तेरो किया तुझे क्या यार पाओ नाम तेरा तुही चवर टोलारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर पोग तुहारे तनासरी बाणी भगता की त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण निंद सकाए भूली गवारी दो कृष्त सुकृत थारो कर मरी रहाओ संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे कुल जन मदे मिलियो सारंग पान रे कर्म कर कलंक मफीट सरी बिसव का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड ताचे बादवा कर्म कर अरण पिंगलारी अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पार री कर्म कर कपाल मफीट सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्प तार शिखर सुनागर नदी चे नाथं कर्म कर खार मफीट सरी दादी ले लंका गाड़ ओ पाड़ी ले रावण बाण साल बिसाल आन तोखी ले हरी कर्म कर कशौटी मफीट सरी पूर्व लो कृत कर्म न मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे रामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति मंगला

रामा भगत रामानंद जानै पूर्ण परमानंद बखानै मदन मूर्त पैतार गोबिंद सैन पणै पज परमानंद पीपा कायो देवा कायो देवलो कायो जंगम जाति कायो धूप दीप नहीं बेदा कायो पूजो पाती काया बहु खंड खोजते नवनिद पाई ना कश आए बो ना कश जाए बो राम की दुहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवै परम तत् है सतगुरु होए लखावै तन्ना गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो परियां शादन निकाया नाज मंगो सत सीका गौ पैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी कर की गीहन चंगी जन तन्ना लेवै मंगी जय श्री महला चौथा कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे ही अरे रतन नाम हर बसिया गुरहा तरियो मेरे माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुरनाम दियो रिन लाथा मेरे मन भज राम नाम सब अर्था गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया बिना मैं जीवन बिरथा रहाओ बिन गुरमूड पए है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण ना सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाथा मोको कीजै दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञान ही न ज्ञानी क्यों चले मार्ग पंथा हम अंधले को गुरे अंचल दीजै जन नानक चले मिलंथा जय श्री महला चौथा हीरा लाला मोल कह पारी बिन गाहक मीका काखा रतन गाहक।

बेसुमार बेअंत बड़ दाता मने घेरो पेख प्रभु को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु को गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कभू चूरो बुझ प्रभु को जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट तिसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम अंधेरा थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा संत संग पावै जो नानक तिस बहुर ना हुई है फेरा जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओवंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहं छोड़ियो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन मैं सतगुर ध्यान तरा दृढ़ ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल।

नाव रूप पयो साध संग पवनित पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जैसरी महला पंजवा जा कहो पय गोविंद सहाई सुख सहज आनंद सकल स्यों वा कहो ब्याध ना काई रहाओ। दिसे सब संग रह अलेपा नह व्यापै उन्माई एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई। दया मया कृपा ठाकर की सही संत सुभाई। तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई। जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मैं दीप रहाओ। सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमलिया नूप अनक बार करो तह बंधन मने चिरावो धूप। हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक। काड लिहो नानक अपने कहो संसार पाव के कूप। जैत सरी महला पंजवा कोई जान हर स्यों देवे जोर चरण गहों बकों सुभ रसना दीजे प्राण्या कोर रहाओ। मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचे सुधा संजोर या रस मैं मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर। आयो शरण दीन दुख पंजन चितवों तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर। जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में है कृपा सिंध करना प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ। अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूर्ण पेख दे हैं आने पावना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं। हाम्या नाथ नाथ हर सरणी अपनी कृपा करे हैं चरण कमल नानक आराध्य तिस बिन आन ना के हैं। जय श्री महला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूर्ण पुरख सुजान रहाओ। प्रेम ठकौरी जिन कौ पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कहन ना जाई कुदरत कवन हमारी। लाए लाए लड़ दास जने अपने उधरे उधर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे। जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म परम सरणी उधर देह अंध कूपते लावो अपनी चरणी रहाओ। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना ना हिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो बिखम नदी जाए तरनी। सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मैं तरनी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग या परनी। जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ। कोट बिघन बिनसे हर सेवा निचल गोविंद ताम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम। तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहो नानक सुख समूह विश्राम। जैत सरी महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूलेओ मन माया उरजायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ। समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जान्यो नाहन बन खोजन कौतायो।
रतन राम कढ़ी के पीतर ता को ज्ञान ना पायो, जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो। जय श्री महला नावा, हर जू राख लियो पत मेरी, जम को त्रास पयो उरे अंत।

श्री राम रंगया पार पूर्ण नै निमख मन मैं उठया। बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठया। चरण कमल शरण आए नानक आया। दुत्तर भय संसार प्रभ आप तराया। मिल साध संगे भजे श्री तार कर अंग प्रभ जी तारिया। हर मान लिए नाम दिए अवर कश ना बिचारिया। गुण निधान अपार ठाकर मन लोड़ींदा पाया। बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। जैत श्री महला पंजवा वार श्लोका नाल एको अंकार सतगुर प्रसाद। सलोक आदि पूर्ण मध पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर। सिमरंत संत सर्वत्र रमण नानक अग्नासन जगदीश्वर। पेखन सुनन सुनावन मन में दृढ़िय साच। पूर रहो सर्वत्र मैं नानक हर रंगराज। पौड़ी हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई। करण कारण समर्थ प्रभ जो करे सो होई। खिन मैं थाप्यो थापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक और चंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन सा सा सिमरंत नानक महायग्न ना बिनासन। मुख तले पैर उपरे वसंदो कहुथड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विसारियो उदरै जिस दै नाए। पौड़ी रगत बिंद करने मिया अग्न उदर मजहार। उर्द मुख कुचीर बिकल नरक घोर गुबार। हर सिमरत तू ना जलै मन तन उर तार। बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे जासै जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आसा पूर्ण। खंडन काल कलेश प्रभ सिमर नानक ने दूरन। हब रंग माने जिस संग तै स्यों लाइय ने हो। सो सहो बिंदन विसरो नानक जिन सुंदर रचिया दे हो। पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया दीने रस भोग। गृह मंदिर रथ अस दिए रचपले संजोग। सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग। हर सिमरतो तन मन हरिया लै जाए वियोग। साध संग हर गुण रमो बिनसे सब रोग। सलोक कुटम्ब जतन करण माया अनेक युद्ध में। हर भगत पावहीण नानक प्रभ बिसरत ते प्रेत तै। टुटड़िया सा प्रीत जो लाई बेअन स्यो नानक सच्ची रीत। साई से तीरत आ पौड़ी जिस बिसरत तन पसम होए। कहते सब प्रेत खिनग्रे मैं बिसना देवही जिन स्यो सोई हेत। कर अनर्थ दर्ब संचया सो कार्य केत। जैसा बीजै सो लुणै कर में हो खेत। अकृत कणा हर विसरिया जोनी परमेत। सलोक कोड़दान इस नानंग अनक सोधन पवित्र तै। उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप विमुचित।

मन बिला स्वादंग रसै एकदा चनै सिमरंत नानक तेजंत बिष्टा कृमै मुच अडंबर हब के हो मंज मोहब्बत नेह सो साई जय विसरै नानक सो तन खेह पौड़ी सुंदर से जानेक सुख रस भोगन पूरे गृह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानदा किश नाहे विसूरे सो प्रभ चेतना आवई विष्टा के कीरे बिन हर नाम ना सांत होए कित बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दैद सह त्यागंत कपट रूप माया नानका नंद रूप साध संग में मन साई मुख उचरा वत्ता हबे लो नानक हबा डंबर कूड़िया सुन जीवा सची सोए पौड़ी बस्ता टूटी चुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पत ना आदरो उद्यान परमिन्ना मित्र ना इठ धन रूप हीन के साग ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मर पिन्ना तिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं छत्र चमर तख्त आसनं अरे चंत मूड़े अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हबरंग माणिया मिठा लगड़ा मोहो नानक नावे हुनिया सुंदर माया त्रोहो पौड़ी सुपने सेती चेत मूर्ख लाया बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया यार जा गई विहाए तंदे ताया पूर्ण पय नाकाम मोहया माया क्या विचारा जंत जाया पुलाया सलोक बसंत स्वर्ग लोकै जगते पृथ्वी नव खंडणै बिसरंत हर गोपाल नानक ते प्राणी उद्यान भरमणै कौत कोट तमासया चेतना आवसनाओ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ पौड़ी महाभयान उद्यान नगर कर मानिया चूड़ समगरी पेख सच कर जानिया काम क्रोध अहंकार फिरै देवानिया सिर लगा जमडंड ता पछतानिया बिन पूरे गुरदेव फिरै सैतानिया सलोक राज कपटंग रूप कपटंग तन कपटंग कुल गर्भतै संचंत बिखिया शलंग छिद्रंग नानक बिन हर संग न चलते पे खंदड़ो की पुल तुम्मा जिसम सोहना अडना लहंदड़ो मुल नानक साथ ना जुलई माया पौड़ी चल दया नाल ना चलै सो क्यों संजीऐ तिसका कहो क्या जतन जिस ते वंजीऐ हर बिसरिया क्यों त्रपतावै ना मन रंजीऐ प्रभु छोड़ अन लागै नरक समंजीऐ हो कृपाल दयाल नानक पौ भंजीऐ सलोक नच राज सुख मिष्टंग नच भोग रस मिष्टंग नच मिष्टंग सुख माया मिष्टंग साध संग हर नानक दास मिष्टंग प्रभ दर्शनंग लगड़ा सोने हो मन मजाहू रतिया विदड़ो सच थोक नानक मिठड़ा सो तनी पौड़ी हर बिन कछु ना लग गई भगतन कौ मीठा यान स्वा सब फीकिया कर निरनौ डीठा अज्ञान परम दुख कटिया गुर भय बसीठा चरण कमल मन बेदया जो रंग मजीठा जियो प्राण तन मन प्रभु बिनसे सब झूठा सलोक त्यागत जलंग न जीव मीनंग न त्याग चात्रक मेघ मंडल बाण बेदांच कुरंक नादं अलबंधन कुसुम बसन चरण कमल।

है त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै सलोक चितवंत चरण कमलं साह सास आराधन नै बिसरंत नाम अचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है। शीतला मन मजाहे पलक ना थी वै बाहरा नानक आसड़ी निबाहे सदा पेखंदो सच तनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद न कबहू झूरी है देहो दर्श मन चाओ लै जाए विसूरी है। होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है। सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणंग सुनंत शब्द अमृत है नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है। हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे नानक से ही तन जिना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा। हर जस लिखै बेअंत सोहै से हथा चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा संता संग उदार सगला दुख लथा। सलोक पावी उदोत करण हर रमणंग संयोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त है। कीम ना सका पाए सुख मिती हूं बाहरे नानक सा वेलड़ी परवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी। सा वेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिलै गुसाई। आठ पैर हर त्याय कै मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई। मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई। सलोक पतत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण शरण सूर भगवान जपंत नानक हर हर हरे। छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी। मेल लहो दयाल टह पै द्वारे रख ले वो दीन दयाल परमत बवहारिया। भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया तुझ बिन नाही कोय बिना मोए सारिया। कर गै लिहो दयाल सागर संसारिया। सलोक संत उदरन दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है। चंदन चंदना सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी। चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन। तोट न आवै मूल संचया नाम तन संत जना सो संग पाइय वड्डै पुन। आठ पहर हर त्याए हर जस नित सुन। सलोक दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया। पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी। जा प्रभ पय दयाल ना व्यापै माया कोट अगा गए नास।

कछु ना थोरी तेरो नहीं सो जानी मोरी रहाओ। आपन राम ना चीनो खिनुआ जो पराई सो अपनी मनुमा। नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहू चित लायो। सो संचयो जित भूख तसायो अमृत नाम तोसा नहीं पायो। काम क्रोध

कह हरी हरी आन अवर सियाण न करी रहाओ। वड़े भाग गुर अपना पायो गुरमुखो हर नाम दृढ़ायो। हर हर जाप ताप व्रत नेमा हर हर त्याय कुशल सब खेमा। आचार व्यवहार जात हर गुनिया महा आनंद कीर्तन हर सुनिया। कहो नानक जिन ठाकर पाया सब किश तिसके गृह मैं आया। टोडी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रूड़ो मन हर रंगो लोड़ै गाली हर नी हो ना होए रहाओ। हाँ टूडेंदी दर्शन कारण बीथी बीथी पेखा गुरमिल परम गवाया है। एह बुद्ध पाई मैं साधु कन्ना लेख लिखियो तुर माथ एह बिद नानक हर नैन अलोए। टोडी महला पंजवा गर्भ गहलड़ो मूड़ो हियो रे हियो महराज री मायो। डीहर न्याई मोयफा क्यो रे रहाओ। कणो कणो कणो सद लोड़ै बिन लहना कैठ पायो रे। महराज रो गाथ बाहू स्यो लुबड़ो ने पागड़ो पाहे संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले प्राश्त मिट्यो रे। जा को लहनो महराज री गठड़ियो जन नानक गर्भासना पौड़ियो रे। टोडी महला पंजवा कर पंजवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दुख अर अहंग रोग एह तंते सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर शोर बिखिया ते गुर को शब्द मेरा हीर दीन। रूप अनुरूप मेरो कश ना बिचार्यो प्रेम गयो मोय हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाठ बीच खोए आनंद चिता हर खे पतीन। तिस ही को गृह सोई प्रभ नानक सो ठाकर तिस ही को तीन। टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्रीत एही कर्म धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाओ। प्राण आधार जीवन तन मोरे देखन कौ दर्शन प्रभ नीत। बाट घाट तोसा संग मोरे मन अपने कौ मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पय मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमख ही अरे ते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ। खोवो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुड सुजान। कोट राज नाम तन मेरा अमृत दृष्ट धारो प्रमान। आठ पहर रसना गुण गावे जस पूरा गावे समर्थ कान। तेरी शरण जियन के दाते सदा सदा नानक कुर्बान। टोडी महला पंजवा प्रभ तेरे पग की तूर दीन दयाल प्रीतम मन मोहन कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ। दै जसरव रहया जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर। जो तुमरा जस गावे करते सेजन कबो न मरते चूर। तंद बंद बिनसे माया के साधु संगत मिटे बिसूर। सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर। टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्यास एक खिन रह ना सको बिन प्रीतम। दर्शन देखन कौ धारी मन आस रहाओ। सिमरो नाम निरंजन करते मन तनते सब किल विखनास। पूर्ण पार ब्रह्म सुखदाते अविनाशी बिमल जाको जास।
संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुणतास शांत सहज सुख मन उपजियो कोट सूर नानक प्रगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुखदाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ। सुंदर सुगड़ चतर सब बेता रिद दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी करम भूम बीजन सो खावन। बिस्मन बिस्म पय बिस्मादा यान बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। टोडी महला पंजवा माई माया शाल त्रिन की अगन में की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जाल रहाओ। छोड़ सियान बहु चितराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानुख देह का एहो उत्तम फल। बेद बखयान करत साधु जान भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पय माल। टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वड़े भाग देवे परमेसर कोट फला दर्शन गुर डीठे रहाओ। गुण गावत अचुत अबनासी काम क्रोध बिनसे मद टीठे अस्त्र पय साच रंग राते जन्म मरण बाहुर नहीं पीठे। बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बेहून चले सब मूठे। टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहजानंद होवे दिन राती अंकर भलो हमारा रहाओ। गुर पूरा पेट्यो वड भागी जा को अंत ना पारा वारा कर गह काढ लियो जन अपना बिकसागर संसारा। जन्म मरण काटे गुर बचनी बहु न संकट द्वारा नानक शरण गही स्वामी की पुनः पुनः नमस्कारा। टोडी महला पंजवा माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भोगवे हर सिमरत बिन सह सब दुख रहाओ। कोट जन्म के किल बिख नास सिमरत पावन तन मन सुख देख सरू पूर्ण पई आसा दर्शन पेट उतरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना तुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय और तारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकर अगम्या पारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बाहुर कश ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मझारे। टोडी महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमाई उर्ज कनक कामनी के रस नह कीर्त प्रभ गाई रहाओ। जग झूठे कहो साच जान कै ता स्यों रुच उपजाई दीन बंद सिमर्यो नहीं कबहू होत जो संग सहाई। मगन रहो माया मैं निस दिन छुट्टी न मन की काई कह नानक अब नाहे अनत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जल की माछली चरै खजूर। काय रे बकबाद लायो जिन हर पायो तने छपायो रहाओ पंडित होए कै बेद बखाना मूर्ख नाम दियो रा मैं जाना।
कौन को कलंक रहयो राम नाम लेत ही पतत पवित पय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन कौ परत गया आई एकादशी व्रत रह काहे कौ तीर्थ जाई। पणत नाम देव सुकृत सुमत पय गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन छंदे खेल अच्छ रहाओ कुंभार के कर हांडी अच्छ राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी अच्छ रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के

जो तुद सेवै तिन भउ दुख नाहे, गुर प्रसाद नानक गुण गाहे। जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होए। जिन जपिया तिस कौ बलिहार, तिस कै

दूध करम फुन सुरत समायण होए निराश जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ। एहो मनी टी हाथ करो फोन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो ता मथिया इन बदे अमृत पावो। मन संपट जित सत सरनावन पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रहै। कहिंदे कहै कहे कह जावै तुम सर अवर ना कोई भगत हीन नानक जन जंपै हौंसा लाही सच्चा सोई। सूही महला पहला कर दूजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद अंतर वसै ना बाहर जाए अमृत छोट काहे बिख खाए ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवे बंधन बांधया सब जग पवे सेवा करे सो चाकर होए जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। सूही महला पहला कर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना कोटम कर लड़ी मस तोतिया झूठ ना उतरै जे सो तोवा तिस। सज्जन सेई नाल मैं चल दिया नाल चलान जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन रहाओ। कोठे मंडप माड़िया पासो चितवीया हां टठिया कम ना आवनी विचों सखणिया हां। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन कुटकुट जिया खावने बग्गे ना कई अन्न। सिमर रुख शरीर मैं जन देख भुलन से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया डूगर वाट बहुत अखी लोड़ी ना लहा हों चढ़ लंगा कित। चाकरिया चंगे आईया अवर स्याण पकित नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। सूही महला पहला जप तप का बंद बेड़ला जित लंघै वहेला ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम जीठड़ा रत्ता मेरा चोला साध रंग ढोला रहाओ। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई जे गुण हो वै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै जे मिलिया होई आवा गौण निवारिया है साचा सोई। हम मैं मार निवारिया सीता है चोला गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो सौ खरा प्यारा हम सह केरिया दासियां साचा खसम हमारा। सूही महला पहला जिन कौ पांडै पाओ तिना सवार सी सुखी करै पसाओ दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे सर पर तार सी इतना मिलिया गुरे आए जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाव देवे दिखिया चल ऐ सतगुर पाए पवे ना पीखिया। जा को महला हजूर दूजे नवै किस दर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस। छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मत कोए। ताहे उसारे साज जाने सब सोए।

तेरा सदड़ा सुनी जय भाई जे को बह अलाए रहाओ। जैसा बीजे सो लुणै जो खट्टे सो खाए अगे पुछ ना हो वही जे सणनी सण जाए। तैसो जैसा कंडिया जैसी कार कमाए जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए। एहो तन वेची बै करी जे को ले विकाए नानक कम ना आवई जतन नाही सच्चा नाओ। सूही महला पहला कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जोग ना खिंथा जोग ना डंडा जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूंड मुंडाया जोग ना सिंगी वाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जोगत इव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी कही है सोई रहाओ। जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना दे संतर पवे जोग ना तीर्थ नाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेटै ता सहसा टूटै तावत वर्ज रहाई है। निजर चरै सहे तुन लागै कर ही परचा पाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत्या मर रही है ऐसा जो कमाई है। वाजे बाजो सिंगी वाजै तौ निरपौ पद पाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तौ पाई है।

मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैयर भरपुर लीना, तू आपे सर्ब समाना रहाओ। मन तारा जी चित तोला, तेरी सेव शराब कमावा, कट ही पीतर सो सह तोली, इन विद चित रहावा। आपे कंडा तोल तो राजी, आपे तोलन हारा, आपे देखा आपे बूझे, आपे है मणजारा। अंदला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, ता की संगत नानक रहिंदा, क्यों कर मूड़ा पावे। राग सुही महला चौथा, कर पहला एको अंकार, सतगुर प्रसाद मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के। मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ। सत संगति उत्तम सतगुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार, मिलो सत संगत हम धोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के। हमरी जात पात गुर सतगुरु, हम वेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुही महला चौथा, हर हर नाम भजो पुरखोत्म, सब बिनसे दाल दलगा, पौ जन मरना मेट्यो गुर सबदी, हर अस्थर सेव सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अत पिरगा, मैं मंतन अर्प धरियो गुर आगै, सिर वेच लियो मुल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रस मान, बिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हथ फलगा। हर राख राख जन किरम तुम्हारे, सरनागत पुरख प्रत पलगा, दर्शन संत देहो सुख पावे।

जन नानक नाम मिलै सुख पावै, हम ना मिटाऊं सद घुमगा। सूही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठा रंग, गुर तुठै हर रंग चाड़िया, फिर बहुण न होवी भंग। मेरे मानो हर राम नाम कर रंग, गुर तुठै हर उपदेसिया, हर पेटिया राओ निसंग रहाओ। मुंद एआणी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रभ चेतना आयो, मन दूजा पाओ सहलंग। हम मैल भरे दुहचारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सरन वलाया, सब लाथे किलवख पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सतसंगत मेलो संग, मिल संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सूही महला चौथा, हर हर करै नित कपट कुमावै, हिरदा शुद्ध ना होई, आन दिन कर्म करै बहु तेरे, सुपने सुख ना होई। ज्ञानी गुरबिन भगत ना होई, कोरै रंग कदे ना चढ़ै, जे लोचै सब कोई रहाओ। जप तप संयम वर्त करे पूजा।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुतै किसन उतरिया घर जिस जाए। हर किया कथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाए रहाओ। रविदास चमार उस्तत करे, हर कीर्त निमख एक गाए। पतत जात उत्तम पया चार वर्ण पै पगयाए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती। लोक शिपा कह बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े। हर नाम देव लिया मुख लाए, जितने भगत हर सेवका मुख। 68 तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए, जन नानक तिन को अंधन परसे। जय कृपा करे हर राए। सूही महला चौथा, तिन्नी अंतर हर आराध्या। जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा, तिन की बखीली कोई क्या करे। जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर। जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ, तुर भगत जना को बख्सिया। हर अमृत भगत भंडारा, मूर्ख होवै सो उनकी रीस करे। तिस हलत पलत मोहकारा, से भगत से सेवका। जिन्ना हर नाम प्यारा, तिनकी सेवा ते हर पाई है। सिर निंदक कै पवै इशारा, जिस घर विरती सोई जाने। जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा, चहो पीड़ी आद जुगाद। बखीली किने ना पायो, हर सेवक पाए निस्तारा। सूही महला चौथा, जिथे हर आराधिया तिथे हर मित सहाई। गुर कृपा ते हर मन वसै, होरत बिद लया ना जाई। हर तन संचिया पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ। सत संगति संग हर तन खटी है, होरत है होरत उपाए। हर तन कितै ना पाई, हर रतने का वापारिया। हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये। वाके हर तन लया ना जाई, हर तन रतन जिवे हर माणक। हर तन नाल अमृत वे लैवत, हर भक्ति हर लिवलाई। हर तन अमृत वे लैवत का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुट नाही। हालत पलत हर तने की, भगता को मिली वड्याई। हर तन निरपौ सदा सदा अस्त्र है साचा, एहो हर तन अग्नि तस्कर पानी है। जमदूत किसे का गवाया न जाई, हर तन का ओचक्का नेड़ ना आवई। जम जा गाती डंड ना लगाई, सागती पाप करके बिखिया तन संचिया। तिन्ना एक विख नाल ना जाई, हलते विच सागत दुहेले पए हथों छुड़क गया। अगै पलत सागत हर दरगै टोई ना पाई, इस हर तन का साहो हर आप है संतो। जिसनों दे सो हर तन लद चलाई, इस हर तन का तोटा कदे ना आवई। जन नानक कौ गुरसो जी पाई। सूही महला चौथा, जिसनो हर सो प्रसन्न होए, सो हर गुणा रवै, सो भगत सो परवान। तिसकी महिमा क्या वर्णिया, जिसके हृदय वसया हर पुरख भगवान। गोविंद गुण गाइए जियो, लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ। सो सतगुरु सा सेवा, सतगुर की सफल है। जिसते पाइए परम निदान, जो दूजे पाए सागत कामना। अर्थ दुर्गंध सिरे वंदे, सो निफल सब अगे।

उनका उत्तर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हूं करी वखियान, सूही महला चौथा कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकाऊ, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यो भावे त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं ताण दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगन तरी जय, बकरी सिंह एक तै थाए राखे, मन हर जा भ्रम पौ दूर की जय, हर की वड़ियाई देखो संतो, हर निमाने